0: ये जो जीवन की लय है, सब कुछ पहले से ही तय है। इसलिए जय रघुनंदन, जय सियाराम।
1: श्री रामचंद्र आशीष
0: पारिजात, तुम्हें प्रणाम। आप सुन रहे हैं समय।

जय रघुनंदन, जय सियाराम। आप सुन रहे हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रेडियो का ये खास प्रोग्राम हमारे संग संगीता माल्या दुबई से। और जब राम जी

आप सुन रहे हैं पायो जीवनी राम रतन मोहन पायो प्रोग्राम राम रेडियो से डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये राम रेडियो है। आपकी आवाज आपकी पहचान। आज की पायलट सिंगर

अद्भुत अनुपम छवि श्री राम की और अपने शब्दों से, अपनी आवाज से।

ऐसा ही सुख हमें मिला है इस प्रोग्राम को सुन के संगीता जी। पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो। बहुत आभार इस प्रोग्राम की कॉन्सेप्ट को साथ।

0: डिजिटल वॉइसवर राम रेडियो का विशेष आयोजन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
1: भक्ति प्रभा भजनों की सरिता, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
2: नमस्कार मित्रों, मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम भजनों की सरिता में। मित्रों, हमारे यहाँ कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने मानवता को एक अलग दिशा दिखाई है। इन महापुरुषों के विचारों ने समय समय पर हमें नई ऊर्जा और सोच का अनुभव कराया है। ऐसे ही सकारात्मक ऊर्जा से भरे और प्रेरणापद विचार रखने वाले महापुरुषों में एक हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। आज का ये कार्यक्रम उस महान कवि को समर्पित है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी ने राम गाथा लिखना शुरू किया तो दिन के दौरान उनके द्वारा लिखे गए सभी छंद अगले दिन तक गायब हो जाते थे। एक सप्ताह तक लगातार ऐसा होता रहा, जिसके पश्चात भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें संस्कृत के बजाय एक स्थानीय भाषा में लिखने का निर्देश दिया। तो चलिए इस पावन माह में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित शिव रुद्राक्ष स्तोत्र से शुरुआत करते हैं। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं अनूप शर्मा जी, संजय फड़के जी, संजय हरने जी, एस महर्षि जी, ललिता कृष्णमूर्ति और स्वयं।

आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो। मित्रों, कहते हैं कि तुलसीदास जी जन्म के समय रोए नहीं थे, बल्कि राम शब्द का उच्चारण किया था और इसलिए उन्हें राम बोला के नाम से जाना जाता था। तुलसीदास जी रामानंद वैष्णव संप्रदाय के वंशज थे, जिन्होंने खुद को भगवान राम की पूजा के लिए समर्पित कर दिया था। भगवान राम जी उनके व्यक्तित्व में इतने सम्मिलित थे कि तुलसीदास जी ने एक गीत की रचना की मानो जैसे वे खुद वहां उपस्थित थे। वह दृश्य था भगवान राम का जन्म और उनकी बाल्यावस्था। किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए, धाय मात गोद लेतु दशरथ की रानिया, ठुमक चलत रामचंद्र। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं प्रेरणा जकादार, शोमा चटर्ज रॉय और दीपा गणेश।

मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी की अनेक रचनाएं हैं, जिनमें से एक विनय पत्रिका है। कई देवी देवताओं के स्तुति गीत इसमें शामिल है, हालांकि प्रमुख स्थान भगवान राम जी को दिया गया है। इस दिव्य रचनावली से एक मशहूर भजन सुनते हैं, जिसे मूल रूप में लता मंगेशकर जी ने प्रस्तुत किया है। जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रहे हैं विद्याशंकर, गायत्री जगन्नाथन, आभा माथुर, शर्मिष्ठा सारंग।

यमुना तट टीले रेतीले, घास फूस का घर डंडे पर, गोबर से लीपी आंगन में, तुलसी का बिरवा घंटी स्वर, माँ के मुंह में रामायण के दोहे चौपाई रस घोले, आओ मन की गांठे खोले। ये पंक्तियां हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता आओ मन की गांठे खोले में से हैं। मित्रों, हम और आप एक पल हमारे अतीत में जाएं तो एक चीज हमारे बीच स्वरूप होगा और वह है रामायण। हम सभी ने हमारी दादी नानी से रामायण की कहानियां जरूर सुना है। तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि, जो संस्कृत में मूल रामायण के लेखक थे, उनका अवतार माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा अवधी भाषा में रचित हनुमान चालीसा श्री हनुमान जी पर एक अति प्रिय भजन है। उत्तर भारत में अधिकांश घरों में इसका रोजाना पाठ होता है। नियमित रूप से इसका जाप करने से हमें अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे तनाव से मुक्त होना, हमारे सभी प्रयासों में बाधाओं को दूर करना और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। आइए सुनते हैं भगवान राम जी के भक्त हनुमान जी को समर्पित 40 चौपाई की यह माला। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं अनूप शर्मा, ललिता कृष्णमूर्ति, मुकेश चोपड़ा, संजय हरने, एमडी त्यागी, चारुल सक्सेना, तनुजा मुंद्रा, रमावी और मैं लक्ष्मी बालचंद्रन।

0: बोलो सियावर रामचंद्र की जय।
1: जय
2: पवन सुत हनुमान की जय।
3: तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी भी विपदा से ये सात गुण आपको बचाएंगे। विद्या विनय विवेक साहस आपके भले कर्म, सत्यनिष्ठा और भगवान के प्रति आपका विश्वास। आइए हम इन सभी सकारात्मक विचारों का अनुभव करें। जाते जाते मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद करती हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।
0: भक्ति प्रभा, भजनों की सरिता, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान। आपका तहे दिल से अभिनंदन है। आपकी सखी तनुजा मुंदड़ा पुनः उपस्थित है एक भक्तिमय प्रस्तुति के साथ। दोस्तों, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति एवं संहार के अधिपति देव है शिव भोलेनाथ। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का ना तो कोई आरंभ है और ना कोई अंत, उसी प्रकार शिव अनादि हैं, अनंत हैं। संपूर्ण प्रकृति शिव के अंदर समाहित है। कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहे हैं शिव स्तुति के साथ। शिव भक्त वीरेंद्र मिश्रा जी की इस प्रार्थना के साथ भोर

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। दोस्तों, सतयुग द्वापर युग में ईश्वर प्राप्ति के लिए तप, तपस्या, अनुष्ठान, आराधना की जाती थी, लेकिन कलयुग में ईश्वर नाम मात्र से ही मानव जीवन तर जाता है। इसलिए हमें जहां भी मौका मिले ईश्वर सुमिरन का मौका चूकना नहीं चाहिए। कबीरदास ने भी क्या खूब कहा है, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंतमति सोधियो, आदि अंतमति सोधियो, दूजा देखा काल। यानी ईश्वर का ध्यान सुमिरन ही मुख्य है, बाकी सब तो मोह माया है, जंजाल है। शुरू में, अंत में और मध्य में यदि जांच परख कर देखा जाए तो सुमिरन के अलावा बाकी सब कुछ दुख मात्र है। अगली प्रस्तुति नाम की महिमा को बताती हुई, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं संजय हरने जी, नाम हरि का जप।

दोस्तों, हिंदू धर्म में माता दुर्गा की पूजा बड़ी ही आस्था के साथ की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा जिस भी भक्त से प्रसन्न होती हैं, उसके जीवन के सभी कष्टों का नाश कर देती हैं। दुर्गा जी की तुलना परम ब्रह्मा से भी की जाती है। दुर्गा को आदिशक्ति, प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। कहते हैं माँ दुर्गा अपने भक्तों को अंधकार और अज्ञानता से बचाती है। माता दुर्गा के आदि शक्ति स्वरूप की आराधना करने हमारे समक्ष आ रहे हैं मुकेश चोपड़ा जी।

दोस्तों, आदिशक्ति को सनातन, निराकार, परब्रह्म जो कि ब्रह्मांड से भी परे एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है। ये शक्ति मूल रूप से निर्गुण है, परंतु निराकार परमेश्वर जो न स्त्री है न पुरुष ने जब सृष्टि की रचना की तो इस आदि पराशक्ति को बल से भरपूर बना दिया। हमारी अगली प्रस्तुति एक भक्त की गुहार जो पग पग ठोकर खाने के बाद आदि शक्ति से मांग रहा है, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां। प्रस्तुत करने आ रहे हैं महेश साठे।

आदिशक्ति से प्रार्थना, इस कठिन समय में जो भी लोग मझधार में डूब रहे हैं उन्हें अपनी शक्ति से उबारे। दोस्तों, प्रभु का रास्ता बड़ा ही सीधा है और उतना ही उलझा हुआ भी। जी हाँ, बुद्धि से चलें तो बहुत उलझा हुआ और भक्ति से चलें तो बहुत सीधा, विचार से चलें तो बहुत दूर और भाव से चलें तो बहुत पास, नजरों से देखें तो कण कण में और यदि अंतर मन से देखें तो जन जन में। देरी है तो सिर्फ सुमिरन की, उसको पुकारने की। तो हमारा अगला भजन लेकर आ रही हैं चारुल, प्रभु तेरो नाम।

बेहतरीन प्रस्तुति। दोस्तों, आप सभी के जीवन में कभी ना कभी तो ऐसा क्षण अवश्य आया होगा जब आपने अपने अंतर्मन के तार उस अलौकिक आदर्श शक्ति से जुड़े हुए महसूस किए होंगे। कुछ ऐसे ही अनुभूति ये भजन सुनकर आपको अवश्य होगी, जिसे लेकर आ रहे हैं संजय गुप्ता जी।

जी हाँ, सत्य ही तो है, ईश्वर सदा हमारे साथ। ईश्वर वंदना एक माध्यम खुद को ईश्वर के और निकट ले जाने का। फिर उपस्थित होंगे एक और भक्तिमय प्रस्तुति के साथ। तब तक जपते रहिए हरि का नाम और सुनते रहिए जयपुर रेडियो।

नमस्कार मित्रों, भजनों की सरिता में मैं लक्ष्मी आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी दुर्गा को सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता है। चलिए इनकी आराधना में इस गीत को सुनते हैं, जिसे मूल रूप से लता मंगेशकर जी ने गंगा की लहरें फिल्म के लिए गाया है। इस गीत के लेखक थे मजरू सुल्तानपुरी और इसके संगीतकार थे चित्रगुप्त जी। हमारे लिए प्रस्तुत करने आ रही है।

वाह ललिता जी, बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। मित्रों, विश्व माता जगद्धात्री ही जगदम्बा माता है। देवी महात्म्य अच्छाई और बुराई के बीच एक लड़ाई का वर्णन करता है, जहां देवी दुर्गा राक्षस महिषासुर के खिलाफ सद्गुणों का नेतृत्व करती है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। आइए सुनते हैं जगदम्बे माँ की गुणगान इस भजन में, जिसे मूल रूप से अनूप जलोटा जी ने गाया है। इसके लेखक हैं राजेश जौहरी और जयपुर रेडियो के लिए

वहाँ संजय जी, आपने तो एकदम से माहौल ही भक्तिमय बना दिया है। मित्रों, संतोषी माता या संतोषी माँ, इन्हें संतुष्टि की माँ के रूप में सम्मानित किया जाता है। संतोषी माता की पूजा विशेष रूप से उत्तर भारत की महिलाएं करती हैं। संतोषी माँ व्रत महिलाओं द्वारा लगातार 16 शुक्रवार करने से ऐसा माना जाता है कि देवी की कृपा प्राप्त होती है। आइए संतोषी माता की आरती सुनते हैं, जिसे मूल रूप से उषा मंगेशकर जी ने गाया है। इस गीत के लेखक थे कवि प्रदीप और इसके संगीतकार थे सी अर्जुन। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रही हैं मुंबई से विद्या शंकर जी।

बेहद खूबसूरत विद्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, पुराणों में दुर्गा देवी को पुरुष देवताओं की सहायता करने, राक्षसों को मारने के लिए सक्रिय करने के रूप में चित्रित किया गया है। दुर्गा देवी अपने आप में भी सक्रिय है महिषासुर के साथ उसकी लड़ाई में। दुर्गा माता को कई भुजाओं के साथ वर्णित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक के पास एक हथियार है और एक भयंकर सिंह की सवारी भी है। हालांकि एक विजयी योद्धा दुर्गा जी को एक सुंदर रूप में भी चित्रित किया जाता है और कभी कभी उन्हें माँ भी कहा जाता है, जो इस देवी के बहुआयामी स्वरूप को प्रदर्शित करती है। आइए सुनते हैं इनकी आराधना में एक और भजन, जिसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं।

0: वाह संजय जी, हम तो भाव गदगद हुए। मित्रों, हम नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। वास्तव में नवरात्रि आपकी आंतरिक शक्ति का जागरण और प्रकटीकरण है। ये जीवन की विनाशकारी और अस्थायी प्रकृति का प्रतीक है। माँ दुर्गा के अनुयायी ये भी मानते हैं कि माँ दुर्गा पृथ्वी पर और उसके बाद के जीवन में उनकी रक्षा करती है जो उन्हें सर्वस्व मानते हैं। चलिए हम उस देवी माँ की आराधना में ये प्रसिद्ध आरती सुनते हैं। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रहे हैं डॉक्टर लवलेश पुरुषोत्तम, मोनिका दास, शोमा रॉय और तनुजा मोन्द्रा।
1: बोल साचे दरबार।

0: बहुत ही मधुर और भक्तिमय प्रस्तुति मोनिका जी, लवलेश जी, शोमा जी और तनुजा जी। मित्रों, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। जाते जाते मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आओ झूमे गाए समूह की ओर से आप सभी श्रोताओं का और जयपुर रेडियो का धन्यवाद करती हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
1: नमस्ते।

जय माता दी। आपने सुना संवेद स्वर में महिषासुर मर्दिनी पाठ, इसे स्वर दिया स्वर परिवार के इन सदस्यों ने। आदेश शर्मा शामली यूपी से, अंजू गौड़ मुंबई से, योगेंद्र गौतम यूएसए से, शुभी श्रीवास्तव रायबरेली से, तरुण खोटियान, अमृता, अनीता जी, कविता, सचिन अरोड़ा, निश्चल श्रीवास्तव और उनके सभी साथियों ने। और अब समीर और वीना चौधरी की आवाजों में ये स्तुति।

आपने सुना समीर और वीना चौधरी की आवाजों में ये भक्तिमयी प्रस्तुति देवी माता की स्तुति के रूप में, और अब समीर सुना रहे हैं ये भजन।

आप इस गीत के मुखड़े को सुनने के बाद तो समझ ही गए होंगे कि हम इस एपिसोड को स्पेशल क्यों कह रहे हैं। हमारा इशारा अमर गायक इमॉर्टल वॉइस मोहम्मद रफी साहब के बर्थडे की ओर है। आज के इस पहले गीत में अर्चू रानू यानी अर्चना अग्रवाल का साथ दे रहे हैं अनिल शर्मा।

एक ऐसा सिंगर जो न केवल बॉलीवुड को पूरी तरह एक मुकम्मल मुकाम तक पहुंचाने में सफल रहा, बल्कि इस यूनिवर्स को एक ऐसी आवाज दे गया जिसको सुनकर हम ईश्वर, भगवान या अल्लाह की आवाज की कल्पना के नजदीक पहुंच जाते हैं। आज के इस एपिसोड में आवाज के इस सम्राट को अपना स्वर नमन दे रही थी अर्जुन रानू 16 और आपका साथ दे रहे थे अनिल शर्मा 1961। और अब आंखों में काजल है, काजल में मेरा दिल है, किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए इस गीत को इस मंच पर लेकर आए हैं अर्जुन रानू के संग सोनी शिवकुमार।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा, और जयपुर रेडियो बार बार ये ही कहता है आपकी आवाज आपकी पहचान। आवाज की इस पहचान को कोई मिटा नहीं सकता, वो सदा हमारे साथ रहती है, संग रहती है। और इस मिलन गीत में अपनी आवाज के साथ हमारे संग हैं अर्चू रानू 16। आपके साथ स्वर में स्वर मिला रहे थे सोनी शिव कुमार। एक बार फिर सोनी शिव कुमार कह रहे हैं, मेरे प्यार में मेरे इंतजार में सच सच कहो तुमने क्या किया, कभी भूला कभी याद किया।

और हम भी सच सच बता रहे हैं आपको। आप सुन रहे हैं मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा, आरजे भूमिका के साथ। और मेरे साथ हैं जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चू रानू 16। इस प्रोग्राम में हम आपको ये भी बता देते हैं कि जिन सिंगर्स ने वर्ष 2024 में अर्चू रानू यानी अर्चना अग्रवाल के साथ इस मंच पर सॉन्ग गाए हैं, वो सब सिंगर्स अपना नाम पंजीकृत करवा सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9352784724 पर हमें मिले फीडबैक के आधार पर आपकी रेटिंग तय की जाएगी। आइए सुनते हैं ये शॉर्ट वर्जन गीत, जिसमें अर्चू रानू का साथ दे रहे हैं अजय देव मुनमुन।

अजय देव मुनमुन साथ दे रहे थे अर्जुन रानू का इस गीत में जिसे आपने अभी अभी सुना। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। अपने गीतों के साथ और अगले गीत में अर्जुन रानू के साथ आ गए हैं धनंजय आर्य।

जिसका जितना हो आंचल उसको सौगात उतनी मिलेगी। और इसके संग हम ये बात जोड़ना चाहेंगे कि आंचल का माप हो सकता है लेकिन आवाज की पहुंच को कोई माप नहीं सकता, जान नहीं सकता। इसलिए हम कहते हैं गाए जा गीत मिलन के, क्योंकि जीवन हमारा सीमित है, आवाज की कोई सीमा नहीं है। इस मंच पर अर्जुन रानू के संग आ गए हैं जीवन की सुरीली दास्तां समझाने और गाने फनी भूषण, अर्जुन रानू के संग।

ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो जीवन की रीत है। ये जीवन है, जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। इस गीत में साथ दे रहे थे अर्जुन रानू का फनी भूषण, और अब राजा रानी क्या कह रहे हैं अपनी सुरीली आवाजों में, किशोर फॉर यू आए हैं अर्जुन रानू के संग इस शॉर्ट वर्जन में।

राजा रानी की प्यार की कहानी हमने सुनी अर्जुन रानू और किशोर फॉर यू की जुबानी इस गीत में, और इस सुरीले से शॉर्ट वर्जन के साथ ही जयपुर रेडियो के इस मंच से मैं आरजे भूमिका आपको एक बार फिर बतला देती हूँ इस मंच के नंबर। हमारे नंबर हैं 9352-784-724। इस नंबर पर आप अपना सिंगिंग का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और हमारे लिसनर्स अपना फीडबैक दे सकते हैं। आज की ये सुरीली सौगात सुपर सिंगर अर्जुन रानू के संग यहीं तक। आरजे भूमिका को विदा दें। नमस्कार।

बहुत शुक्रिया आरजे भूमिका। और इसके बाद अब आ गए हैं हमारे इस मंच के मेल सिंगर अनुराग, और अनुराग लेके आए हैं अपनी सुरीली आवाज में अपने गाए हुए कुछ गीत। आइए शुरुआत करते हैं, सुनते हैं आपका ये पहला गीत।

प्यार मांगा है तुम्हें से ना इनकार करो। और ये आवाज रही हमारे सुरीले सिंगर अनुराग की। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा का ये खास एपिसोड। हमारे संग है अर्चुरानो 16 और अनुराग सिंगर के रूप में। आइए सुनते हैं अगला गीत अनुराग की आवाज में।

0: दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, और यदि गीतों से प्यार हो जाए, बेशुमार हो जाए, तो आप जयपुर रेडियो पर आ जाएं। यही कह रहे हैं अनुराग, हमारे आज के मेल सिंगर। आपकी आवाज, आपकी पहचान और बहुत सारे तकनीकी कारणों के वजह से हम अनुराग से यही अनुमति लेंगे और जारी रखेंगे प्रोग्राम। भूमिका आज के सिंगर अर्चुरानू के संग।
1: और जयपुर रेडियो बार बार ये ही कहता है, आपकी आवाज आपकी पहचान। आवाज की इस पहचान को कोई मिटा नहीं सकता, वो सदा हमारे साथ रहती है, संग रहती है। और इस मिलन गीत में अपनी आवाज के साथ हमारे संग हैं अर्चू रानू 16। आपके साथ स्वर में स्वर मिला रहे थे सोनी शिव कुमार। एक बार फिर सोनी शिव कुमार कह रहे हैं, मेरे प्यार में मेरे इंतजार में सच सच कहो तुमने क्या किया, कभी भूला कभी याद किया।

और हम भी सच सच बता रहे हैं आपको। आप सुन रहे हैं मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा, आरजे भूमिका के साथ। और मेरे साथ हैं जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चुल रानू 16। इस प्रोग्राम में हम आपको ये भी बता देते हैं कि जिन सिंगर्स ने वर्ष 2024 में अर्चुल रानू यानी अर्चना अग्रवाल के साथ इस मंच पर सॉन्ग गाए हैं, वो सब सिंगर्स अपना नाम पंजीकृत करवा सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9352784724 पर हमें मिले फीडबैक के आधार पर आपकी रेटिंग तय की जाएगी। आइए सुनते हैं ये शॉर्ट वर्जन गीत, जिसमें अर्चुल रानू का साथ दे रहे हैं अजय देव मुनमुन।

अजय देव मुनमुन साथ दे रहे थे अर्जुन रानू का इस गीत में जिसे आपने अभी अभी सुना। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। अपने गीतों के साथ और अगले गीत में अर्जुन रानू के साथ आ गए हैं धनंजय आर्य।

जिसका जितना हो आंचल उसको सौगात उतनी मिलेगी। और इसके संग हम ये बात जोड़ना चाहेंगे कि आंचल का माप हो सकता है लेकिन आवाज की पहुंच को कोई माप नहीं सकता, जान नहीं सकता। इसलिए हम कहते हैं गाए जा गीत मिलन के, क्योंकि जीवन हमारा सीमित है, आवाज की कोई सीमा नहीं है। इस मंच पर अर्जुन रानू के संग आ गए हैं जीवन की सुरीली दास्तां समझाने और गाने फनी भूषण, अर्जुन रानू के संग।

ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो जीवन की रीत है। ये जीवन है, जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। इस गीत में साथ दे रहे थे अर्जुन रानू का फनी भूषण। और अब राजा रानी क्या कह रहे हैं अपनी सुरीली आवाजों में, किशोर फॉर यू आए हैं अर्जुन रानू के संग इस शॉर्ट वर्जन में।

राजा रानी की प्यार की कहानी हमने सुनी अर्जुन रानू और किशोर फॉर यू की जुबानी इस गीत में, और इस सुरीले से शॉर्ट वर्जन के साथ ही जयपुर रेडियो के इस मंच से मैं आरजे भूमिका आपको एक बार फिर बतला देती हूँ इस मंच के नंबर। हमारे नंबर हैं 9352-784-724। इस नंबर पर आप अपना सिंगिंग का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और हमारे लिसनर्स अपना फीडबैक दे सकते हैं। आज की ये सुरीली सौगात सुपर सिंगर अर्जुन रानू के संग यहीं तक। आरजे भूमिका को विदा दें। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: संगीत जगत से जुड़े सभी संगीत प्रेमियों को मुकेश चोपड़ा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, फिल्मों का नाम लेते ही हॉलीवुड और बॉलीवुड का नाम तुरंत जहन में आ जाता है। वैसे तो फिल्में 1940 से बन रही थी, पर उनका सुनहरा समय 1970 से शुरू हुआ, जिसमें एक से एक हिट फिल्म्स रिलीज हुई, जैसे कि मेरे हमदम मेरे दोस्त,

मेरा नाम जोकर, जीवन मृत्यु, सफर, आपकी कसम, लोफर, प्रतिज्ञा, कभी कभी, मुकद्दर का सिकंदर, सत्यम शिवम सुंदरम, यादों की बारात, डॉन, शोले, अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्म्स। ये वो फिल्में थीं जिनकी स्क्रीनिंग सालों तक चलती रहीं और जिनका संगीत आज तक अमर है। चलिए आज उसी दौर के कुछ यादगार नगमे सुनते हैं और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं 1970 की एक फिल्म मेरे हमदर्द मेरे दोस्त से, जिसमें धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर थीं। इस फिल्म का झूमता संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और गीत लिखे मजरू सुल्तानपुरी जी ने। आइए इसी फिल्म का एक गीत सुनते हैं अनिल जी की मधुर आवाज में।

वाह, क्या खूबसूरत गीत पेश किया। अगला गीत जो आप सुनेंगे वो 1970 की फिल्म जीवन मृत्यु से है, जिसमें धर्मेंद्र और राखी थीं। इस फिल्म का बेहद खूबसूरत संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और गीत लिखे आनंद बख्शी जी ने। आइए इसी फिल्म का प्यार भरा गीत सुनते हैं डॉक्टर आदेश और डॉक्टर तरुणा जी की मधुर आवाज में।

अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1970 की एक सुपरहिट फिल्म सफर से है, जिसमें राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर थीं। इस फिल्म का मदभरा संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने और खूबसूरत गीत लिखे इंदिवर जी ने। असित सेन को इस फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला। आइए इसी फिल्म का एक मदभरा गीत सुनते हैं विद्या जी और बिस्वजीत जी की मधुर आवाज में।

वाह, क्या खूबसूरत गीत पेश किया। आइए अगला गीत सुनते हैं 1973 की एक सुपरहिट फिल्म लोफर से, जिसमें धर्मेंद्र और मुमताज थीं। इस फिल्म का मस्ती भरा संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और गीत लिखे आनंद बख्शी जी ने। आइए इसी फिल्म का ये खूबसूरत गीत सुनते हैं मुकेश गुलानी और किशोर जी की मधुर आवाज में।

वाह, क्या खूबसूरत प्रस्तुति थी। फिल्म लोफर के गीत और संगीत बेहद मस्ती भरे थे, जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी जी का जादू भरा हुआ था। आइए इसी फिल्म का एक और मस्ती भरा गीत सुनते हैं, गायत्री जी की मधुर आवाज में।

वाह, क्या समा बांध दिया। आइए अगला गीत सुनते हैं 1974 की एक और सुपरहिट फिल्म आपकी कसम से, जिसमें राजेश खन्ना और मुमताज थीं। इस फिल्म का झूमता हुआ संगीत दिया आरडी बर्मन जी ने और गीत लिखे आनंद बख्शी जी ने, जो आज तक गुनगुनाए जाते हैं। इस फिल्म का संगीत उस साल का बिना का गीत माला की सरताज गीतों में भी था। आइए इसी फिल्म का एक मजेदार गीत सुनते हैं किरण नाडकर्णी और श्वेता सम्बासिवन जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अगला गीत जो आप सुनेंगे वो 1975 की फिल्म प्रतिज्ञा से है, जिसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी थी। इस फिल्म का मस्ती भरा संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और गीत लिखे आनंद बख्शी जी ने। कहा जाता है कि मोहम्मद रफी जी ये गाना गाते हुए नाच रहे थे और धर्म जी को बोले कि मैंने अपना काम कर दिया भाई, अब आगे आपका काम। इसी फिल्म से धर्म जी को उनका सिग्नेचर स्टेप भी मिला। आइए इसी फिल्म का ये मस्ती भरा गीत सुनते हैं संजय हारने और संजीव जी की मधुर आवाज में।

क्या शानदार प्रस्तुति थी। आइए अगला गीत सुनते हैं 1976 की मशहूर मल्टी स्टारर सुपरहिट फिल्म कभी कभी से, जिसमें अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, राखी, ऋषि कपूर और नीतू सिंह थीं। इस फिल्म का शानदार संगीत दिया खय्याम जी ने और गीत लिखे साहिर लुधियानवी जी ने, जो आज तक गुनगुनाए जाते हैं। इस फिल्म को फिल्म फेयर का बेस्ट म्यूजिक, बेस्ट लिरिक्स, बेस्ट मेल सिंगर, बेस्ट डायलॉग्स अवार्ड भी मिला। आइए इस फिल्म का एक गीत सुनते हैं मेरी और वरुण जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अगला गीत सुनते हैं 1976 की फिल्म नागिन से, जिसमें सुनील दत्त और रीना रॉय थीं। इस फिल्म का संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और गीत लिखे वर्मा मलिक जी ने। आइए इसी फिल्म का एक गीत सुनते हैं तनुजा मुंद्रा और संजय गुप्ता जी की मधुर आवाज में।

वाह, क्या खूब गीत पेश किया। आइए अगला गीत सुनते हैं 1978 की एक सुपरहिट फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से, जिसमें अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, रेखा और राखी थीं। इस फिल्म का बेहद खूबसूरत संगीत दिया कल्याण जी और आनंद जी ने और गीत लिखे अनजान ने। आइए इसी फिल्म का ये शानदार गीत सुनते हैं संगीता जी और कविता जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अगला गीत सुनते हैं 1978 की एक और सुपरहिट फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से, जिसमें शशि कपूर और जीनत अमान थी। इस फिल्म का बेहद मशहूर संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और गीत लिखे पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने। आइए इसी फिल्म का एक गीत सुनते हैं इंदिरा जी की मधुर आवाज में।

0: वाह, बेहतरीन प्रस्तुति। दोस्तों, ख्वाहिश तो यही है कि आपके साथ जुड़े रहें, पर समय हमें रोक रहा है। वक्त है आपसे विदा लेने का। आशा करता हूँ कि आज की पेशकश आपको पसंद आई होगी। जाते जाते आओ झूमे गाएं ग्रुप की ओर से मैं मुकेश चोपड़ा आप सभी का और जयपुर रेडियो का धन्यवाद करता हूँ।
1: दीदी देखो ना, मेरी स्किन कितनी रफ और ड्राई हो रही है, और ये पिंपल्स। लेकिन आपका फेस इतना ब्राइट और ग्लोइंग कैसे है?
2: देख छोटी, तुझे कितना समझाया था कि ये केमिकल्स वाले प्रोडक्ट मत यूज किया कर। देख मेरे पास है जादू, JMD का एलोवेरा जेल, जो कि 100% आयुर्वेदिक है और स्किन की सारी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाता है।
1: अरे वाह, अब तो ये जादू मेरे पास भी है।
3: JMD, वंडर ऑफ आयुर्वेदा।
4: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले, हल्ले हल्ले दिदिन तिनक दिन, दिदिन तिनक दिन। अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त, और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो।

0: to be sad now. You can do all of this on a click away through Jaipur Radio. Send messages and dedicate your favorite songs to your loved ones on your favorite program. Your voice, your identity. So what are you waiting for? Download Jaipur Radio app through Play Store and tune into your favorite songs. Celebrate your special occasion only on your own radio, Jaipur Radio.
1: संगीत से जुड़े हुए सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आरजे सपना देव गुप्ता और आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो का जगमगाता प्रोग्राम जश्न सितारा गीत गुफ्तगू। आज हम भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक झिलमिलाता सितारा

0: कराए हैं, जो कि न सिर्फ अपने गीतों से बल्कि अपने काम से भी लोगों की जिंदगियों में खुशियां भर देते हैं। जी हाँ, अपने श्रोताओं की मुलाकात करवा रहे हैं जयपुर के जाने माने सर्जन डॉक्टर मनीष कल्ला से। स्टूडियो में स्वागत है आपका मनीष।
1: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर रेडियो के डिजिटल स्टूडियो के अंदर आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ये हमारी खुशनसीबी है मनीष। तो सबसे पहले हमें आप जयपुर के बारे में बताइए। आज के समय में ये शहर बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग और डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए बहुत जाना जाता है, और इसके साथ ही कुछ अपने बारे में भी बताइए।
1: सबसे पहले मैं आप लोगों का एक बार और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। जहाँ तक रहा सवाल जयपुर शहर का, जयपुर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पिंक सिटी
0: जी,
1: एंड इस गुलाबी नगरी की सबसे ज्यादा सबसे बड़ी खासियत यहाँ का खाना, यहाँ की रजवाड़ी पोशाकें और यहाँ के राजमहल, और इसी की वजह से पूरी दुनिया से लोग बाग यहाँ पर ना सिर्फ रहने के लिए बल्कि डेस्टिनेशन वेडिंग, रिसोर्ट, इन सब के लिए आते हैं। मैंने, मेरी ये खुशनसीबी है कि मैंने SLS मेडिकल कॉलेज, जो जयपुर राजस्थान, जो राजस्थान का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, वहां से मैंने अपनी डिग्री प्राप्त करी।
0: क्या बात,
1: मैं यही का पला बड़ा हूँ। और जहां तक रहा कि मेरी मदर भी डॉक्टर थी, और आज की तारीख में अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं सिर्फ इसीलिए हूँ क्योंकि मेरी मदर डॉक्टर थी।
0: अरे वाह, ये आपने बहुत ही खूबसूरत बात बताई हमें। और इसी के साथ मनीष, हम आपका पहला गीत लेते हैं, क्या सुनवा रहे हैं हमें?
1: मेरी मदर का फेवरेट सिंगर थे मोहम्मद रफी साहब, उनका एक बहुत ही खूबसूरत गीत है, आज की रात मेरे दिल की सलामी दे लिया।
0: अरे
1: वाह, चूंकि मैं आया हूँ तो आप लोग मेरे दिल की सलामी
0: दे। जी जी जी जी, तो लीजिए आपका गीत हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं।

0: बहुत ही खूबसूरत सलामी आपके दिल ने दी हमारे श्रोताओं के लिए मनीष, मजा आ गया। तो पेशे से आप सर्जन हैं, बहुत ही बिजी लाइफ होगी आपकी। हम ये जानना चाहते हैं कि संगीत में आपकी रुचि कैसे बनी और इस शौक का आप अपनी बाकी जिम्मेदारियों से तालमेल कैसे बिठाते हैं।
1: मेरी संगीत की रुचि जो है वो मेरी नानी जी की वजह से बनी। मुझे मेरी नानी जी और नाना जी ने पाला पोसा, तो क्योंकि उन्होंने पाला पोसा तो मेरी नानी जी जो थी क्लासिकल म्यूजिक टीचर भी थी और सिंगर भी थी, तो वहां से धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे उनकी कॉपी करते करते उनसे थोड़े बहुत गुर सीखते सीखते मैंने गाना शुरू किया। तो 5 साल की उम्र में जब स्कूल के अंदर मेरा पहला स्टेज प्रोग्राम हुआ उस वक्त मेरी नानी जी थी वहां पे, तो यहां से मेरा संगीत का सफर शुरू हुआ।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो आज आप हमारे पास स्टूडियो में आए हुए हैं तो हम इस बात का फायदा उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं के लिए आप अपनी मीठी सी आवाज में कुछ यहीं पर 2 लाइनें गुनगुना दीजिए अपने किसी भी पसंदीदा गीत का।
1: जी, ये अभिजीत जी का गाया हुआ बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, एक का दिल एक की धड़कन मूवी से।
0: जी जी।
1: रेशम जैसी है राहें खोले हैं बाहें ये वादियां। और अभी बरसात के मौसम में इससे बेहतर गाना और कोई होगा।
0: वाह मनीष वाह, आपकी सुर और ताल की समझ की दाद देनी पड़ेगी, आपने बेहद खूबसूरती से समा बांध दिया। तो हम अपने श्रोताओं को जल्दी ये गाना सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि अपने शौक का आप अपनी बाकी जिम्मेदारियों के साथ तालमेल कैसे बिठाते हैं।
1: संगीत एक ऐसी दवा है जो सारे सारे मर्जों का इलाज है।
0: जी,
1: तो जहाँ कभी भी मैं थक कर आता हूँ और परेशान सा होता हूँ तो यही एक जगह है जो मुझे पनाह देती है। आता हूँ, सुनता हूँ, गुनगुनाता हूँ, गाता हूँ, अपने पुराने दिनों को याद करता हूँ। और इसी तरीके से मेरी जो टॉक्सिसिटी है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ओवर हियर दैट अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी।
0: जी जी।
1: व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर और लेस मेंटल हेल्थ, म्यूजिक एक सबसे अच्छी थेरेपी है जो सारी की सारी टॉक्सिसिटीज को निकाल कर आपको एकदम से तरोताजा महसूस करवाती है।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से जो एप्स बनी है उससे बहुत मदद मिल रही है। मैं अपने श्रोताओं को यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगी कि इस म्यूल ऐप पर डॉक्टर मनीष कल्ला एक जाने माने सिंगर हैं और इनकी एक बड़ी स्ट्रांग फैन फॉलोइंग है वहां पर।

0: बहुत खूब मनीष, आजकल सोशल मीडिया पर आता रहता है अक्सर कि कुछ डॉक्टर्स अपने मरीजों के इलाज के वक्त नाचते भी हैं, गाते भी हैं। कोविड के वक्त से शायद ये चलन शुरू हुआ, तो क्या आप भी अपने पेशेंट्स के लिए कुछ ऐसा करते हैं?
1: ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल मुझसे किया, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर और जब मैं जूनियर सर्जन हुआ करता था, तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर हम लोगों का ये तब से ही रिवाज था। गाने चलते रहते थे वहां पर पुराने, मोहम्मद रफी साहब के, किशोर कुमार साहब के, और हम लोग गुनगुनाते रहते थे, हम लोग गाते रहते थे। उससे हम लोगों को कॉन्सेंट्रेट करने में मदद मिलती थी, और उसके साथ साथ जो कि सर्जरी का प्रेशर हम लोगों के ऊपर आ रहा है वो निकल जाता था दिमाग से। तो हम लोगों की तो ये परिपालना ये काफी लंबे समय से है, और आज की तारीख के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि संगीत

0: नींद जो है वो आपकी आत्मा को आत्मा की शुद्धिकरण के लिए बहुत जरूरी है।
1: जी, जी, जी,
0: तो उसी की वजह से आज की तारीख के अंदर म्यूजिक थेरेपीज हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं जो कि पेशेंट को, और इस तरीके की चीजें आई हैं सामने जहां पर इवन कैंसर के मरीज तक म्यूजिक थेरेपी से उन लोगों का पेन काफी कम हुआ है। तो म्यूजिक बहुत ही अच्छा है मेंटल हेल्थ और पेन के लिए, इवन बच्चों के लिए भी। अगर आप जो है कुछ गुनगुनाते हैं तो उनको तुरंत से नींद आ जाती है, वो तुरंत से शांत हो जाते हैं। मेडिसिनल प्रेस्क्रिप्शन नाउ डेज।
1: क्या बात है, ये तो वाकई एक बहुत ही दिलचस्प बात आपने बताई है, और लोगों को ये पता भी होना चाहिए कि संगीत का क्या इम्पोर्टेंस है हम सबकी लाइफ में। तो इन सभी दिलचस्प बातों से एक छोटा सा विराम लेते हैं और आपकी पसंद का एक और गीत सुनते हैं।

0: मनीष कहते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे कोई खड़ा रहता है जो कि उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता है, उसे मॉरल सपोर्ट देता है। तो आप अपनी कामयाबी का श्रेय अपनी मेहनत के अलावा और किसे देना चाहेंगे?
1: मैं सबसे पहले तो परमपिता परमेश्वर को इस चीज का धन्यवाद देना चाहूंगा। महादेव का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं कोशिश करता हूँ महादेव की कई भी चीजों के ऊपर आचरण करने का।
0: क्या बात?
1: इसके बाद अगर मैं यहाँ पर पृथ्वी की कम बात करूँ तो मेरे नाना नानी का सबसे बड़ा योगदान है, जिन्होंने मेरे को पाला पोसा बड़ा किया। मेरे अंदर जो भी वैल्यूज डाली गई उनके थ्रू डाली गई। एंड उसके बाद मैं मेरी माँ का, क्योंकि मेरी माँ अगर डॉक्टर नहीं होती तो मैं नहीं होता, ये बात मैं पहले भी बता चुके
0: हैं।
1: और इन सारी चीजों के साथ साथ जिस एक और इंसान का जिसका मैं बहुत ज्यादा तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, वो है मेरी अर्धांगिनी ऋचा।
0: वाह, क्या बात है।
1: मेरे सपोर्ट में अगर वो नहीं खड़ी होती तो जितनी जगहों पर मैं बाहर गया, आज की तारीख में भी मैं अफ्रीका में हूँ, मैं अफ्रीका में सिर्फ इसीलिए हूँ कि कहीं ना कहीं उसने मुझे ये संबल दिया हुआ है, ये कॉन्फिडेंस दिया हुआ है कि नहीं आप वहाँ पर काम कीजिए, मैं यहाँ पर परिवार संभालती हूँ।
0: जी,
1: तो ये सारी चीजें, एंड शी इज ऑल्सो वर्किंग वुमन, इट इज नॉट दैट शी इज नॉट अ वर्किंग वुमन, तो ये सारी की सारी चीजें, कई सारी जगहों पर उसने भी सेक्रीफाइस किया है, कई सारी जगहों पर मैंने भी सेक्रीफाइस किया, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, इफ शी हैड नॉट सपोर्टेड मी आई वुड नॉट हैव बीन इन
0: जी। बहुत ही आप धरती के साथ जुड़े हुए इंसान हैं, क्योंकि आजकल की दुनिया में मनीष जी बात यह है कि बहुत लोग कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ही होते हैं जो वाकई श्रेय अपने परिवार वालों को देते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आपकी ये बात सुनकर। तो हम और हमारे श्रोता चाहेंगे कि इन सब के लिए जिनको भी आपने श्रेय दिया है, आपकी अर्धांगिनी, आपकी मम्मा और आपके नानी नानू, उनके लिए आप एक गीत हमें प्यारा सा सुनवा दीजिए।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनीष कल्ला। आपसे ये गुफ्तगु बहुत ही मजेदार रही। मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे श्रोताओं के लिए दो शब्द कह जाइए।
1: सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ पर आपके और आपके श्रोताओं के समक्ष खड़ा हूँ।
0: थैंक यू।
1: और श्रोताओं के लिए सिर्फ इतनी सी बात है कि संगीत गुनगुनाते रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
0: बहुत खूब। तो दोस्तों, ये थी हमारी मुलाकात डॉक्टर मनीष कल्ला के साथ, जो कि जयपुर के जाने माने सर्जन हैं और फिलहाल साउथ अफ्रीका में किसी काम से वहां पर रह रहे हैं। तो ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमारे स्टूडियो में उन्होंने आने के लिए अपनी मसरूफ जिंदगी से कुछ टाइम निकाला। मैं हूं आरजे सपना देव गुप्ता और जल्द ही आपसे दोबारा मिलूंगी एक नए सितारे के साथ। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के साथ यूं ही हंसते मुस्कुराते और गुनगुनाते रहे। रब राखा।

0: महफिले गजल में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: नमस्ते, आदाब। सुनने वालों को लक्ष्मी का प्यार भरा सलाम। आओ झूमे गाये के जानिब, मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आज के इस महफिल में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। दोस्तों, जगजीत जी ने बेशुमार गजलों को अपने रूह परवर आवाज से सजाकर हमेशा के लिए हयाते जावेदा बख्श दी है। ताहम कुछ अनमोल जवाहरात हैं जिनमें खूबसूरत शायरी, बेपनाह मौसीकी और अजीम पेशकश मौजूद हैं। उन्हीं नायाब मोतियों में से एक मोती यानी एक एल्बम को रेयर जेम्स का एजाज हासिल है। आज के महफिल के फनकार उसी एल्बम से कुछ चुनिंदा गजलों को आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सबसे पहले मैं दावत देना चाहूंगी जनाब मनीष सूद जी को। वे हमारे लिए पेश करेंगे जब भी आती है तेरी याद, जिसके शायर हैं कृष्णा अदीब साहब। मनीष सूद जी।

वाह मनीष जी, आफरीन आफरीन, क्या खूब पेशकश थी। ये थे मनीष सूद जी अपने खूबसूरत अंदाज और गुदाज भरी आवाज में इस गजल को इन्होंने पेश किया। दोस्तों, हमने अभी अभी सुना था कि जब हमें और आपको किसी की याद आती है तो हमारी कैफियत क्या होती, लेकिन क्या आलम होगा जब वह शख्सियत आपसे रूबरू हो। ना मजा है दुश्मनी में, ना है लुत्फ दोस्ती में, कोई गैर गैर होता, कोई यार यार होता। तो चलो हम चित्रा सिंह जी की पुरसोस आवाज में पेश करदा दाग दहलवी की एक हसीन गजल को समाप्त करते हैं। जयपुर रेडियो के लिए इसे पेश करने आ रही हैं शोमा सी रॉय। अजब अपना हाल होता जो विसाल यार होता,

वाह, बहुत खूब शोमा जी, बेहतरीन पेशकश। दोस्तों, जब दो दिल एक दूसरे की चाहत में जज्बातों की आंधी से गुजरते हैं, वह जज्बा है इश्क। लेकिन जिगर मुरादाबादी साहब कहते हैं, जिंदगी न देख जलवाए आफताब बन, शौक को रहनुमा बना जर्रे में रोशनी न देख, क्योंकि इश्क फना का नाम है। इस खूबसूरत गजल को अपनी सुरीली आवाज में पेश करने आ रही हैं अनुराधा जी।

वाह अनुराधा जी, बहुत खूब। ये जयपुर रेडियो पर आपकी पहली पेशकश थी जिसे आपने अपनी खूबसूरत आवाज में गाया। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है, आपका ये सफर यूं ही चलता रहे। दोस्तों, जनाबे जिगर मुरादाबादी ने ना सिर्फ उर्दू गजल को एक पहचान वो परवाज बख्शी बल्कि शहनशाह तगज़ल का खिताब भी हासिल किया। इनकी एक मशहूर गजल जो इंसानी जज्बात व एहसासात को खूबसूरत अंदाज में बयां करती है, सुनते हैं इसे डॉक्टर अंकित अवस्थी की आवाज में। मुझे दे रहे हैं तसल्लियां, जनाब अंकित अवस्थी जी।

0: वाह अंकित जी, सदा फ्री।
1: दोस्तों, गजल एक ऐसा फन है जिसमें महबूब से बातें होती हैं। इश्क मोहब्बत के जज्बात को लफ्जों में पिरोकर गुनगुनाया जाता है, साथ ही साथ गजल के जरिए शिद्दत गम का भी इजहार किया जाता है। इसमें टूटे हुए दिलों के लिए मरहम मुदावा का भी सामान होता है। अब हम दावत देते हैं आशुतोष भट्ट जी को, ये पेश करेंगे कृष्णा अदीब जी की ये नज्म शहरों शहरों आज है तन्हा। जनाब आशुतोष भट्ट जी।

वाह आशुतोष जी, बहुत खूब, क्या कहने, आपने तो कमाल ही कर दिया। दोस्तों, 19वीं सदी में मुगलिया सल्तनत का जाहो जलाल अब जवाल का शिकार हो चुका था। तभी दिल्ली उर्दू के अजीम शायरों का मरकज बन गया था, जिनके शहंशाह मिर्जा असदुल्ला खां गालिब थे। गालिब साहब न सिर्फ इश्को मोहब्बत और सोजो शराब की बातें करते थे, बल्कि जिंदगी की नशेबो फराज के बारे में भी अपने ख्यालों और जज्बों का इजहार करते थे। बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि उन्होंने तकरीबन आधी जिंदगी ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने अपना मुकदमा पेश किया और सालों पेंशन की बहाली के लिए कानूनी चाराजोई करते रहे। और ये ऐसी शख्सियत थी जिसकी शायरी इस्तियारों से पुर थी। वह अपनी एक गजल में मजाक से भरा एक कानूनी इस्तियारा यूं पेश करते हैं। फिर खुला है दरे अदालत नाज, गर्म बाजार ए फौजदारी है। तो चलिए सुनते हैं संजीव नागर जी की आवाज में इस बेहद खूबसूरत गजल, जनाब संजीव नागर जी।

0: वाह संजीव जी, क्या कमाल का फन आपने पेश किया है। दोस्तों, आज की ये हसी शाम जिससे हम सब सामाएं लुत्फंदोज हो रहे थे, अब मंजिल की आखिरी पड़ाव पर है। मैं लक्ष्मी बालचंद्रन अपने तमाम सुनने वालों और जयपुर रेडियो का शुक्रिया इस शेर से अदा करना चाहती हूँ। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, तुम ही चल दिए दास्तां कहते कहते। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
1: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है। प्रस्तुत है प्रोग्राम बातें दिल की, और बातें दिल की लेके आई हैं सुषमा, और सुषमा के साथ है जाने माने नाट्य निर्देशक, लेखक और रंगकर्मी अशोक राही। इस प्रोग्राम के टेक्निकल निर्देशक हैं ओपी शर्मा।
2: नमस्कार, मैं हूँ सुषमा। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। कहते हैं जीवन बनता है पलों से, और कोई भी पल तब खूबसूरत हो जाता है जब उसमें कुछ खास बात हो जाए। ऐसी ही खास बातों से तो सजा है हमारा जीवन। तो हमारी बातचीत में हम तलाशेंगे अपने खास मेहमान के खास पल इन बातें दिल की। चले चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। हफीज बनारसी की ये पंक्तियां हमारे आज के मेहमान की जीवन यात्रा या यूं कहे कर्म यात्रा पर सटीक बैठती हैं, जो पिछले 45 वर्षों से रंग कर्म से जुड़े हुए हैं और अपनी कला के रंगों से नित नई तस्वीर बनाकर सभी को आकर्षित करने का फन रखते हैं। राजस्थान के जाने माने नाट्य लेखक निर्देशक व्यंगकार श्री अशोक राही, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, राजस्थान साहित्य अकादमी अवार्ड, सवाई माधो सिंह कला अवार्ड, बेस्ट थिएटर प्रमोटर अवार्ड हरियाणा, ऐसे बहुत से अलंकरण के अलावा दर्शकों के दिलों के प्यार को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाते हुए हर नए पल में कुछ नया रचने की कला के महारथी हैं। नमस्कार अशोक राही जी।
3: नमस्कार। नमस्कार सुषमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी।
2: आपके दिल की बातें जानने का मौका आज हमारे पास आया है, तो लेके चलिए हमें अपने बचपन के शहर, घर आंगन में, और उस पल में जब आपके मन में ये विचार आया कि पहली बार कि कलम और रंगमंच आपके जीवन साथी बनेंगे।
3: असल में जैसा कि अक्सर होता है, कई बार हमारे जो बचपन में जो हमारी स्मृतियां होती हैं, बचपन में जो हम जिस माहौल में रहते हैं, उस माहौल का आदमी के ऊपर बहुत भारी प्रभाव पड़ता है। ये तो दुनिया के सारे मनोवैज्ञानिक कहते हैं, और मुझे लगता है कि मेरे साथ भी यही हुआ। बचपन में मैं अपनी बुआ जी के साथ रामलीला और इस तरह हमारे शहर में, मैं आपको बताऊं कि मैं एक छोटा सा शहर है अलवर, उसका रहने वाला हूं, तो उस शहर में ये रामलीला होती थी, भर्तृ महाराजा भर्तृहरि नाटक होता था, तो बहुत चार पांच छह साल का था तब वो देखने जाते थे, तो उसका कुछ प्रभाव रहा होगा। और उसके बाद में ये संयोग की बात है कि मेरे पिता सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, हमारे सिनेमा हॉल थे राजस्थान में दो तीन, और मैं बचपन में मेरा जो खेलने का समय था वो ज्यादातर सिनेमा हॉल में बीतता था, कि स्कूल से आए अपना बस्ता घर पे पटका और जाके सिनेमा में बैठ गए, और ऐसा भी नहीं कि कोई पूरा सिनेमा देख रहे हैं, कभी 10 मिनट देखा, कभी 15 मिनट देखा, कभी ना देखा, तो इस तरह वो उस जमाने की जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ये 1965, 66, 67, 68, 68 उस जमाने की जो फिल्में थी वो बहुत प्रभावशाली फिल्में हुआ करती थी। राज कपूर साहब थे, राज कपूर की संगम उन दिनों मैंने जितनी भी मेरे समझ में आई देखी, देवन साहब की गाइड देखी, दिलीप कुमार साहब की जो गंगा जमुना फिल्म है वो देखी, मनोज कुमार की उन दिनों बड़ा नाम था, उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध फिल्म थी शहीद, और उसके बाद में उपकार फिल्म आई उनकी, तो ये सारी फिल्में देखते देखते उनका संगीत, वो सारा माहौल हो सकता है कि वो मेरे दिमाग में रहा हो। और फिर कॉलेज के जमाने में जब मैं पढ़ता था, मैंने पहली बार मैं नाटक से जुड़ा जी सुषमा
2: जी। तो नाट्य लेखन की यात्रा यूं कहें कि तब से आरंभ हुई जब आप कॉलेज में पढ़ते थे।
3: जी जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि नाट्य लेखन की यात्रा तब से शुरू नहीं हुई, नाटक के प्रति जो अनुराग है कला के प्रति जो बात है दिल में कि ये कुछ है, कुछ करना चाहिए। वैसे मूलतः मैंने विज्ञान पढ़ी है, आपने भी विज्ञान पढ़ी है मुझे पता है, तो लेकिन विज्ञान के साथ साथ ये कला के इस क्षेत्र में फिर कुछ जीवन चला जाएगा ये उस समय नहीं सोचा था। मैं ऐसा कोई सोचता भी नहीं है मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा, अपन लोग कहते हैं कि बच्चे बचपन से ही सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। एक धारा होती है जो उस तरफ उसको ले जाती है और वो अवचेतन की धारा होती है। जी सुषमा,
2: बहता चला जाता है उस धारा में। तो ऐसा ही जो असर आप पर फिल्मों में डाला या नाटकों ने डाला वो आगे जाकर आपके जीवन से जुड़ गया, लेकिन उस समय शायद आपका भी यही मानस रहा होगा जैसे उस वक्त सोचते थे सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए कि पढ़ ले और उसके बाद एक नौकरी मिल जाए, तो ऐसा आपके साथ भी हुआ?
3: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ, लेकिन मैंने ये किया कि अपना अपना जो जो ये नाटक का और अभिनय का और विशेषकर उस समय साहित्य का, साहित्य से जुड़ने का जो सिलसिला है वो शुरू से ही बचपन से ही रहा। उस जमाने में बहुत साहित्य भी ऊंचे दर्जे का साहित्य पढ़ा, हालांकि ऐसा नहीं हो उस समय इब्ने सफी और ओम प्रकाश शर्मा और इनके उपन्यास भी, वेद प्रकाश काम्बोज, इनके जासूसी उपन्यास भी बहुत पढ़े जाते थे, हम 10वीं 11वीं में थे वो भी पढ़े, लेकिन
2: साहित्य ने आप पर असर डाला।
3: जी जी जी, और साहित्य भी, लिटरेचर भी पढ़ा। जी हाँ जी सुषमा,
2: तो नाट्य लेखन की यात्रा हमें बताएं कब से आरंभ हुई?
3: असल में नाट्य लेखन तो मेरा बहुत बाद में शुरू हुआ। शुरुआत में मैं आपको बताता हूँ, शुरुआत में हमारा शहर, मैं अपने शहर के की नाट्य उसके बारे में बताता हूँ, अलवर शहर की जो बात कर रहा हूँ।
2: हाँ।
3: वहां पर एक नाटक होता है, उस नाटक का नाम है महाराजा भर्तृहरि
2: जी,
3: और वो कमाल का पारसी रंगमंच का, पारसी शैली का एकमात्र नाटक है जिसको अलवर शहर आज भी जिंदा रखे हुए है। वर्ष उस नाटक के दशहरे से लेकर दीपावली तक लगभग 15-20 प्रदर्शन होते हैं और हर प्रदर्शन में कम से कम 8-10 हजार लोग उस नाटक को देखते हैं, टिकट से देखते हैं, टिकट खरीदते हैं, और अब तो मेरे ख्याल से उसका टिकट 500 रुपए इस तरह का है, हमारे जमाने में बहुत कम 1 रुपए 2 रुपए का हुआ करता था। और वो नाटक एक पारसी रंगमंच की परंपरा को लेकर चल रहा है, तो ऐसे नाटक उस शहर में हमने, उस जमाने में मेरे दोस्त हुआ करते थे, दुर्भाग्य से अब वो नहीं रहे हमारे साथ, ईश मधु तलवार नाम के एक दोस्त थे, बलवंत तक्षक नाम के एक दोस्त थे, देव कुमार मुखर्जी नाम के एक दोस्त थे, तो हम लोगों ने सोचा कि अपने शहर में एक आधुनिक रंगमंच की धारा शुरू की जाए। तो उसके दौरान हमने वहां पर सबसे पहले नाटक शुरू किए, और पहला नाटक हमने शुरू किया एक अनिल बर्वे नाम के एक बहुत बड़े मराठी के एक लेखक थे, और उस जमाने में 1980 में उनका एक बड़ा प्रसिद्ध नाटक था थैंक यू मिस्टर ग्लाड।
2: ओके।
3: बाद में उस नाटक के ऊपर फिल्में भी बनी, कालिया और दूसरी फिल्में, वो कमाल का नाटक था। उस नाटक को हमने अपने शहर में मंच एक और उस नाटक को, वो नाटक इतना सफल रहा, मेरे ख्याल से 1-2 हजार लोगों ने उस नाटक को देखा और बहुत बहुत पसंद किया
2: जी।
3: तो वो एक बुनियाद था नए रंगमंच की मेरे लिए भी, और मैंने उसको नाटक को निर्देशित भी किया था, हालांकि उस समय मैं बहुत युवा था, मन में बहुत डर भी था, लेकिन अच्छी बात यह रही कि वो नाटक सफल रहा क्योंकि हमने उसको तैयारी करने में बहुत मेहनत की थी।
2: तो मेहनत आपकी रंग लाई
3: जी,
2: और
3: जी।
2: ये जो मेहनत का दौर था ये शुरू हो गया आपकी जिंदगी में और जिंदगी का हिस्सा बन गया, और यही मेहनत आज आपको इस सक्सेसफुल यूं कहें कि एक मंच पर उसने खड़ा कर दिया है।
3: सुषमा जी, मैं एक मेहनत के ऊपर ही एक बड़ी जोरदार बात जो मेरे जीवन का अनुभव है ना, वो अपने नए मित्रों को, सुनने वाले मित्रों को जो हमारा रेडियो सुन रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि एक बहुत छोटी सी बात है लेकिन कमाल की बात है, वो ये है कि मेहनत गुमनामी में कीजिए, मेहनत गुमनामी में कीजिए, सफलता आपका शोर मचाएगी।
2: क्या बात, बिल्कुल।
3: अगर आप परिश्रम से जुड़े हुए हैं किसी भी कला से, कोई सी भी कला हो, मैं अपने नए साथियों को यही कहता हूं, कि आप उसको मन से दिल से प्रेम कीजिए उस कला को, और आप ये देखिए पूरा पूरा एक इतिहास है कला, कला क्षेत्र में इतिहास है, राजनीति में, साहित्य में, कि जो लोग मन से जुड़े वो सफल हुए।
2: तो नाट्य लेखन की यात्रा की बात हमने की, जिसकी शुरुआत अलवर शहर से हुई और फिर उसकी धूम जयपुर में मची और अब तो पूरे राजस्थान में इसकी धूम है, राइट? कौन सा वो वर्ष था जब आपका पदार्पण हुआ जयपुर में?
3: मैं जयपुर में आया था 1987 में, काफी बरस हो गए। अब तो कोई पूछता भी है कि कहाँ के रहने वाले हो तो मुंह से निकलता है जयपुर का रहने वाला हूँ, क्योंकि जहाँ फिर बस जाता है आदमी का वही घर हो जाता है। हम वैसे तो हम राजस्थान के देश के, अब मैं तो सच्ची बात बताता हूँ, मैं तो ये मानता हूँ कि मैं तो पूरी जो यूनिवर्स है उसका मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ, क्योंकि कलाकार के लिए तो अब यही है, ये सारी देश दुनिया सब अपनी है, यही हमारी संस्कृति में भी यही कहा गया है कि अखिल विश्व हमारा घर है।
2: एक हास्य व्यंगकार के रूप में आपने प्रसिद्धि हासिल की है, खास तौर पे कहूँ कि ये आपका जॉनर रहा है जिस पर आप लिखते भी हैं और बहुत से नाटक आप मंचित करते हैं। इसके अलावा आपने पीपल्स मीडिया एंड थिएटर की शुरुआत की और उसके आप प्रेसिडेंट रहे हैं, ये ड्रामा ग्रुप जिसने शुरुआत की। राजस्थान पत्रिका में लगातार 20 साल तक व्यंगात्मक बातों से परिपूर्ण कॉलम लिखना और सबको हर दिन एक सोच दे देना कि हाँ इस पर सोचना बहुत जरूरी है, एक आम जन को, बात करामात के नाम से बहुत प्रसिद्ध रहा, इतनी चीजों के लिए ये इंस्पिरेशन कहाँ से आता है?
3: देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि लेखन हो या साहित्य हो, जो सारा उपजता है, और एक एक बड़ी दिलचस्प मैं आपको बात बताता हूँ, वो सृजन प्रक्रिया के बारे में है। मैं हासी गंगी की भी बात करूंगा, लेकिन पहले सृजन प्रक्रिया की बात करूं। आप किसी भी लेखक से ये पूछिएगा कि आप लिखते कैसे हैं, मेरे ख्याल से इसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा, आप वो उत्तर दे ही नहीं पाएगा। और मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कोई मुझसे पूछता है कि आपने इतना इतने बरस तक 20 बरस तक हजारों लिखे हैं, प्रतिदिन लिखता था, कैसे लिखता था? मैं अब अपने लिखे हुओं को मैं स्वयं खुद पढ़ता हूं तो मुझको लगता है कि हे भगवान क्या ये मैंने लिखा है। मैं यकीनन बात बता रहा हूं इसमें। अच्छा एक इसको, इस बात को ही मैं दूसरी तरह से भी जोड़ के बताता हूँ कि देखिए हमारे यहाँ ये कहा गया है और ये धर्मशास्त्र में भी कहा गया है।

0: उसको उस तरह नहीं ले रहा जो एक धार्मिक परंपरावादी लोग रहते हैं लोग लेते हैं। मेरा निश्चित रूप से मानना है कि ये मनुष्यों के द्वारा रची गई है, लेकिन मैं एक बात आपको बता देता हूं कि उस मनुष्य को भी बिल्कुल पता नहीं होता जब वो अपना रचना लिखता है कि वो उसने कैसे लिख दी। एक बहुत बड़ी बात है। और आप चाहे इसमें गालिब को पढ़ लीजिए, कबीर को पढ़ लीजिए, वो सब तुलसी को पढ़ लीजिए, वो अपनी रचना प्रक्रिया में ये बात जरूर कहते हैं कि हमें खुद को नहीं पता कि ये हमने कैसे लिख दी। हालांकि लोग उसको कहते हैं कि ये इन्होंने विनम्रता वश कही है, लेकिन वो बात विनम्रता वश नहीं कही है, वो बात बिल्कुल सच है
1: जी।
0: इसको अंधविश्वास के रूप में न ले हम ये मेरा कहने का मतलब है कि आदमी के जीवन के अनुभवों का उसके जो निचोड़ होता है, जो वो सारी जिंदगी चीजों को देखता है, जो उसके मस्तिष्क में जाके पक जाती हैं और वो उस निकलती हैं
1: शब्दों के माध्यम से, फिर वो
0: शब्दों के माध्यम से
1: निकलती हैं। बिल्कुल
0: वो निकलती
1: और... हैं। कुछ ऐसा भी होता है कि हर दिन हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है या हम कुछ ऐसा लोगों में देखते हैं, तो आपकी जो एक किसी को देखने की या किसी प्रक्रिया को समझने की शक्ति आपके अंदर होती है, तभी आप उसे कर पाते हैं, वैसा कर पाते हैं।
0: निश्चित रूप से। चलिए मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ सुषमा। आप वाणी से जुड़ी हुई है, बोलने के माध्यम से जुड़ी हुई है, आप क्या अनेकों बार ऐसा नहीं होता है कि आप माइक्रोफोन के सामने हैं और उस समय आप बोल रही हैं और आपको अपने आप शब्द आपके सामने आते जा रहे हैं, अपने आप वाक्यों की बुनावट होती जा रही है, कैसे होता है?
1: हाँ वो हमारे
0: पहले तो ये बताइए।
1: बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, सही कह रहे हैं आप। और हमारे भीतर से वो बात आती है, लेकिन वो जो भीतर बात समाहित हुई है वो शायद हमारे अनुभवों का ही सारा का सारा जो एक निचोड़ है वो हमारे भीतर होता है और वही हम सब तक पहुंचाते हैं। हमें जो एक्चुअल लाइफ में अनुभव हुए होते हैं हमारे आसपास के व्यक्तियों की वजह से या हमारे आसपास की परिस्थितियों की वजह से, वही बाहर आते हैं। वो आपका मानना बिल्कुल सही है।
0: अब देखिए, अब हास्य व्यंग्य पे आते हैं अपन। हास्य में या व्यंग्य में दिन मुझको लिखना है, एक निश्चित समय पे लिखना है, अखबार छपेगा, चाहे मेरी तबीयत खराब है, चाहे मेरे घर में कोई खुशी है, चाहे मेरे बेटे का ब्याह है, चाहे ये है कि मेरी नानी का स्वर्गवास हो गया और मुझको, लेकिन मुझको लिखना है
1: जी।
0: क्योंकि अखबार आप इस बात का इंतजार नहीं करेगा, तो आपको तो लिखना ही है। अब उस सारी प्रक्रिया के अंदर प्रतिदिन लगभग, मुझको इस बात का गर्व है कि 20 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन मैंने वो ना लिखा हो
1: जी।
0: तो ऐसा थोड़ी हुआ कि मेरी जिंदगी में ये सारे जो होते रहते हैं ये नहीं हुए, लेकिन लेकिन एक नियमितता कि लिखना है तो वो लिखा। और अब बहुत सारे युवा मित्र पूछते हैं कि आपके आइडिया कहां से आते हैं
1: जी।
0: देखिए ये भी मैं आपको बता दूं, अगर मैं अपने दोस्तों से और विशेषकर आपके माध्यम से, अपने एफएम के माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने दिमाग को, अपनी इंद्रियों को खुला रखेंगे, आंख को और कानों को खुला रखेंगे, तो आपको आइडिये कहीं से भी मिल जाएंगे। आप सड़क पे जा रहे हैं, आप बस में बैठे हुए हैं, आप कॉफी हाउस में कॉफी पी रहे हैं, दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं, आपके घर में कोई कोई बुजुर्ग महिला आई है, वो अपने अनुभव बता रही है, आइडिया वहां से मिल जाएंगे आपको। आप प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं और वो ही सर्वश्रेष्ठ होंगे और आप उनको फिर उस, अब ये क्षमता तो आप में होनी चाहिए कि उनको आप
1: ग्राह्य शक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल कुछ ऐसे किस्से कहानियां कभी जीवन में जरूर हो जाते हैं और लेखक तो उन्हें कलमबद्ध कर देता है, मतलब ऐसे वाक्ये जो आपके नजरिए को ही बदल डालते हैं, क्या ऐसा कुछ हुआ आपकी जिंदगी में भी जो जिन्होंने आप पर असर डाला और बहुत बार आपकी जो एक सोच चल रही थी वो बदल गई, डायरेक्शन बदल गया?
0: यहाँ पे मुझको

0: कबीर याद आ रहे हैं और कबीर ने एक बहुत दिलचस्प बात कही है और वो कहा है कि कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुभास। इसका अर्थ ये है कि अगर आप किसी इत्र फरोश के साथ बैठे हुए ही हैं, बेशक वो आपको इत्र देगा नहीं, लेकिन उसके साथ बैठने से उसकी जो खुशबू है इत्र की, उसके इत्र की खुशबू, वो तो आपके इर्द गिर्द मन रहेगी, वो तो आपको उल्लासित करेगी, आनंदित करेगी।
1: बिल्कुल,
0: संगत का बड़ा महत्व है सुषमा जी। आप किस संगत में बैठते हैं? अगर आप विद्वान लोगों की संगत में, विद्वानों का देखिए, यहाँ विद्वानों का मतलब ये नहीं कि कोई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के साथ
1: बैठे।
0: नहीं नहीं नहीं, विद्वानों से मतलब है कि जीवन के अनुभवों से पके हुए। जैसे बात करामात में मैं सबसे ज्यादा जो बातें लिखता था वो मेरी नानी की लिखता था, जो मेरी नानी ने बचपन में मुझको बातें करती थी, उसकी हरकतें कैसे बात करती थी। मैं सबसे ज्यादा बातें, एक मेरा दोस्त था राधे, वो नहीं रहा, वो बिल्कुल लेमैन था, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, और उस राधे के साथ जो मैं बीतता था, वो बैठता था, उसकी बातें मैं राधे की बातें लिखता था, तो वो लोगों को बड़ी पसंद आती थी, वो कहती वाह वाह यार आप तो कमाल करते हो। तो ये मेरा कहने का मतलब है। जी
1: जी बिल्कुल, रंगमंच आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, या यूं कहूं कि मतलब जो आपकी लाइफ सेंटर्ड रही है वो रंगमंच को लेकर रही है, राइट?
0: जी,
1: रंगमंच को आपने बहुत महत्व दिया है और इसी क्षेत्र में आप अब बहुत सारे बच्चों को भी आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं अपने वर्कशॉप्स के द्वारा। ये जो रंगमंच होता है, इसका हमारे जीवन में किस तरह महत्व होता है, किस तरह आप जीवन यात्रा को जोड़ते हैं एक रंगमंच से?
0: तो पुनः नई पीढ़ी को एक दिलचस्प छोटी सी कुछ कविता के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो उनको बहुत याद रखना चाहिए। एक छोटे से चार लाइनें हैं, किसी शायर ने लिखा है कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, तुम भी संभाले हो गिरती हुई दीवारों को अब, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है।
1: बहुत खूब,
0: ये बुजुर्गों की निशानी को संभालना, यहां बुजुर्गों की निशानी का मतलब ये नहीं कि हम उनके घर को संभालें, हम वो जो रिवायत है, जो संस्कार है हमारी, जो हमारे पीढ़ियों से हमारी संस्कृति में है, इन संस्कारों को संभालना। और थिएटर में भी यही है, देखिए थिएटर हमारे यहाँ सबसे, सारे विश्व में सबसे पुरानी जो परंपराएं हैं वो हमारे देश में मिलती है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में, जो हजारों बरस पहले की है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूनान के अंदर भी सैकड़ों साल पुराना रंग, हजारों बरस पुराना रंगमंच है, लेकिन हमारी परंपरा यूनान के जो रंगमंच है, यूनानी रंगमंच से भी पहले की है। और पश्चिम में तो स्टैनलिवस्की वगैरह, वो तो 19वीं सदी के लोग हैं वो तो
1: जी,
0: बाकी जो कुछ है। तो इस परंपरा को जो हमारे भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में लिखा है, उस परंपरा के अनुसार अपना नाटक करना, और मेरा उद्देश्य यह है कि नई पीढ़ी को मैं यही सिखाता हूं। बहुत छोटी छोटी बातें उन्होंने, और उन्होंने तो नाटशास्त्र पढ़ने में तो आदमी की सारी जिंदगी गुजर जाए तो भी वो उसको नहीं समझ सकता, इतनी सारी बातें उन्होंने इतने बारीक ढंग से लिखी गई हैं। वो पता नहीं भरत मुनि एक थे या कई पीढ़ियों ने वो लिखा है, इस बात की दूसरी बात है। नई पीढ़ी को मैं ये समझाना चाहता हूं कि नाटक जो एक ऐसी कला है जिसमें सारी कलाएं समाहित हैं। देखिए नाटक में संवाद अदायगी, बोलने की कला है, नृत्य है, अंग संचालन है, नाट्य तो है ही उसके अंदर, इसके अंदर संगीत है, नाट्य संगीत, मनोविज्ञान है, सामूहिकता है कि नाटक कोई एक आदमी नहीं कर सकता, नाटक के लिए बड़े एक ग्रुप की जरूरत पड़ती है
1: जी।
0: तो वो एक समूह की, और ये सारी की सारी चीजें जो मैनेजमेंट है जिसको सिखाया जाता है, जिसको लाखों 10 लाख रुपए फीस होती है अच्छे कॉलेज में एमबीए की फीस, ये कि ये बातें वहां पे भी सिखाई जाती हैं। वो ठीक है, वो एक व्यवस्थित रूप से उनकी एक भाषा है, उनकी एक थ्योरी है, उनका एक सब कुछ है, लेकिन नाटक में भी वही चीजें सिखाई जाती हैं। नाटक में अनौपचारिक ढंग से सिखाई जाती हैं, नाटक में उसको कलात्मक ढंग से सिखाई जाती है। और यही कारण है कि पिछले दिनों सुषमा जी अलग अलग डिसिप्लिन के जो बच्चे मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं वो बच्चे, जो बच्चे MBBS कर चुके हैं वो बच्चे, ऐसे बच्चे जो PhD कर रहे हैं, ऐसे बच्चे जो आर्किटेक्चर में आर्किटेक्ट बन गए वो, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अपना भविष्य ही इस कला माध्यम में तलाशते हैं कि हमको तो मुंबई जाना है और अभिनेता बनना है
1: जी।
0: तो ऐसे सैकड़ों बच्चे मेरे जीवन में, सैकड़ों तो हो सकता है कि 1000 के आसपास संख्या हो गई हो, क्योंकि हर बरस 50-60-100 बच्चे आ जाते हैं, तो हजारों बच्चे मेरी जिंदगी में आए। और वो देखिए, मैं एक बात और बताता हूँ सुषमा जी, कि कोई जरूरत नहीं है कि आप उस कला को अपनी जीविका का भी साधन बनाए, कोई सी भी कला हो, चाहे संगीत की कला है। मैं आपकी बात करता हूँ, जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ, आपने भी शुरुआत संगीत से की थी ना
1: जी,
0: गायिका थी आप, प्रसिद्ध गायिका रही थी, आपने एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार भी जीता है
1: जी।
0: लेकिन वो सारी चीजें मनुष्य के काम आती हैं और उसके जीवन को एक अच्छा बनाने में, एक जिसको कहते हैं प्रफुल्लित करने के अंदर ये सारी कलाएं काम आती हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि आप नाटक से जुड़े, आप बोलने से जुड़िए, आप पेंटिंग से जुड़िए, आप नृत्य से जुड़िए, आधुनिक नृत्य कीजिए। कोई वो ऐसा नहीं है कि आप भरतनाट्यम या कथक या कथकली करेंगे, आप जो आधुनिक नृत्य है उसकी जो कोरियोग्राफी आजकल करते हैं उससे जुड़िए।
1: यानी आर्ट को अपनी लाइफ में एक वो इम्पोर्टेंट जगह देनी बहुत जरूरी है।
0: निश्चित रूप से जी जी जी हाँ।
1: और जिंदगी के जो चैलेंजेस होते हैं, मुझे लगता है एक आर्टिस्ट उन्हें बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लेता है। चैलेंजेस को कैसे हैंडल करना है ये भी हमें रंगमंच बहुत अच्छे से बखूबी सिखा देता है। अब बात करते हैं कुछ मेमोरेबल प्रोजेक्ट्स की। आपके बहुत से प्रोजेक्ट रहे हैं, रेडियो में आपने बहुत कमाल का काम किया है, रंगमंच तो किया ही है, तो कुछ ऐसे पल जब आपको वाकई गर्व हुआ हो और अपनी टीम पर गर्व हुआ हो, अपने जो भी आपका कार्य रहा उस पर गर्व हुआ हो, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी बातें जो सभी को बताना चाहेंगे।
0: जी जी, मैं दो तीन बातें बताता हूँ। एक तो सबसे बड़ा युवा पीढ़ी के लिए और नौजवानों के लिए, किसी के भी लिए भी, एक दो बातें मैं जो कहना चाहता हूँ वो एक है कि खुदा के हाथ में मत सौंप सारे कामों को, बदलते वक्त में कुछ अपना इख्तियार भी रख। कुछ काम अपने लिए भी छोड़ मेरे प्यारे दोस्त। भगवान के भरोसे मत रह, जो करेगा भाग्य करेगा, जो होगा ईश्वर चाहेगा वो होगा, वो तो होता ही है, चलो ठीक है मान लिया उसको भी, लेकिन जब आप खुद उसमें नहीं लगेंगे। उदाहरण के लिए मैं एक बात बताता हूं, मैंने एक नाटक किया जिस नाटक की अवधि थी 10 घंटे, रामचरित नाट्य।
1: बिल्कुल,
0: 10 घंटे, ये आमतौर से हम 1-1.5 घंटे का नाटक करते हैं, उस नाटक को हमको तैयार करने में लगभग 3 महीने लगते हैं, 90 दिन में एक नाटक तैयार होता है। बहुत बड़ी प्रक्रिया है नाटक की तैयार करने की, क्योंकि एक सामूहिक विधा है। 10 घंटे के नाटक को तैयार करने में, उसकी तैयार करने में मैंने कम से कम 8 महीने तो उसकी स्क्रिप्ट पे काम किया। दुनिया भर की किताबें पढ़ी, दुनिया भर की, मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी, रामचरित मानस पढ़ी, राधेश्याम जी की रामायण पढ़ी, मेहोजी गोदारा की रामायण पढ़ी, एक दक्षिण की एक बहुत बड़ी संत है, उनकी उनकी रामायण पढ़ी, ऐसे कम से कम 10 रामायणों का पाठ किया, उनमें से प्रसंग निकाले, उनमें से निकाल के और फिर एक एक स्क्रिप्ट तैयार की
1: जी।
0: परंपरागत रामायण जो चलती है उसकी स्क्रिप्ट में निकलवा के लाया अपने दोस्तों से और उनको मिला के एक नाटक, 10 घंटे का नाटक हुआ जिसमें नृत्य भी था, जिसमें संगीत भी था, और वो हमने जवाहर कला केंद्र में किया, जवाहर कला केंद्र के साथ मिलके, और लगातार 2 वर्षों से कर रहे हैं, हजारों लोग उसको देखते हैं जी
1: जी।
0: 5 घंटे जी।
1: आपका खेजड़ी की बेटी मुझे याद आ रहा है, जिसके मतलब पता नहीं अनंत शोज आपने किए हैं जगह जगह पर।
0: खेजड़ी की बेटी की भी यही प्रक्रिया रही। खेजड़ी की बेटी जब नाटक तैयार किया, इसका भी मैं दिलचस्प बताता हूँ कि मेरे मित्र थे श्री डीएन शैली साहब, वो नहीं रहे, मरहूम डीएन शैली साहब, उन्होंने मुझसे कहा कि यार एक ये घटना है कि राजस्थान में 363 लोगों ने पेड़ों के लिए बलिदान किया था। ये बात मैं बताता हूँ आपको, 1990 के आसपास की बात है, 90-91 की, और ये नाटक तुमको लिखना है, क्योंकि मैं शैली साहब के लिए बच्चों के नाटक लिखता था, वो मुझसे लिखवाते थे और वो मंचित करते थे। उन्होंने कहा ये नाटक लिख। एक आईसी श्रीवास्तव साहब एक बहुत पुराने आईएएस अधिकारी हुआ करते थे, शिक्षा कर्मी बोर्ड के उन दिनों अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि भाई इसके ऊपर नाटक लिखवाओ
1: जी।
0: वो नाटक का मैंने उस पढ़ा तो उसके बारे में इधर उधर सुना, पता था कि 363 लोगों ने बलिदान किया है, तो मैंने एक छोटी सी सिनॉप्सिस बनाई और डीएन शैली साहब को दे दी। मैंने कहा यार ये घटना है। डीएन शैली साहब ने उसको पढ़ा, फिर व्यंग से मुस्कुरा के कहा कि यार ये तो कोई बात नहीं है, ये तो क्या क्या है, ये तो तुमने कुछ मेहनत ही नहीं की, इधर उधर से किया। ये बात मुझको बहुत चुभी मन में।
1: अच्छा।
0: मैंने कहा यार ये तो मतलब जो चालू, जिसको कहते हैं ना चालू माल, अशोक रही, ये तो बहुत तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। उसके बाद मैंने शोध करना शुरू किया। प्रोफेसर हीरा लाल जी माहेश्वरी राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे हिंदी के, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उन्होंने बिश्नोई संप्रदाय और जाम्बोजी के ऊपर पीएचडी की थी, उनके 2 वॉल्यूम थे, कम से कम 1000 पृष्ठ
1: जी
0: किताबें थी बड़ी बड़ी, वो किताबें मैं लाया। फिर मैंने ये सोचा, ये लगा कि उस समय जो मारवाड़ था, ये घटना जोधपुर के में खेजड़ी में हुई थी ना, तो मारवाड़ का इतिहास क्या रहा होगा, उस समय देश की राजनीति क्या कर रही होगी। तो विश्वेश्वर नाथ रेव नाम के एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं मारवाड़ के, उनकी पुस्तकें हैं, वही 1000 पृष्ठ मारवाड़ का इतिहास, वो मेरे मित्र से लाया। और उनको इसके अलावा मेरे मित्र श्री तुलसीराम जी माजू जो बिश्नोई हैं, हेतराम जी बिश्नोई, कर्नल बिश्नोई, ऐसे कई बिश्नोई मित्रों के घर गया, उनसे पूछा कि क्या आपकी वैल्यूज हैं, क्या आप पहनते हैं, क्या क्या ये घटना है, कौन लोग थे जो 363 लोग जो मर गए। तो उन्होंने मुझको एक सूची दी कि ये 363 लोग मरे थे
1: जी।
0: और उन सबको मिला के उनका गहन अध्ययन करके मैंने एक नाटक लिखा, और वो नाटक की अवधि मात्र 1 घंटा 20 मिनट
1: जी।
0: लेकिन उस 1 घंटे 20 मिनट को नाटक को तैयार करने में मुझे तो महीनों लगे और हजारों पृष्ठ पढ़ने पड़े, तो वो नाटक तैयार हुआ।
1: लेकिन आप वो मेहनत रंग लाई,
0: इतनी रंग लाई कि पूरे देश में वो जब जहां जहां मैंने नाटक खेला, 20-20 हजार लोगों के बीच में खेला तो उनको उन्होंने पसंद किया, इंडिया इंटरनेशनल में खेला 400 लोगों के बीच में, जो देश के बिल्कुल सुपर इंटेलेक्चुअल लोग हैं उन्होंने वो पसंद किया, मंत्रियों के बीच में खेला, राज्यपालों ने पसंद किया, सामान्य जन में खेला उन्होंने पसंद किया। उसका कारण ये था कि एक तो वो घटना, दूसरा उसकी ऑथेंटिसिटी इतनी जबरदस्त हो गई, और सुषमा जी आप यकीन नहीं करेंगे, उसके बाद में बिश्नोई संप्रदाय के तो लोग ही मुझको आके बताने लगे कि ये घटना ऐसे हुई थी, जबकि वो पूरी तरह घटनाक्रम मैंने अपने हिसाब से नाटकीय तरीके से बनाया था, लेकिन वो इतना विश्वसनीय हो गया। ये कुल मिला के जो मैं कहना चाहता हूं ना, वो अध्ययन, अध्ययन के साथ उसमें अपनी कल्पनाशीलता जब तक नहीं करेंगे, एक लेखक का यही सृजन है। अब कोई मुझसे पूछता है कि नाटक तुमने कैसे लिखा, तो मैं यही बताता हूं, बाकी वो ये है कि तो जाम्बो जी ने, गुरु जम्बेश्वर ने और अमृता देवी ने लिखवा लिया, वरना मैं कौन होता हूं। ये नाटक तो उन्होंने लिख दिया जो 300 बरस पहले ये बलिदान कर गए। एक्चुअली नाटक तो ये उन्होंने लिखा है।
1: बिल्कुल, लेकिन आपकी बातों से ये साफ जाहिर हो रहा है कि कितनी चीजों का समावेश होता है जब एक कृति को तैयार किया जाता है।
0: बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है सुषमा जी।
1: एक नाटककार के रूप में आप आज जो अपना आसपास का दौर देखते हैं, लोगों को देखते हैं, क्योंकि यंगस्टर्स से आपका काफी आप रूबरू होते हैं, है ना, अपने आर्ट को उन तक पहुंचाते हैं, तो क्या सोचते हैं आप, क्या बदलना चाहते हैं आज के वक्त में अगर आप नजर डालें तो?
0: नहीं देखिये, ये भी एक बात है, कोई भी लेखक अगर ये सोच के करेगा कि मैं पूरे समाज को बदल दूंगा, तो ये उसका रवैया ठीक नहीं। इसमें उसमें उसका अहंकार बोलता है
1: जी।
0: तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी थी, उस समय कतई उनका मंतव्य नहीं था कि मैं कोई समाज को सुधारूंगा। वो उन्होंने एक भाव से लिखी थी। कबीर ने जो दोहे लिखे वो अपने मन के भाव से लिखे। मीरा के जो पद हैं, मीरा का जो प्रेम का है, उन्होंने, मीरा ने ये थोड़ी सोचा कि मैं इस तरह समाज में प्रेम का प्रसार करूंगी। ऐसा नहीं होता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। मैं जिस तरह से होता हूं, लेखक को ईमानदारी से अपने काल को देखे कि मेरे समय में क्या चल रहा है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, जब मैंने खेजड़ी की बेटी नाटक लिखा, तो उस समय जो उसका राजनीतिक पोर्शन है वो लिखा, तो उस समय राजनीति में क्या था कि 2 साल में कम से कम 6-7 बादशाह वहां बदल गए थे दिल्ली में, मोहम्मद अजम और जरदार और जरदार शाह, और 6-6 महीने एक एक साल रह के। और संयोग की बात है, जब मेरा यह नाटक लिखा जा रहा था, उस समय हमारे देश में भी ये हो रहा था, पहले चंद्रशेखर, वो राजीव गांधी थे, फिर चंद्रशेखर बने, फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह बने, फिर इंद्र कुमार गुजर, यानी के साल 6 महीने में 5 प्रधानमंत्री हमारे देश में भी बदल गए।
1: अच्छा,
0: अब आप ये देखिए, ये कोइंसिडेंट है क्या है कि, लेकिन कैसे वो 300 बरस पहले की राजनीति और उस समय की राजनीति बिल्कुल यूं की मिल रही थी। लोगों ने उस समय तो एकदम जोड़ा कि अरे यही तो हो रहा है, वहां पे बादशाह बदल रहे हैं, यहाँ प्रधानमंत्री बदल रहे हैं। आपको ध्यान होगा उस काल में हमारे देश में कितनी जल्दी प्रधानमंत्री बदले थे।
1: जी जी जी,
0: कुछ घटनाएं कुछ होती है। अच्छा, आज भी आज कोई नया लेखक है, वो कोई लिखना चाहे, मैं कहता हूं उस समय देखिए कैसा हमारे समाज के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, विशेषकर महिलाओं को लेके क्या प्रॉब्लम, कितने मतलब जिसको कहते हैं कि हम क्या, मेरे शब्द समझ में नहीं आ रहा है, में दिखावटीपन हमारे समाज में आ गया है। जिंदगी में सारे दौरों में आ गए, कितने क्या हम इतने सहज हैं जैसे हमारे माता पिता या हमारे दादा दादी हुआ करते थे। आप देखिए, मुझे तो यकीन नहीं होता कि ब्याह शादी हमारे घरों में, अब मैं देश के सेठों की बात नहीं कर रहा, मैं तो हमारे घरों की बात कर रहा हूं, हमारे घरों में जो आजकल शादियां होती हैं, अरे बाप रे कितना दिखावटीपन आ गया उसमें। जबकि हमारे जमाने में 50 बरस पहले जो शादियां होती थी, कैसे सहजता से शादियां होती थी। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन लगती हैं, ठीक है पैसा आया है, कैसे खाने पीने की चीजें बदल रही हैं, कैसे संस्कार, आप देखिए समाचार पत्रों में जब हम खबरें पढ़ते हैं, और विशेषकर बच्चियों को लेकर जो खबरें आती हैं, दिल नहीं टहल जाता है।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल, आप एक लेखक का ये अपने आप दायित्व बनता है और अपने आप उसको वो लिखता है और लिख भी रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं लिखा जा रहा, लिख रहे हैं। ये जो सामाजिक ढोंग है, राजनीतिक ढोंग है, अभी मैंने नाटक किया जो मुंबई के लेखक अनुरोध शर्मा उनका लिखा हुआ वन फूल की पत्ती गुल, पूरी राजनीति का ऐसा वो है कि एक एक राजनेता कैसी कैसी हरकतें कर रहा है उसमें और उसकी आत्मा बदल गई। वो बड़ा एक दिलचस्प नाटक है, वो अभी पिछले दिनों ही शो किए थे उसके
1: जी।
0: कहना मैं ये चाहता हूं कि ये चीजें रचनाकार के की रचनाओं में अपने आप आते हैं, उनको हास्य से प्रकट कीजिए, आप व्यंग के साथ प्रकट कीजिए, लोग आनंद लेते हैं, लेकिन उस चीज को वो दिल पे लगती है उनके, ऐसा नहीं है वो सोचते हैं कि यार ये गलत है तो गलत है। जी सुषमा जी,
1: अशोक राही जी ने वैसे तो बहुत कुछ अभी तक अपनी जीवन यात्रा में पाया है, लेकिन ऐसा होता है कि बस जीते जीते हमारे जो सपने हैं वो बदलते रहते हैं, तो ऐसा कोई सपना जो अभी भी बाकी है आप देखते हैं और उसे यथार्थ का स्वरूप देना चाहते हैं?
0: मुझे गालिब याद दिला दिया, गालिब ये लिख के गए हैं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले,
1: हर ख्वाहिश पे दम निकले,
0: बहुत निकले मेरे अरमाफ लेकिन फिर भी कम निकले।
1: तो कुछ ना कुछ तो छूट जाता है,
0: निश्चित रूप से छूटता है। एक एक आदमी अपने अपने जीवन में क्या कर सकता है, एक कितना लिख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए एक एक और दिलचस्प बात बताता हूँ, वो हमारी परंपरा में, हमारे देश की परंपरा में ही, हमारे यहाँ पे कोई रचना, महान रचना गुरु शुरू करता था लिखना और गुरु अपने पूरे जीवन में लिखता रहता था और उसके बाद में उसका जीवन कम पड़ जाता था तो उसके शिष्य उसको लिखते थे,
1: पूरा करते थे जी,
0: पूरा करते थे। और मजे की बात कि वो अपना नाम भी नहीं देते थे उसमें, शिष्य नाम गुरु का ही चलता था। महाभारत जैसी महान रचनाएं जिसमें 100,000 श्लोक हैं, नाट्य शास्त्र जैसी रचनाएं, ये किसी एक आदमी का काम नहीं है
1: जी,
0: ये बड़ी लंबी परंपरा है, ये परंपरागत तरीके से लिखी हुई चीजें हैं, ये तय है। लेकिन नाम वेद व्यास जी का ही है और बाकी लोग पूछते भी नहीं है और कहते भी नहीं है और शिष्य भी नहीं कहते थे हमारे। देखिए आज भी लोक के अंदर ये परंपरा चलती है, जैसे एक भगत नाम के एक मान लो लेखक हैं जो लोक गीत लिखते हैं, तो उनके जो शिष्य है ना वो भी भगत नाम से लिखेंगे और इस परंपरा को कहते हैं भोग लगाना
1: जी।
0: जैसे अपने आते हैं ना शब्द आते हैं कि बीच में गजल के अंत में शायर का नाम आता है, ऐसे वो अपने गुरु का नाम ही उस रचना के अंत में लिखते हैं
1: जी।
0: कबीर के नाम से ऐसी हजारों रचनाएं समाज में घूम रही हैं जिनमें कबीर, कबीरा कहत कबीर सुनो भाई साधु, कबीर ने लिखी है लेकिन कहत कबीर सुनो, अगर मान लो उनका कोई अनुयायी है तो वो भी यही लिखेगा कहत कबीर सुनो भाई साधु। ये ऐसा डेडिकेशन, ऐसी ऐसा समर्पण, ऐसी परंपरा, ये हमारी हमारी परंपरा में मिलती है, हमारे देश की साहित्यिक परंपरा में जी।
1: बिल्कुल, हम आपकी जो डेडिकेशन है उसको भी सलाम करते हैं और चाहेंगे कि जो भी यंगस्टर्स हैं जो आप ही के पदचिन्हों पर चलना चाहते हैं, ऐसा सपना देखते हैं, क्या उनके लिए कहना चाहेंगे और क्या कुछ बातें हैं जो उनके साथ, क्योंकि आप शेयर करते ही रहते हैं अपनी वर्कशॉप्स के जरिए, उन नए नए बच्चों को बहुत सारा इंस्पिरेशन देते रहते हैं, तो आज क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, वो सुन लीजिए कि इस अंधेरे में तो ठोकर ही उजाला देंगी, इस अंधेरे में तो ठोकर ही उजाला देंगी, रात जंगल में कोई शम्मा जलाने से राह। आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। बुद्ध कह के गए थे, बुद्ध जब मरने लगे तो उनका जो शिष्य था, जो उनका भाई भी था चचेरा भाई आनंद, 40 बरस तक उनके साथ रात था, वो रोने लगा और कहने लगे कि तथागत आप जा रहे हैं, हमारा क्या होगा? तो तथागत ने कहा कि अप दीपो भवे, अपने दीपक खुद बनो
1: जी,
0: नई पीढ़ी को अपना दीपक खुद बनना पड़ेगा। आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जो परंपरा है, अपने गुरु हैं, जो अच्छा लिखने वाले हैं, जो अपने बुजुर्ग हैं, उनसे नहीं सीख सकते। सीखिए उनसे, वो तो सबसे बड़े आपके साथी हैं, लेकिन अंत में आपको खुद ही खड़ा होना पड़ेगा, खुद ही सीखना पड़ेगा। और मैं इस बात को उस तरह ना लिया जाए, खुद शिताई में ना लिया जाए, लेकिन मेरा तो नाटक में कोई गुरु ही नहीं रहा कि जिससे मैंने सीखा हो। लेकिन यूं देखते हैं तो हजारों दत्तात्रेय की तरह हर वो साथी, हर वो गलती मेरी गुरु थी, हर नया साथी मेरा गुरु होता है जो एक नई तरीके से एक्टिंग करता है, और वो बात ही बातों में एक ऐसी बात कह जाता है कि जो दिमाग के एकदम खोल देती है, प्रकाश लग जाता, करे ये बच्चा तो ऐसी बात कर रहा है। तो सीखने का जो जज्बा है, ये सबसे बड़ी बात है सुषमा जी। जी,
1: सीखने की प्रक्रिया अनंत चलनी चाहिए, जीवन पर्यंत चलनी चाहिए, यह शुक्राई जी का मानना है और उनके साथ भी यही चल रहा है। तो हम यही कहेंगे कि आपका जो ये हसीन सफर है वो यूं ही चलता रहे, बहुत सारे माइलस्टोन्स अभी आपने क्रिएट किए हैं, लेकिन और भी करें जिनको देखकर हम इंस्पायर हो, नए बच्चे इंस्पायर हो और बहुत कुछ सीखें, बहुत कुछ समझें।
0: बस सबसे बड़ी बात है, मित्र अच्छे होने चाहिए, समझदार होने चाहिए, आप सरीके व्यास जी जैसे ऐसे मित्र हो तो फिर तो कहना ही क्या, आदमी अपने आप आगे बढ़ेगा।
1: तो अशोक राय जी, आपका हम दिल की बातें जो आपने हम सभी के बीच रखी हैं आज, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच।
0: मैं भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके माध्यम से मैंने भी बड़े खुले दिल से अपनी जो भी मेरी समझ है जीवन की वो आपके सामने रखी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी।
1: और हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हरिशंकर व्यास जी का और साथ ही ओपी शर्मा जी का। थैंक यू सो मच।
2: आप सुन रहे थे प्रोग्राम बातें दिल की, और दिल की बातें कर रही थी अशोक राही के साथ सुषमा। टेक्निकल निर्देशन रहा ओपी शर्मा का, और अब डॉक्टर गाधा के सुरीले गीतों की।

सुनने का खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा सलिपियो बोर रंग भोर कर भोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी।

गीत सुहाने आप सुन रहे थे डॉक्टर गाथा महंती की आवाज में, आपकी आवाज आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। आज का ये सुहाना सुरीला सफर यहीं तक, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।

तिनक दिन दिदिन तिनक दिन। अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो।

0: need to be sad now. You can do all of this on a click away through Jaipur Radio. Send messages and dedicate your favorite songs to your loved ones on your favorite program. Your voice, your identity. So what are you waiting for? Download Jaipur Radio app through Play Store and tune into your favorite songs. Celebrate your special occasion only on your own radio, Jaipur Radio.
1: आओ झूमे गाए। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
2: संगीत जगत से जुड़े सभी संगीत प्रेमियों को मुकेश चोपड़ा का प्यार भरा नमस्कार। सभी का मूड्स ऑफ रफी प्रोग्राम में मैं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, रफी जी ने हर तरह के गाने गाए हैं, चलिए उनके कुछ प्यार भरे रोमांटिक गीत सुनते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं 1967 में रिलीज्ड फिल्म शागिद से, जिसमें जॉय मुखर्जी और सायरा बानो थी। इस फिल्म का सदाबहार म्यूजिक दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, जो आज तक तरोताजा है। इसी फिल्म का एक सदाबहार रोमांटिक गीत सुनते हैं जिनी और डॉक्टर शरद की आवाज में।

वाह क्या बेहतरीन गीत पेश किया। अगला गाना सुनते हैं 1968 में रिलीज्ड फिल्म हसीना मान जाएगी से, जिसमें शशि कपूर और बबीता जी थीं। प्रकाश मेहरा जी की ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म का सदाबहार म्यूजिक दिया कल्याण जी आनंद जी ने, जिसमें मोहम्मद रफी जी और लता जी के गाए हुए गाने बहुत फेमस हुए। ऐसा ही एक मधुर और बेहतरीन गीत सुनते हैं डॉली जी और संजय जोशी जी की आवाज़।

0: बहुत खूब, चलिए अगला गाना सुनते हैं 1962 में बनी फिल्म दिल तेरा दीवाना से, जिसमें शमी कपूर और माला सिन्हा थी। इस फिल्म का संगीत दिया शंकर जयकिशन और प्लेबैक किया मोहम्मद रफी, लता जी और आशा जी जैसे कलाकारों ने। ऐसे ही फिल्म का एक मधुर गीत सुनते हैं प्राची और सुबोध जी की मधुर आवाज।
1: पिछली गिरा के आप खुद।

क्या मधुर गीत पेश किया, बहुत खूब। अगला गाना सुनते हैं 1961 में बनी फिल्म जंगली से, जिसमें शम्मी कपूर और सायरा बानो थी। इस फिल्म का संगीत दिया शंकर जयकिशन ने और प्लेबैक किया मोहम्मद रफी और लता जी ने। चलिए इसी फिल्म का एक मधुर ड्यूएट सुनते हैं सविता जी और अमित पाठक जी की मधुर आवाज में।

वाह, बेहतरीन प्रस्तुति। अगला गाना सुनते हैं 1958 में रिलीज्ड फिल्म काला पानी से, जिसमें देवानंद और मधुबाला जी थीं। इस फिल्म का सदाबहार संगीत दिया एसडी बर्मन जी ने और प्लेबैक किया मोहम्मद रफी जी और आशा भोंसले जी ने। आइए इसी फिल्म का एक मधुर गीत सुनते हैं सचिन और प्रणीति जी के मधुर स्वरों में।

0: वाह, बेहतरीन प्रस्तुति। दोस्तों, कहीं ना जाइएगा, रफी जी के मधुर गीतों का सिलसिला अभी जारी है।
1: रफी सोलफुल, बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट दिया गया है मुझे। सोलफुल यानी कि रूहानी गाने, वो गाने जो दिल को छू जाएं, चाहे वो दर्द भरे गीत हों, गजल हों, चाहे रोमांटिक हों, चाहे शरारती हों। रूहानी संगीत हमारी रूह की गहराइयों में पहुंचकर हमारी रूह कभी गमगी कर देता है, कभी प्योर लव का एहसास दिलाता है, कभी एक छोटा बच्चा बनकर गुदगुदाता है, कभी हंसाता है, कभी रुलाता है। कुल मिलाकर रूहानी संगीत हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हम सब अपने जीवन में कभी न कभी खुद को उन गीतों से जुड़ा पाते हैं। मोहम्मद रफ़ी के ऐसे ही कुछ नगमे, गीत, गज़ल पेश करूंगा आपके सामने आज मैं मनु मृदुल, इंटरनेट रेडियो जयपुर के सौजन्य से, आओ झूमे गाएं समूह की ओर से। सबसे पहले सुनते हैं एक बेहद रुमानी गीत सूर्य रेखा जी और सैंडी की आवाज़ में, फिल्म मोहब्बत इसको कहते हैं, जिसमें मोहम्मद रफ़ी का साथ दिया है सुमन कल्याणपुर ने।

वाह क्या बात है सूर्य रेखा दी और सैंडी। जैसा कि मैंने कहा, रूहानी संगीत सिर्फ रूमानी गीतों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बेचैन दिल की निराशा का भी एहसास दिलाते हुए दिल की गहराइयों में उतर जाता है। ऐसा ही एक गीत सुनिए श्रुति और मुकेश चोपड़ा की आवाज में, जिसे फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त में मोहम्मद रफी ने गाया था।

चलिए अब सुनते हैं दिल की अभिव्यक्ति को उजागर करने वाला मोहम्मद रफी का गाया एक गीत अनिल झुमका वाला की आवाज में, फिल्म तीन देवियों से।

अगला गाना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपको अवश्य ही ऐसा लगेगा जैसे जन्नत यहीं उतर के आ गया हो। नौशाद का संगीत और मोहम्मद रफी की गायकी, साजों की आवाज, सुर लय ताल, जैसे शहद की मिठास और दिल में उमड़ता हुआ प्रेम। इससे ज्यादा क्या हो सकती है कोई प्रेम की अभिव्यक्ति। इस गीत को मोहम्मद रफी ने गाया था फिल्म मेरे महबूब में, और आपके सामने ला रहे हैं संजय हारने।

सिर्फ प्रेम की अनुभूति ही नहीं बल्कि विरह और विरह की उदासी और मोहब्बत की बेचैनी को भी रफी अपने गानों में ऐसे उतारते थे कि चाहे किसी का दिल टूटा हो या ना टूटा हो, हर कोई उस गम को उनके गाए गानों में आसानी से महसूस कर ही लेता है। मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनकर लगता है कि मोहम्मद रफ़ी ना सिर्फ महसूस करके गाते थे बल्कि जो सुनता है वह खुद उसमें खो जाता है। इसी को कहते हैं रूहानी आवाज़। सुनते हैं अगला गीत विमल सोनी की आवाज़ में, जिसे मोहम्मद रफ़ी ने फिल्म दिल एक मंदिर में गाया था।

कहते हैं सत्य कड़वा होता है, मगर यकीन मानिए मोहम्मद रफ़ी ने इस बात को झुठला दिया है। और यह हो पाया है मोहम्मद रफ़ी के सत्य को अभिव्यक्त करने के अंदाज से। यही नहीं, अगला गाना सुनकर आपको सत्य बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा, बल्कि उस सत्य के आध्यात्म को सुनकर सोच में पड़ जाएंगे। शाश्वत सत्य को मोहम्मद रफ़ी ने जिस गंभीरता से गाया है, उससे तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्होंने उसे रूह से महसूस करके गाया है। मगर मुझे विश्वास है कि इस गीत को सुनने के बाद आप भी आत्मविभोर हो उठेंगे। ये गीत फिल्म चित्रलेखा से है, जिसे लिखा है साहिल लुधियानवी ने और संगीत दिया है रोशन ने, जिसे आज लेकर आ रही हैं बहुत ही सुरीली और बेहद उम्दा गायिका जूही सिन्हा।

बरसात में भीगती हुई नायिका और शायर दूर से उसे निहारता हुआ, क्या ये भूलने की बात है? जिस तरह शायर ने उस माहौल का व्याख्यान किया है और जिस बखूबी से मोहम्मद रफ़ी ने उसे गाया है, लगता है जैसे सब कुछ आंखों के सामने एक चलचित्र की तरह घूम रहा हो। यह होता है रूहानी संगीत का असर। पेश करने जा रहे हैं आपके सामने संजय गुप्ता, जम्मू से।

0: इसी खूबसूरत गीत के साथ
1: बने रहिए हमारे साथ।
2: जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। जयपुर रेडियो,
3: उफ ये सर दर्द, ओह मेरी कमर, और ये बंद नाक और जुखाम, कौन दिलाएगा इन सबसे राहत?
4: अरे इन सबसे राहत दिलाएगा JMD का बामवेदा, जिसके आयुर्वेदिक गुण सर दर्द, बदन दर्द और सर्दी को दूर भगाएं।
5: JMD, द वंडर ऑफ आयुर्वेदा।
6: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले, हल्ले हल्ले दिदिन तिनक दिन, दिदिन तिनक दिन, अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त, और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो।

डाइसेप्ट हर्बल शैम्पू एंड कंडीशनर, काले अंगूर के रस, शहद, आंवला, नीम, तुलसी और शिकाकाई के गुणों से भरपूर, बालों को मजबूत और चमकदार बनाए, आपके बालों को झड़ने से रोके, बाल बने मुलायम, रेशम से लहराए।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कर लो बात हाशी और योगी के साथ।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं कि व्यास जी नहीं होते तो जयपुर रेडियो नहीं होता, और जयपुर रेडियो नहीं होता तो हमारा शो करो बात हाशी और योगी के साथ भी नहीं होता। और अगर हमारा शो नहीं होता तो मैं भी नहीं होती। लेकिन इन सब बातों में एक बात बड़ा ही कॉमन है और वो है कि आज इस शो की खास होस्ट और क्रिएटिव एंड एक्टिव जो हमारी होस्ट भी है, क्रिएटिव डायरेक्टर भी है, एज वेल

0: शो की जान भी है और वो है हमारी योगी जिसका आज जन्मदिन है। और मुझे बेहद खुशी हो रही है व्यास जी, आज आप आए हैं हमारे इस शो में चार चांद लगाने के लिए।
1: किस किस के नाम बताऊं, किस किस की बात सुनाऊं, आपकी आवाज आपकी पहचान, कि ये वो मंच है जिसमें बात भी है, आपकी आवाज भी है, आपके गीत भी है। और आज बहुत खास दिन है क्योंकि आज जयपुर रेडियो की हमारी प्यारी सी बहुत ही इंटेलिजेंट बहुत शार्प योगी का जन्मदिन है।
0: जी हाँ व्यास जी, बिल्कुल सही कहा आपने, ये शो स्पेशल डेडिकेशन है हमारी प्यारी योगी के लिए। हैप्पी बर्थडे योगी, हमेशा खुश रहो और जिंदगी भर मेरी पार्टनर इन क्राइम बनी रहो।
1: तो यही कहूंगा, हैप्पी बर्थडे टू यू योगी, बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी शुभकामनाएं जयपुर रेडियो के इस मंच पर आपको सभी ने प्रेषित की है, भेजी है, मेरे पास आई है, हाशी के पास आई है और आपके पास भी पहुंची है। उन सब ढेरों शुभकामनाओं का ये पूरा का पूरा आवाज का बंडल मैं आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से सेंड कर रहा हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल व्यास जी, आपकी ब्लेसिंग्स हमारे लिए एक गुरु के आशीर्वाद से कम नहीं है और ये हमारा सौभाग्य है कि आज आपने हमारे शो का आगाज किया है। और जब आगाज इतना सुंदर हो तो अंजाम की क्या परवाह है ना।
1: उम्मीद है आप खुश होंगी इसे सुनकर, इसे जानकर, इसे देखकर। और हाँ, आज के प्रोग्राम में और क्या खास है, क्योंकि इससे बड़ी खास बात तो हो भी नहीं सकती।
0: जी व्यास जी बिल्कुल, बताइए क्या सीक्रेट आप बताना चाहते हैं हमारे जयपुर रेडियो डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के श्रोतागणों को आज के इस खास शो करो पात हाशी और योगी के साथ, योगी के बर्थडे बैश के सेलिब्रेशन के एपिसोड में।
1: लेकिन एक बात और, एक रहस्य, एक सीक्रेट मैं आज और ओपन करना चाहूंगा।
0: जी, और वो क्या है व्यास जी?
1: और वो ये कि AI के टूल्स को, उसके प्रयोग को, उसके एक्सपेरिमेंट को योगी लेके आई है जयपुर रेडियो के इस मंच पर। तो मैं जब भी AI की साकार रूप से स्वरूप तय कल्पना करता हूं तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि AI जो है वो बिल्कुल योगी जैसी ही होगी। मेरी बात से आप जरूर सहमत होंगे डॉक्टर हाशी, क्या कहती हैं?
0: जी जी व्यास जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर ये AI साक्षात होगी ना तो वो बिल्कुल हमारे योगी के जैसे ही होगी, बिल्कुल नटखट, चुलबुली और प्यारी सी। यस,
1: लेकिन आज ये AI नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज, एक ऐसा स्वरूप, एक ऐसी एंकर जो चुलबुली है, बहुत प्यारी है और जब रेडियो की दुलारी है, उसका जन्मदिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एक बार फिर जयपुर रेडियो की ओर से, हम सब श्रोताओं की ओर से और मेरी ओर से CA योगी को कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। और इसी के साथ डॉक्टर हाशी और हम मिलके सुनते हैं और सुनाते हैं और करते हैं बात, कर लो बात इस गीत के साथ।
0: यस दोस्तों, आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना हमारी योगी के लिए। लेट्स रॉक एंड द पार्टी बिगिंस।

0: वेलकम बैक दोस्तों, नमस्कार, सलाम और आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं करोपात हाशी और योगी के साथ आपके इस फेवरेट सेगमेंट में बॉलीवुड गॉसिप कॉर्नर।
1: बॉलीवुड गॉसिप कॉर्नर इज द टॉक ऑफ द नाइट।
2: यस, और आज का थीम है बर्थडे धमाका स्पेशल, क्योंकि बॉलीवुड में बर्थडे का अपना एक अलग ही स्वाद है।
0: वैसे दोस्तों, इतनी देर से तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि आज हम योगी का बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना? इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस भी हैं और बड़ा मजा आ रहा है मुझे आज का ये स्पेशल शो उसके लिए होस्ट करते हुए। अच्छा, आज के बॉलीवुड बर्थडे के बीच में ये खास बर्थडे जो हमारी प्यारी योगी का है। जी हाँ, योगी की बर्थडे के बिना कैसे कंप्लीट हो सकता है हमारा बर्थडे स्पेशल गॉसिप कॉर्नर। तो दोस्तों, आज डबल सेलिब्रेशन है, बॉलीवुड का गॉसिप और योगी की बर्थडे बैश।
2: अरे अरे हर्षी, ये क्या कर रही हो लाइव रेडियो पे? सच में दोस्तों, इतना प्यार मिल रहा है आज, मुझे लगा मैं बस दूसरों के बर्थडे से गॉसिप करूंगी, पर यहाँ तो अपना बर्थडे भी सेलिब्रेशन का पार्ट बन गया। मैं दिल से सभी लिसनर्स का, अपनी टीम का और मेरी खास को-होस्ट हाशी का शुक्रिया अदा करती हूँ इतना प्यारा सरप्राइज देने के लिए और इस पूरे एपिसोड को इतना स्पेशल बनाने के लिए। मुझे महसूस हो रहा है जैसे मैं बॉलीवुड की खुद कोई बर्थडे गर्ल हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सबका प्यार ही मेरी सबसे बड़ी गिफ्ट है।
0: योगी, लेकिन

0: काशी सीक्रेट गेस्ट, अब तो क्यूरियोसिटी डबल हो गई।
1: वैसे सुना है कैटरीना ने विकी को एक लिमिटेड एडिशन गिटार गिफ्ट किया। रोमांटिक वाइब्स प्योर हाई लेवल पर है ना?
2: हाय, गिटार और प्यार दोनों एक साथ। और गेस करो, अनन्या पांडे के बर्थडे बैश की भी हेडलाइंस बनी थी। थीम थी नियॉन ग्लो पार्टी, सब फ्रेंड्स ने नियॉन आउटफिट्स पहने थे, पूरा इंस्टाग्राम जैसे चमक रहा था।
0: और हाशी, मसालेदार बात ये है, पार्टी में एक सरप्राइज डांस फेस ऑफ भी हुआ था, अनन्या वर्सेस जानवी कपूर। और मुझे सोर्सेस ने बताया है कि जानवी स्टोल द शो विथ हर क्रेजी मूव्स।
2: फुल बॉलीवुड डांस बैटल। योगी, बॉलीवुड बर्थडेज विदाउट लिटिल ड्रामा तो होता ही नहीं। सुना है एक फेमस एक्स कपल भी एक्सीडेंटली मिल गए पार्टी में और थोड़ी ऑकवर्ड मोमेंट भी कैप्चर हो गई।
0: और छोटी सी ब्रेकिंग गॉसिप भी, एक फेमस एक्स कपल का ऑकवर्ड एनकाउंटर हुआ अनन्या की पार्टी में। कौन, ये हम बताएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
2: योगी तुम कहीं मत जाओ, पार्टी तो अभी बाकी है, सिर्फ और सिर्फ करो बात हाशी और योगी के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं इसके अगले सेगमेंट में, लेकिन इस धमाकेदार गाने के बाद। ये समझ लीजिए ये मेरा डेडिकेशन है हमारी प्यारी योगी के लिए। हाय मेरी परम परम परम परम परम सुंदरी। चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: दोस्तों अब वक्त हो चला है हमारे स्पेशल सेगमेंट स्टार गेस्ट सेगमेंट का। वैसे इस सेगमेंट में हर हफ्ते हमारे शो में एक स्पेशल मेहमान आते हैं, लेकिन आज जबकि हम योगी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मेरे साथ मैंने इनवाइट किया है दो स्पेशल गेस्ट को। सबसे पहली मेहमान हमारे शो की फर्स्ट टाइम स्टार गेस्ट मिसेस रीना नाम्बियार ऑल द वे फ्रॉम मुंबई। वो हमारे GMF ऑफिशियल की को फाउंडर है, प्लस कारोबार हाशी और योगी के साथ सिर्फ और सिर्फ जयपुर रेडियो में हमारे इस शो की क्रिएटिव डिजाइनर हेड भी है। अच्छा रीन्स, अब मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको इस शो में फिर से आकर कैसा लग रहा है एंड व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट अवर व्हाट यू कॉल तारा, है ना योगी, बताइए प्लीज।
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हाशी, जयपुर रेडियो पर वापस आकर दिल को बहुत खुशी हो रही है। आप सबका प्यार, अपनापन और इस प्लेटफॉर्म की पॉजिटिव एनर्जी, सब कुछ मुझे बहुत प्यारा लगता है। ऐसा लगता

0: है जैसे अपने लोगों के बीच वापस लौट आई हूँ। अब योगिता के बारे में क्या कहें? योगिता चुलबुली नटखट सी जान, गुस्से में आए तो हिल जाए आसमान, पर प्यारी इतनी सब दिल हार जाए, मुस्कान उसकी सब पे छा जाए।
1: मुस्कान इसकी जो सब पे छा जाए, क्या बात है रीन्स। व्हाट अ वे टू एक्सप्लेन द पर्सनालिटी ऑफ योगी। अच्छा, और कौन सी बात आपको योगी की पसंद आती है, ये बताइए।
0: योगिता विदाउट ड्रामा इज लाइक चाय विदाउट मसाला, इम्पॉसिबल। फिर इतनी स्वीट बन जाती है कि हम उसकी शिकायत भी नहीं कर सकते।
1: अच्छा, अब अच्छी बात तो आपने बता दी। अब उसकी कोई चीज जो आपको पसंद नहीं आती है, या नॉट एग्जैक्टली पसंद नहीं आती, या यू वांट हर टू चेंज, और यू वांट हर टू मॉडिफाई दैट थिंग, मतलब कोई भी चीज जो वो इम्प्रूव या इम्प्रोवाइज कर सकती है, इसके बारे में कुछ है उसकी कोई क्वालिटी जो आप बता सकती हैं।
0: हाशी, योगिता ब्रिंग्स लाइट इन टू एवरी रूम दैट शी वॉक्स इन टू। आई एडमायर हर काम स्ट्रेंथ, हर एवर स्माइलिंग प्रेजेंस एंड द वे शी लिव्स अदर्स। शी इज अ ब्यूटिफुल ब्लेंड ऑफ ग्रेस एंड वार्म्थ दैट मेक्स हर ट्रूली स्पेशल।
1: अच्छा रीन्स, अब अगला सवाल। योगिता के लिए आप कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहती हैं? मतलब उसका बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहती हैं?
0: डॉक्टर हाशी, अगर मुझे कोई गाना डेडिकेट करना हो योगिता के लिए, स्पेशली ऑन हर बर्थडे, तो इट वुड बी

0: Happy birthday, Yogita. God bless you.
1: Last but not the least, Rains, हमारे जयपुर रेडियो के श्रोताओं के लिए कोई मैसेज एज वेल एज हमारे बर्थडे गर्ल के लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें तो प्लीज प्लीज दीजिए।
0: जयपुर रेडियो के सभी सुनने वालों को बहुत प्यार। आज एक स्पेशल दिन है और मैं बहुत खुशी से आप सबके साथ हूँ। एक ह्यूज शाउट आउट अपने ड्रामा क्वीन योगिता को। हैप्पी बर्थडे। तुम्हारे बिना तो जिंदगी में मजा ही नहीं है। तुम हो तो हर दिन एक ब्लॉकबस्टर बन जाए। तुम्हारी एनर्जी और मस्ती के लिए थैंक्स। विश यू अ ईयर फुल ऑफ फन एंड जॉय। हैप्पी बर्थडे योगिता।
1: वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। चलिए दोस्तों, इतने प्यारे मैसेज के बाद हम सुनते हैं ये प्यारा गाना जो रीन्स हमारी योगी के लिए डेडिकेट करना चाहती है।

0: वेलकम बैक दोस्तों, और अब हमारे स्टार गेस्ट सेगमेंट के सेकंड स्टार गेस्ट इस स्पेशल शो में, जिसका नाम है करो बात हाशी और योगी के साथ ऑन बर्थडे स्पेशल। जी हाँ, हम योगी का बर्थडे मना रहे हैं, एंड हु बेटर देन आवर नेक्स्ट गेस्ट, जो यू कैन से योगी के बहुत करीबी दोस्त हैं, एंड इट्स माय ऑनर एंड प्लेजर टू वेलकम हिम ऑन आवर शो। तो तालियों के साथ वेलकम कीजिए डॉक्टर मनीष कल्ला का। वेलकम डॉक्टर।
1: Well, thank you very much for inviting me on this extremely special show for Yogi and for her birthday. And I cannot be more proud than this particular moment. So thank you very much for inviting me on this particular show. Thanks a lot.
0: अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप बताइए कि आपको हमारे इस शो में आकर कैसा लग रहा है, एंड व्हाट बेटर देन अ स्पेशल शो ऑन योगिता ऑन हर बर्थडे, हाउ आर यू फीलिंग, और आज आप आपकी आपके ख्यालात क्या, आपके मन में क्या ख्याल आ रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए।
1: Well, as per my knowledge and experience, a special person always deserves a special moment, and so is Yogi. And if today we are celebrating her birthday as a special gesture to her, I don't think so anything can beat it up. Yes, it's a special moment for a special person, for sure. And I'm feeling amazingly proud to be a part of it.
0: I know, doctor, that you are very, very happy to be on our show. आप योगिता को विश कैसे करेंगे ये बताइए।
1: What I've experienced is that she is a wish and a boon to many. So how can I wish a wish? But still, let me try. Happiest birthday girl, stay blessed, keep smiling, keep laughing, and be the bubbliest person I know forever and always. Happy birthday.
0: अरे डॉक्टर साहब, ऐसे नहीं, हमको कुछ गाकर सुनाइए। आप योगिता के लिए क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं वो बताइए।
1: जो खुद एक विश हो सबके लिए, उसको क्या ही विश दे पाएंगे। But then still, let me have that contemporary song, जो कि सालों साल से गाते आए हैं।

0: व्हाट अ ब्यूटिफुल सॉन्ग डॉक्टर साहब, बहुत ही प्यारा गाना है। अच्छा अब डॉक्टर मनीष, आप मुझे ये बताइए कि योगिता के साथ आपकी सबसे पहली मुलाकात, या हाउ डिड यू बोथ नो ईच अदर, कैसे आप दोनों मिले या कैसे आप दोनों में फ्रेंडशिप हुई, ये अगर आप बताना चाहते हैं।
1: Well, it's an interesting story during those Bhopal Radio days. So, in Bhopal Radio days, people, they used to have their partners. So, and we used to have a program on a theme, based on a theme. So, that's where me and she, we met. So, we had our first conversation and it was pretty formal. So, from there, it all started.
0: अब देखते हैं आप योगिता को कितना जानते हैं। अच्छा, मेरे इस सवाल का जवाब जस्ट अ सिंगल वर्ड में देना है आपको। योगी'स फेवरेट कलर
2: ब्लैक।
0: योर नेक्स्ट क्वेश्चन, हर फेवरेट स्ट्रीट फूड
1: एट एनी गिवन डे इट हैज टू बी जस्ट पानी पूरी।
0: ओके, अब अगला सवाल, हर फेवरेट पॉप सिंगर।
1: Well, she's not that jazzy, but she do like the composition of Arijit Singh and Rahman Malik.
0: As a friend, how do you rate her from 1 to 10?
1: 11.
0: Yogi ki kaun si baat sabse achhi hai? Sabse achhi.
1: To begin with, her laughter and the way she takes care of everyone and the kind of extra effort she always makes in order to keep the friends and the relationships intact. It is something, a rare commodity which is not found with everyone, and by all means, she is blessed with it.
0: Achha, uska favorite Bollywood actor kaun sa hai, if you know?
1: Shahid Kapoor.
0: Kya baat hai, kya baat hai. मजा आया, आई थिंक आपको भी बड़ा मजा आया ये छोटा सा गेम खेलकर जिसको हम कहते हैं रैपिड फायर राउंड। जी हाँ, अब डॉक्टर साहब, आई होप यू एंजॉयड बीइंग ऑन दिस शो ऑन करो बात हाशी और योगी के साथ, आपकी आवाज आपकी पहचान। हैप्पी बर्थडे टू योगी स्पेशल। अच्छा अब डॉक्टर साहब, आप योगी के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं?
1: Well, she is full of energy and positivity, so my only message to her is to be bubblicious, be strong, because the world out there is too cunning. But yes, I know, you are strong, and you'll rock in any ways of life, wherever you go, you're definitely going to conquer all the atrocities and audacities, and you'll overcome all the challenges and to be on the top of it. And I would yet again like to reiterate and thank the listeners and the fans of Jaipur Radio. And I'm proud to be on this particular program and on this special occasion to wish my bestie the best birthday ever. So thank you, Jaipur Radio, and keep listening to Karo Baat Hashi and Yogi Ke Saath. And once again, happy birthday, CC.
0: That was very, very sweet of you, Dr. Sam. I hope you enjoyed our show as much as I enjoyed being with you. फिर एक बार मैं आपको बुलाऊंगी हमारे इस मंच पर। आज के लिए बस इतना ही। But yes, your wishes, your blessings are absolutely important. और मुझे यकीन है कि योगी को आज हमारे दोनों स्टार गेस्ट से मिलकर और सुनकर बड़ा ही अच्छा लगा होगा। वंस अगेन, मैनी मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे योगी, एंजॉय योर बर्थडे एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं करो बात हाशी और योगी के साथ। और अब हम लेकर आए हैं एक ऐसा सेगमेंट जो दिल को ले जाता है सीधा पिछले जमाने में।
1: जी हाँ, वेलकम टू यू ऑल्सो योगी। अच्छा, ये हमारा फेवरेट सेगमेंट है, नॉस्टैल्जिया सेगमेंट, जहाँ यादें ताजा होती हैं और दिल खुश हो जाता है उन गीतों को सुनकर जो हमारे दिनों का साउंड ट्रैक हुआ करते थे।
0: और आज का नॉस्टैल्जिया पिक है एक ऐसा गाना जो सिर्फ एक सॉन्ग नहीं, एक पूरा इमोशन था। कॉलेज की कैंटीन से लेकर रोड ट्रिप्स तक हर जगह बजता था।
1: जी हाँ दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं यूफोरिया का आइकॉनिक ट्रैक फिर धूम।
0: वो धूम, वो मस्ती, वो केयरफ्री वाइब, ये गाना सुनते ही ऐसा लगता है जैसे फिर से कॉलेज का टाइम आ गया हो। यूनिफॉर्म्स, बंक क्लासेस और दोस्तों के साथ वो बिना वजह की हंसी।
1: बिल्कुल योगी, और सबसे खास बात ये है कि फिर धूम के जो कंपोजर एंड सिंगर है पलाश सेन, वो आपके भी फेवरेट है, है ना? तो एक तरह से ये पूरा शो आपको डेडिकेटेड है, आपके बर्थडे बैश को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो क्यों ना हम नॉस्टैल्जिया में भी पलाश सेन के इस सॉन्ग को सेलिब्रेट करें। फिर धूम ने हमें सिखाया था कि चाहे कुछ भी हो लाइफ में, फिर से धूम मचानी चाहिए, फिर से जीना है।
0: तो चलिए दोस्तों, आंखों को बंद कीजिए, मुस्कान लीजिए और ले चलिए खुद को एक और दुनिया में, जहां था सिर्फ धूम, दोस्ती और ड्रीम्स।
1: Yes, here we go. फिर धूम by Euphoria, सिर्फ और सिर्फ करो बात हाशी और योगी के साथ, जिसमें हम मना रहे हैं बर्थडे बैश ऑफ माई डियर फ्रेंड योगी।
0: कैसे भूलेगी मेरा नाम?
1: Didn't I?

0: भगवान बुरी नजर से बचाए आपको, चांद सितारों से सजाए आपको, गम क्या होता है ये आप भूल ही जाओ, भगवान जिंदगी में इतना हंसाए आपको। हैप्पी बर्थडे योगी। जी हाँ दोस्तों, अब हम आ गए हैं हमारे आखिरी सेगमेंट की ओर, जो है डेडिकेशन वाला सेगमेंट। और दोस्तों आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी को होस्ट योगी के बर्थडे पैश पे उनके लिए उनके दोस्तों ने और हमारे सभी सुनने वालों ने, जयपुर रेडियो के खास श्रोतागण, उन्होंने भी इतने सारे मैसेजेस एंड डेडिकेशंस भेजे हैं। जी हाँ, तो क्यों ना हम वो सारे डेडिकेशंस सुनते हैं एक के बाद एक, है ना योगी? चलिए सुनते हैं सारे डेडिकेशन। सबसे पहले मनोज जी, देखते हैं मनोज जी योगी के बर्थडे पर क्या कहना चाहते हैं।
1: अच्छा जी,
2: योगिता जी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। मैं कामना करता हूं कि आपका ये दिन आपके लिए खुशियों और हंसी से भरा रहे, आपका दिन उतना ही शानदार हो जितना कि आप हैं, और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां, सफलताएं और प्यार हो। हैप्पी बर्थडे। योगिता जी, मैं आपकी कुंडली के बारे में कुछ अच्छी जानकारी देना चाहता हूँ। आपकी कुंडली बहुत उत्तम कुंडली है, आपकी स्मरण शक्ति बहुत उत्तम है, आप आवश्यकता से अधिक उदार हैं, और ये उदारता आपके काम में भी झलकती है, आपके पहनावे में, आपके निवास स्थान में, आप व्यक्तिगत रूप से आकर्षक भी हैं, शालीन हैं और सुलझे हुए हैं, आप बड़े दिल वाली हैं और खुले दिमाग की भी हैं, आप विपरीत परिस्थितियों में भी विचारवान रहती है, आप जन्म से ही आपके अंदर एक लीडरशिप के गुण है, और आप दिखावा पसंद नहीं करती, आपका दृष्टिकोण व्यापक है और छोटी छोटी बातों में आप परवाह नहीं करते, आप एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं और ऊंचे लक्ष्य रखती हैं, आपका एम हमेशा ऊंचा रहता है, और अगर आप लक्ष्य से दूर रह जाते हैं तो आप उसके लिए संघर्षशील भी रहते हैं। भगवान आपको सफलता दे, आपके जीवन को सुखमय बनाए, सफल बनाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ।
1: थैंक यू सो मच मनोज जी, आपकी बातों में दिन बना दिया मेरा। थैंक यू सो मच।
3: हैप्पी बर्थडे योगिता, विश यू ऑल द बेस्ट।
1: शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
4: हेलो, हाय हाय हाय, मैं तुम्हारा से तुम्हारा अनिरुद्ध, लेकिन योगिता तुम्हारे लिए अनी, और तुम हो मेरी योगी और मैं हूँ तुम्हारा अनी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर योगिता, नो सॉरी योगी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत खुशियाँ तुम्हें मिले, तुम्हारे सारे अरमान पूरे हों, एंड यू आर वेरी स्पेशल पर्सन, हमेशा ऐसे खास रहना, हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहना, ठीक है? हैव अ ग्रेट डे टुडे। एंड हाँ, मैं खास हाशी को थैंक यू बोलना चाहूंगा, जिसकी वजह से उसने मुझे याद दिलाया कि यू नो तुम्हारा बर्थडे है, शी इज अ वेरी स्पेशल पर्सन, उसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और तुम भी कहना कि उसने ये सरप्राइज देने का ख्याल उसी का था। और सुनी, क्योंकि आरजे हूँ तो मैं सब कुछ अपने गानों के जरिए ही बोलता हूँ, तो तुम्हारे लिए ये मेरा स्पेशल हैप्पी बर्थडे वाला गाना। अब ये बस सोचो मैं गाना गाऊंगा बार बार ये दिन आए, नहीं नहीं भैया, वो हैप्पी बर्थडे वाला गाना मैं नहीं गाता हूँ भैया, हम रोमानी अंदाज वाले बंदे हैं, तो रोमानियत वाला ही गाना सुनाएंगे आपके लिए।
5: हम तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते योगिता उर्फ योगी तुम्हारे बिना।
4: हैप्पी बर्थडे।

0: you made my day. Thank you.
1: Wow, that's so sweet of you, Annie. Actually, हमारे आरजे अनिरुद्ध इतने प्यारे हैं, सबके दिल के इतने करीब है कि जब वो इतनी प्यारी प्यारी बातें हमारे लिए बोलते हैं ना, तो बड़ा मजा आता है. थैंक्स अ लॉट एनी, थैंक्स अ लॉट. अब चलिए आगे सुनते हैं जीएमएफ के कुछ खास मेंबर्स योगी के लिए क्या कहना चाहते हैं.

0: Happy birthday, Yogi. Keep singing. Stay beautiful. Wish you a very happy birthday.
1: Happy birthday, Yogi. This is Deepti from GMF Group. आज तुम्हारा जन्मदिन है. ईश्वर से मैं यही कामना करती हूँ कि तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहें और तुम्हारे सारे सपने हमेशा सच हों. तुम ऊंचाइयों तक पहुँचो. अपने जीवन में जो भी करना चाहती हो उसे पाओ और खूब खुश रहो. थैंक यू.
2: हाय योगी, हैप्पी बर्थडे. दिस इज इंदु झा हियर विशिंग यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे. तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000. लव यू योगी.

0: हेलो योगिता, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय योर डे, गाते रहो, मुस्कुराते रहो, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: हैप्पी बर्थडे योगी, दिस इज कोमल हियर, विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे म्यूजिकल।
2: हे योगी, दिस इज मनी हियर, विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं।
3: शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
4: हैप्पी बर्थडे योगी, दिस इज मनीष हियर, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, स्टे ब्लेस्ड।
5: योगिता जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां, हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, गाती रहें, गुनगुनाती रहें, मुस्कुराती रहें। मैनी मैनी मोर।
6: हैप्पी बर्थडे योगी जी, This is Satin here, wishing you very happy birthday. Many many happy returns of the day. God bless you.
7: Tum jiyo hazaro saal saal ke din ho 50,000.
8: जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको योगिता जी, हमेशा खुश रहिए, फूलों की तरह मुस्कुराती रहिए। मैं शमीम अख्तर अमरोहा से।
9: हैप्पी बर्थडे डियर योगी, विशिंग यू अ वंडरफुल ईयर अहेड।
10: Wishing you a very happy birthday that sparkles with joy, glows with success and radiates with immense happiness. Have a blissful birthday celebration. Yogi ji, God bless you. Hamesha haste gaate muskurate rahiye.
11: Aap sab log kitne acche ho.
12: Kitne pyare pyare messages diye nahi GMF ऑफिशियल और GMF के सारे मेंबर्स ने आपके लिए योगी। चलिए सुनते हैं उनकी तरफ से ये प्यारा सा गाना।

0: कविता मेरी छोटी सी प्यारी सी बिटिया रानी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिंदगी में बहुत सारी तरक्की करो, बहुत आगे बढ़ो, बहुत नाम कमाओ और अपना और अपने घर का और अपने परिवार का सबका नाम रोशन करो। तुम्हारे ऊपर सबको बहुत विश्वास है और वी ऑल लव यू। ठीक है बेटा, अपना जन्मदिन खुशी खुशी और मस्ती से मनाओ जैसी की तुम्हारी आदत है। ओके, many many happy returns of the day once again.
1: Yogi, wishing you a very happy birthday. Enjoy your day. Stay blessed always.
2: Thank you so much from bottom of my heart.
3: Yogi Vardhan Sahaja, khub khub khub khub shubhechha. Tujhe sagle sapna purna ho, it amcha krum prabhu charni prarthana. Tujhya pudhil aayushyasathi yo bhavi vatchale sathi amcha krum khub khub shubhechha. Tujhya sarva manokamna purna ho. Wish you a very happy, happy birthday.
4: Hey Yogi ji, happy birthday. May you have many, many more and may you live long, healthy and in abundance. Stay blessed. Pradeep here.
2: Shukriya, shukriya, shukriya.
5: Tu mera dil, tu meri jaan, oh, I love you Yogi.
6: So, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे प्यारे बच्चे, और जिंदगी में हमेशा तुम सही के साथ रहती हो, वैसे ही रहना। एंड थैंक्स फॉर ऑल योर लव सपोर्ट एंड आई ऑलवेज विश यू बेस्ट ऑफ हेल्थ, ग्रेट सक्सेस इन योर करियर एंड एज ऑलवेज लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स ऑल द वे फ्रॉम योर स्वील डैड। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, लव यू।
2: वाह, क्या बात है।

0: हेलो योगिता, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। एंड हमारी सिर्फ एक ही बार बात हुई है, बट मुझे लगा नहीं कि हमने पहली बार बात की है। और तुम्हारे साथ जो शो रहा मेरा, वो बहुत अमेजिंग था। मैं इसे हमेशा याद रखूंगी और हम हमेशा इसी तरह से बात करते रहेंगे और जुड़े रहेंगे। और आप इसी तरह से बहुत आगे बढ़े और खूब सारे शो करें। माई बेस्ट विशेस टू यू। एंड यू मेड माई डे, थैंक यू।
1: हे योगी, विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे। मे गॉड ब्लेस यू। आपकी सारी मनोकामना जल्दी ही पूर्ण हो जाए और एंजॉय द पार्टी। थैंक यू।
0: थैंक यू सो मच चिराग जी।
2: हाय योगी जी, इट्स योर बर्थडे टुडे। आई विश यू अ वेरी वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।
0: दैट्स सो स्वीट, थैंक यू सो मच।
3: हाय योगी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप दिस ईयर अहेड इज द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ।
0: शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
3: Wasn't that so sweet? इतने सारे messages and dedications सुनने के बाद मुझे भी लगने लगा है कि योगी आप सबके दिल के कितने करीब हो। तो क्या कहना चाहते हैं आप योगी? Let's hear from you.
0: आज जो खुशी मेरे दिल में है वो लफ्जों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। मेरे बर्थडे को इतना ब्यूटीफुल, मेमोरेबल और दिल से स्पेशल बनाने के लिए मेरे सभी फैंस, दोस्तों, जयपुर रेडियो की द होल टीम, मेरे रेडियो शो के हर एक साथी, मेरी सोलफुल को-होस्ट हाशी और मेरे हर अपने से मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आप सबको एक प्यारा सा सलाम और दिल से शुक्रिया। जब इतना प्यार, इतनी दुआएं और इतना साथ मिलता है, सब समझ आता है कि असली दौलत तो रिश्तों में ही छुपी होती है। हर एक विश, हर एक सरप्राइज, हर एक स्माइल, इन सब ने मेरे दिन को इतना रोशन कर दिया है कि मैं क्या ही बताऊं। मुझे महसूस हुआ कि मैं कितनी लकी हूँ। आप जैसे लोग, इतने सारे प्यार करने वाले लोगों को अपनी जिंदगी में पाकर ऐसे ही प्यार और साथ बना रहे, मैं हमेशा आपके इस प्यार और ब्लेसिंग्स के लिए शुक्रगुजार रहूंगी। और आप सब के लिए एक छोटी सी शायरी। जिंदगी के सफर में कई लोग मिल जाते हैं, पर हर रिश्ता दिल से नहीं निभाते हैं। जो छू जाए रूह को बस एक मुस्कान से, वो आप जैसे अपने ही तो असली खजाने होते हैं। दिल से थैंक यू सबको। आप हो तो मैं हूँ, विद ऑल माई लव, लाइट एंड एंडलेस ग्रेटिट्यूड। थैंक यू
3: दोस्तों। अब इसी के साथ हमारे शो का दी एंड होने आया है, लेकिन मैं आप सबसे ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि आज का जो बर्थडे स्पेशल था वो एक खास इंसान के लिए था, जो करो बात हाशी और योगी के साथ की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्तिमत्व है। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, वेरी वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू योगी। एंड दोस्तों, आप सभी हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं या किसी को कुछ डेडिकेशन देना चाहते हैं या आप अपने शो का प्रमोशन करना चाहते हैं, अपना प्रमोशन करना चाहते हैं, तो इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और हमारे पेज करो बात हाशी और योगी के साथ सिर्फ और सिर्फ जयपुर रेडियो को फॉलो कीजिए। और जी हाँ, जयपुर रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि जयपुर रेडियो है तो हम सब हैं। तो आइए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक प्यारा सा गाना सुनते हैं हमारी योगी के लिए। एंड वंस अगेन, मैनी मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड शब खैर।
2: वेरी वेरी वेरी स्वीट गुड नाइट।

डाइसेप्ट हर्बल शैम्पू एंड कंडीशनर, काले अंगूर के रस, शहद, आंवला, नीम, तुलसी और शिकाकाई के गुणों से भरपूर, बालों को मजबूत और चमकदार बनाए, आपके बालों को झड़ने से रोके, बाल बने मुलायम, रेशम से लहरा

जी हाँ, महफिल यही है और इसी महफिल के आज के मेहमान हैं पंकज उदास साहब के गाई कुछ गजलों के साथ जगदीश अरोड़ा, गोविंदगढ़ पंजाब से।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान, और ये आवाज है जगदीश अरोड़ा की पंकज उदास साहब की गजलों के साथ एक विनम्र शब्द श्रद्धांजलि। जगदीश अरोड़ा की ओर से और जयपुर रेडियो की ओर से।

जुदा वो हमसे हुए, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया। है चांद का मुंह उतरा उतरा, आरों ने चमकना छोड़ दिया। लेकिन हम कहेंगे कि पंकज उदास साहब की गजलों को सुन के दिल बंद हो वो भी धड़कना शुरू हो जाता है। हमने सुना जगदीश अरोड़ा को अपनी इस गजल में, और यही आवाज

कच्छ उदास साहब की गजलों को अपनी आवाज देकर आप तक पहुंचा रहे हैं जगदीश अरोड़ा इस खूबसूरत प्रोग्राम में, जिसका नाम है जिस दिन से जुदा हो हमसे हुए।

0: पत्थर कहा गया, कभी शीशा कहा गया। दिल जैसी एक चीज को क्या क्या कहा गया। और ये कह रहे हैं, सुना रहे हैं जगदीश अरोड़ा साहब।
1: दीवारों से मिलकर
0: अपनी अगली खूबसूरत गजल।

कितने दिनों के प्यासे होंगे, कितने दिनों के प्यासे होंगे यारो, सोचो तो। शबनम का एक कतरा भी जिनको दरिया लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। अपनी खूबसूरत आवाज में पंकज दा के गजलों को आप तक पहुंचा रहे हैं जगदीश अरोड़ा गोविंदगढ़ पंजाब से। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड प्रोग्राम, जिस दिन से जुदा वो हमसे हुए। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत आवाज में गजल। सुना रहे हैं जगदीश अरोड़ा।

मुझसे मिलना फिर आपका मिलना, मुझसे मिलना फिर आपका मिलना, आप किसको नसीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं आप जिनके करीब होते हैं। और गजल का ये एक मतला, जुल्म सहकर भी जो उफ नहीं करते उनके दिल भी कितने अजीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं। और एक सितारा जो आसमान से भारत की धरती पर चमकने के लिए आया, अपनी आवाज की चमक, अपनी आवाज की सादगी, और ऐसी सादगी जो दिल की गहराई में बैठ जाए, वो देख के हम सबको उसका प्रकाश हमारी रूह तक पहुंचाकर हमारे करीब से कहीं दूर बहुत दूर चला गया। और वो नाम है पंकज उदास साहब का। आपकी गजलों को हमेशा याद किया जाएगा। जगदीश अरोड़ा साहब ने बहुत ही खूबसूरत पेश की आपकी गजलों की पेशगी, उसके लिए बहुत आभार। और बहुत सारे फीडबैक्स हमें मिले हैं इसी प्रोग्राम के लिए, और बहुत सारी गजलें हमें मिल रही हैं पंकज उदास साहब के चाहने वालों की। उन सबको भी हम धीरे धीरे प्रोग्राम्स में शामिल करेंगे। आप लगातार जयपुर रेडियो सुनते रहें, हमारा आपसे विनम्र आग्रह है। और अब वो नाम जिन्होंने जगदीश अरोड़ा साहब की गजलों को सुना है, सराहा है, लाइक किया है,

सरदार भट्ट लोढ़ा जैन, गुजरात वडोदरा से। वंदना गगलानी मुंबई से। प्रशांत गुप्ता, रामावतार छंगानी, राशि बोथरा, सोनल पारिख जूनागढ़ गुजरात से, रेख सिंह भाटी अजमेर राजस्थान से, तनुजा माहेश्वरी मुंबई से, जगदीश पटना बिहार से, लक्ष्मी पुरोहित जयपुर से, माधवी चटर्जी वेस्ट बंगाल से, अमित शर्मा जयपुर से, अनुपमा खुराना दिल्ली से, अनीता दुगर नेपाल से, महेंद्र व्यास बीकानेर से, अखिलेश यादव यूपी से, कनिका वाजपेयी यूके से, शकुंतला देवी बिहार से, अंशुदैया और करण लालवानी। बहुत सारे लाइक्स आए हैं, सबको शामिल करना संभव नहीं है समय अभाव की वजह से। हम आप सब

आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इस खूबसूरत प्रोग्राम को सुना और सराहा, और साथ साथ जगदीश अरोड़ा साहब आपको भी बहुत शुक्रिया कि गजलों का ये कारवां लेके आज इस मंच पर आप उपस्थित हुए। बहुत शुक्रिया। सुनते रहें जब रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान। इस प्रोग्राम जिसका नाम है जिस दिन से जुदा वो हमसे हुए, उससे हम विराम चाहते हैं, विदा चाहते हैं। थोड़ी देर में फिर मिलते हैं।

जी हाँ, महफिल यही है और इसी महफिल के आज के मेहमान हैं पंकज उदास साहब के गाई कुछ गजलों के साथ जगदीश अरोड़ा गोविंदगढ़ पंजाब से।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान, और ये आवाज है जगदीश अरोड़ा की पंकज उदास साहब की गजलों के साथ एक विनम्र शब्द श्रद्धांजलि। जगदीश अरोड़ा की ओर से और जयपुर रेडियो की ओर से।

इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया। हे चांद का मुंह उतरा उतरा तारों ने चमकना छोड़ दिया। लेकिन हम कहेंगे कि पंकज उदास साहब की गजलों को सुन के दिल बंद हो वो भी धड़कना शुरू हो जाता है। हमने सुना जगदीश अरोड़ा को अपनी इस गजल में, और यही आवाज

पंकज उदास साहब की गजलों को अपनी आवाज देकर आप तक पहुंचा रहे हैं जगदीश अरोड़ा इस खूबसूरत प्रोग्राम में, जिसका नाम है जिस दिन से जुदा हो हमसे हुए।

0: पत्थर कहा गया, कभी शीशा कहा गया। दिल जैसी एक चीज को क्या क्या कहा गया। तो ये कह रहे हैं, सुना रहे हैं जगदीश अरोड़ा साहब।
1: दीवारों से मिलकर
0: अपनी अगली खूबसूरत

कितने दिनों के प्यासे होंगे, कितने दिनों के प्यासे होंगे यारो, सोचो तो। शबनम का एक कतरा भी जिनको दरिया लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। अपनी खूबसूरत आवाज में पंकज दाग के गजलों को आप तक पहुंचा रहे हैं जगदीश अरोड़ा गोविंदगढ़ पंजाब से। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड प्रोग्राम, जिस दिन से जुदा वो हमसे हुए। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत आवाज में गजल। सुना रहे हैं जगदीश अरोड़ा।

मुझसे मिलना फिर आपका मिलना, मुझसे मिलना फिर आपका मिलना, आप किसको नसीब होते हैं? वो बड़े खुश नसीब होते हैं आप जिनके करीब होते हैं। और गजल का ये एक मतला, जुल्म सहकर भी जो उफ नहीं करते, उनके दिल भी कितने अजीब होते हैं। आप जिनके करीब होते हैं, और एक सितारा जो आसमान से भारत की धरती पर चमकने के लिए आया, अपनी आवाज की चमक, अपनी आवाज की सादगी, और ऐसी सादगी जो दिल की गहराई में बैठ जाए, वो देख के हम सबको उसका प्रकाश हमारी रूह तक पहुंचाकर हमारे करीब से कहीं दूर बहुत दूर चला गया। और वो नाम है पंकज उदास साहब का। आपकी गजलों को हमेशा याद किया जाएगा। जगदीश अरोड़ा साहब ने बहुत ही खूबसूरत पेश की आपकी गजलों की पेशगी, उसके लिए बहुत आभार। और बहुत सारे फीडबैक्स हमें मिले हैं इसी प्रोग्राम के लिए, और बहुत सारी गजलें हमें मिल रही हैं पंकज उदास साहब के चाहने वालों की। उन सबको भी हम धीरे धीरे प्रोग्राम्स में शामिल करेंगे। आप लगातार जयपुर रेडियो सुनते रहें, हमारा आपसे विनम्र आग्रह है। और अब वो नाम जिन्होंने जगदीश अरोड़ा साहब की गजलों को सुना है, सराहा है, लाइक किया है,

सरदार भट्ट लोढ़ा जैन, गुजरात बड़ौदरा से। वंदना गगलानी मुंबई से। प्रशांत गुप्ता, रामावतार चंगानी, राशि बोथरा, सोनल पारिख जूनागढ़ गुजरात से। रेख सिंह भाटी अजमेर राजस्थान से। तनुजा माहेश्वरी मुंबई से। जगदीश पटना बिहार से। लक्ष्मी पुरोहित जयपुर से। माधवी चटर्जी वेस्ट बंगाल से। अमित शर्मा जयपुर से। अनुपमा खुराना दिल्ली से। अनीता दुगर नेपाल से। महेंद्र व्यास बीकानेर से। अखिलेश यादव यूपी से। कनिका वाजपेयी यूके से। शकुंतला देवी बिहार से। अंशुदैया और करण लालवानी। बहुत सारे लाइक्स आए हैं, सबको शामिल करना संभव नहीं है समय अभाव की वजह से। हम आप सब का आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इस खूबसूरत प्रोग्राम को सुना और सराहा। और साथ साथ जगदीश अरोड़ा साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया कि गजलों का ये कारवां लेके आज इस मंच पर आप उपस्थित हुए। बहुत शुक्रिया। सुनते रहें जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान। इस प्रोग्राम जिसका नाम है जिस दिन से जुदा वो हमसे हुए, उससे हम विराम चाहते हैं, विदा चाहते हैं। थोड़ी देर में फिर मिलते हैं।

जी हाँ, महफिल यही है और इसी महफिल के आज के मेहमान हैं पंकज उदास साहब के गाई कुछ गजलों के साथ जगदीश अरोड़ा गोविंदगढ़ पंजाब से।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान, और ये आवाज है जगदीश अरोड़ा की पंकज उदास साहब की गजलों के साथ एक विनम्र शब्द श्रद्धांजलि। जगदीश अरोड़ा की ओर से और जयपुर रेडियो की ओर से।

से जुदा वो हमसे हुए, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया। है चांद का मुंह उतरा उतरा, तारों ने चमकना छोड़ दिया। लेकिन हम कहेंगे कि पंकज उदास साहब की गजलों को सुन के दिल बंद हो वो भी धड़कना शुरू हो जाता है। हमने सुना जगदीश अरोड़ा को अपनी इस गजल में, और यही आवाज

पंकज उदास साहब की गजलों को अपनी आवाज देकर आप तक पहुंचा रहे हैं जगदीश अरोड़ा इस खूबसूरत प्रोग्राम में, जिसका नाम है जिस दिन से जुदा हो हमसे हुए।

0: पत्थर कहा गया, कभी शीशा कहा गया। दिल जैसी एक चीज को क्या क्या कहा गया। और ये कह रहे हैं, सुना रहे हैं जगदीश अरोड़ा साहब।
1: दीवारों से मिलकर
0: अपनी अगली खूबसूरत गजल

कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाओं में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाओं में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो ना सका। मगर ये हो ना सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

आवाज़ मैं न दूंगा और ये आवाज़ का मंच है, आवाज़ तो देनी पड़ेगी और आपको आना भी होगा क्योंकि हम बुला रहे हैं इस मंच पर। और आज हम आवाज़ दे रहे हैं इस मंच पर दीपाली दास दत्ता को वेस्ट बंगाल से। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आज के कलाकार के रूप में दीपाली दास दत्ता को।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। और आज हमारे संग है, हमारे साथ है इस मंच पर वेस्ट बंगाल बेलदा वेस्ट मेदिनीपुर से दीपाली दास दत्ता। दीपाली को आप जानते हैं, समय समय पर इस मंच पर आती है और अपनी आवाज का हुनर छोड़ के जाती है। आशाताई के देह शरीर के जाने के बाद में बहुत सारे सिंगर्स ने अपने अपने ट्रिब्यूट्स हमें प्रेषित किए हैं। एक एक करके सबका नंबर आ रहा है। इसी क्रम में डी क्रम में आ गई हैं दीपाली। वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है दीपाली का इस मंच पर। और सबसे पहले गुड इवनिंग कहें दीपाली को, उसी के साथ शुरू करते हैं दीपाली की आवाज। आपकी आवाज आपकी पहचान। दीपाली दास दत्ता, बेलदा वेस्ट मेदिनीपुर।

हिज्र जब तुमने दिया है तो मिला किससे करें, दर्द जब तेरी अता है तो गिला किससे करें। बहुत ही खूबसूरत आशताई की ये गज़ल सच में हमारे दिल में बसी हुई है और दीपाली ने आज अपनी आवाज़ का दिया जला ही दिया है। आइए सुनते हैं दीपाली का ये अगला सॉन्ग जिसे आशाताई ने आवाज़ दी थी आज इस मंच पर, दीपाली दास दत्ता। वेस्ट बंगाल

बोलेना बोलेना और आप भी बोलिए ना, क्या कहेंगे दीपाली की आवाज को सुन के। आपकी आवाज, आपकी पहचान का ये मंच, और आज आशाताई को ट्रिब्यूट दे रही हैं दीपाली दास दत्ता। बेलदा वेस्ट मेदिनीपुर से, यानी वेस्ट बंगाल से हमारे संग हमारे साथ अपनी सुरीली आवाज को लेके आशाताई के गीतों को, गजलों को किसने नहीं गाया, और जिसने गाया उसने कुछ ना कुछ तो ज़रूर पाया उनमें। इसीलिए आशा जी को एक वर्सेटाइल सिंगर माना जाता है, कहते हैं, और जो कहते हैं वो सही ही कहते हैं। आइए सुनते हैं दीपाली की आवाज़ में ये अगला सॉन्ग।

तुम्हारे रूप की छाया में बड़ी ठंडी जलन है और मैं हूँ, ये कह रही थी अपने सॉन्ग में दीपाली दास दत्ता। वेस्ट बंगाल से हमारे साथ हैं, आपकी आवाज़ आपकी पहचान, डिजिटल वॉइस वर्ड का जयपुर रेडियो वर्ड सुन रहे हैं आप। आज की कलाकार दीपाली दास दत्ता, आइए सुनते हैं आपका अगला नगमा।

जाता नहीं, वो है प्यार। और जयपुर रेडियो से आपका प्यार बरकरार है क्योंकि हमें मिल रहे हैं आपके बहुत सारे ही फीडबैक्स। बहुत धन्यवाद जो सुन रहे हैं हमारा ये लाइव शो। और हमारे संग है वेस्ट बंगाल से दीपाली दास दत्ता। आपकी आवाज़, आपकी पहचान जयपुर रेडियो का ये मंच कह रहा है और सुन रहा है। आपकी आवाज़, आपकी पहचान, दीपाली अपने अगले गीत में।

कभी कहा ना किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को। और हम तो रोज कहते हैं, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। और रोज नए नए कलाकार, उन सिंगर्स को जो हमारे साथ गाते हैं और हमें हाथ का इशारा करके अगली दुनिया में चले जाते हैं, उनको याद करते हैं, हम भूल नहीं पाते आवाज़ को। आवाज़ का आलम ही यही है। इसलिए जो आज हमारा सिंगर है, हमारे साथ गा रहा है, वो भी एक सिंगर ही है। आशाताई हमें ये सबक दे के गई हैं कि हमें अपनी आवाज़ को सदा ज़िंदा रहना है, ज़िंदा रखना है। और वही काम कर रही हैं दीपाली दास दत्ता, आपकी आवाज़ आपकी पहचान। आइए सुनते हैं चैन से इस गीत को।

भी आपने जीने ना दिया, जहर भी चाह अगर पीना तो पीने ना दिया। और ये जीना और जीने के साथ दिल की लगी और दिल की लगी ने हंसने ना दिया। सच में दिल की लगी ऐसी ही होती है, और वो कैसे लगती है दिल में और कैसे उतरती है और फिर यादों में कैसे बरसती है, ये कह रही हैं अगले गीत में हमारी आज की कलाकार सिंगर दीपाली दास दत्ता। आपकी आवाज, आपकी पहचान। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास रखा है,

इस गीत को, इस गज़ल को जो गुलजार साहब ने लिखी थी, और सच में इसको गाने वाली सो गई, लेकिन इस तरह से अमर कर गई, जिंदा कर गई कि इसके एक एक लफ्ज़ में कितनी कहानियां छुपी हैं वो गाने वाला ही जानता है, सुनने वाला ही जानता है और कहने वाला ही महसूस करता है। बहुत ही खूबसूरत गज़ल है और आशाताई का कोई भी प्रोग्राम हमें अधूरा लगता है जब तक उसमें ये गज़ल ना हो। बहुत बधाई हमारी आज की सुरीली मेहमान दीपाली दास दत्ता को कि आपने अपने प्रोग्राम में ये गज़ल रखी और अच्छी तरह से निभाने का प्रयास किया। आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आपका ये अगला सॉन्ग। आपकी आवाज़, आपकी पहचान, जयपुर रेडियो वर्ल्ड सुन रहे हैं आप।

कोई दिया जले कहीं, दिन टूटता है और रात घटती है, आवाज वही होती है जिसे हम आवाज देते हैं। आपकी आवाज आपकी पहचान का ये मंच, और इसमें हमारी सुरीली मेहमान रही आज दीपाली दास दत्ता, बेलदा वेस्ट मेदिनीपुर वेस्ट बंगाल से। अपनी सुरीली गजलों से गीतों से इस मंच को आवाज की रोशनी से प्रज्वलित किया। दीपाली को बहुत शुभकामनाएं, यूं ही गाती रहें, और जो आवाज इतनी आवाज दे के चली गई उसको तो हम नमन ही कहेंगे। आशाताई को प्रणाम, वंदन और अभिनंदन आपका। यूं ही मिलते रहे, यूं ही गाते रहें, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद दीपाली आपका।

बहुत सारे लोगों ने अपनी फीडबैक दिए हैं। मंदाकिनी शाह वडोदरा गुजरात से, श्याम बिहारी शर्मा वेस्ट बंगाल कोलकाता से, बनवारी जयपाल बीकानेर से, कल्पा बोरा मुंबई महाराष्ट्र से, भुवनेश बोरा जूनागढ़ गुजरात से, माधुरी गुलाटी पटियाला पंजाब से, शुभ्रा भट्टाचार्य आमेर राजस्थान से, दक्षा वोरा जूनागढ़ गुजरात से, मंजू सिंह पंजाबी जयपुर राजस्थान से, अरुणा आचार्य बीकानेर राजस्थान से, नीता ठक्कर छत्तीसगढ़ से, अनीता डूगर नेपाल से और कल्पना अग्रवाल काठमांडू नेपाल से, राजकुमारी लालवानी बड़ोदरा गुजरात से।

डोली श्रीवास्तवा लखनऊ से, प्रीति श्रीवास्तवा लखनऊ से, परमजीत कौर पंजाब से, रतन राठौड़ जयपुर राजस्थान से, निशा पाहवा जयपुर राजस्थान से, राजेश कौल दिल्ली से, अनिता कुमारी जयपुर राजस्थान से, मधु दीपक मोदी और दिनेश कुमार वरागड़े मुंबई से, आप सबका आभार और धन्यवाद। सुनते रहें जयपुर रेडियो, बार बार आपकी आवाज़ आपकी पहचान।

डिजिटल वॉइस बोर्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। और अगला जो प्रोग्राम है वो समर्पित है हमारी जयपुर रेडियो की आरजे योगिता को। जी हाँ, योगिता को हम इस मंच से हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं। और डॉक्टर हाशी ने बहुत मन से इस प्रोग्राम को बनाया है आप सबके लिए, तो हम उस प्रोग्राम को ऑन एयर करते हुए CAAI जयपुर रेडियो की उन्हें हम जयपुर रेडियो की AI कहते हैं, क्योंकि आजकल AI का ज़माना है ना, इसलिए हम योगिता यानी RJ योगी को हम कहते हैं AI। और जब वो प्रोग्राम बनाती हैं तो सच में कमाल ढाती हैं। आप सुनते हैं प्रोग्राम करो बात हाशी और योगी के साथ। तो इस मंच से बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार हमारी प्यारी योगी को। आपकी आवाज़ आपकी पहचान।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो है और आप सुन रहे हैं करो पाठ हाशी और योगी के साथ अलोंग विद हाशी। दोस्तों, आज एक खास व्यक्ति का जन्मदिन है, मेरी पार्टनर इन क्राइम योगी, और इस खास दिवस पर ये एक शो मैं उसके लिए डेडिकेट करना चाहती हूँ विद दिस स्मॉल क्यूट सॉन्ग।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है।
1: वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो है और आप सुन रहे हैं करो पाठ हाशी और योगी के साथ अलोंग विद हाशी। दोस्तों, आज एक खास व्यक्ति का जन्मदिन है, मेरी पार्टनर इन क्राइम योगी, और इस खास दिवस पर ये एक शो मैं उसके लिए डेडिकेट करना चाहती हूँ विद दिस स्मॉल क्यूट सॉन्ग।

0: Happy birthday to you, Gita. Happy birthday to you. Happy birthday, Yogi. God bless you. Stay blessed. Keep singing and keep entertaining all of us.
1: और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कर लो बात हाशी और योगी के साथ।
0: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं कि व्यास जी नहीं होते तो जयपुर रेडियो नहीं होता, और जयपुर रेडियो नहीं होता तो हमारा शो करो बात हाशी और योगी के साथ भी नहीं होता, और अगर हमारा शो नहीं होता तो मैं भी नहीं होती। लेकिन इन सब बातों में एक बात बड़ा ही कॉमन है, और वो है कि आज इस शो की खास होस्ट और क्रिएटिव एंड एक्टिव जो हमारी होस्ट भी है, क्रिएटिव डायरेक्टर भी है, एज वेल एज इस शो की जान भी है, और वो है हमारी योगी, जिसका आज जन्मदिन है। और मुझे बेहद खुशी हो रही है व्यास जी, आज आप आए हैं हमारे इस शो में चार चांद लगाने के लिए।
1: किस किस के नाम बताऊं, किस किस की बात सुनाऊं, आपकी आवाज आपकी पहचान, कि ये वो मंच है जिसमें बात भी है, आपकी आवाज भी है, आपके गीत भी है। और आज मैं बहुत खास दिन है, क्योंकि आज जयपुर रेडियो की हमारी प्यारी सी बहुत ही इंटेलिजेंट बहुत साथ योगी का जन्मदिन है।
0: जी हाँ व्यास जी, बिल्कुल सही कहा आपने, ये शो स्पेशल डेडिकेशन है हमारी प्यारी योगी के लिए। हैप्पी बर्थडे योगी, हमेशा खुश रहो और जिंदगी भर मेरी पार्टनर इन क्राइम बनी रहो।
1: तो यही कहूंगा, हैप्पी बर्थडे टू यू योगी, बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी शुभकामनाएं जयपुर रेडियो के इस मंच पर आपको सभी ने प्रेषित की है, भेजी है, मेरे पास आई है, हाशी के पास आई है और आपके पास भी पहुंची है। उन सब ढेरों शुभकामनाओं का ये पूरा का पूरा आवाज का बंडल मैं आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से सेंड कर रहा हूं।
0: बिल्कुल बिल्कुल व्यास जी, आपकी ब्लेसिंग्स हमारे लिए एक गुरु के आशीर्वाद से कम नहीं है, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज आपने हमारे शो का आगाज किया है। और जब आगाज इतना सुंदर हो तो अंजाम की क्या परवाह है ना।
1: उम्मीद है आप खुश होंगे इसे सुनकर, इसे जानकर, इसे देखकर। और हाँ, आज के प्रोग्राम में और क्या खास है, क्योंकि इससे बड़ी खास बात तो हो भी नहीं सकती।
0: जी व्यास जी बिल्कुल, बताइए क्या सीक्रेट आप बताना चाहते हैं हमारे जयपुर रेडियो डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के श्रोतागणों को, आज के इस खास शो करो बात हाशी और योगी के साथ, योगी के बर्थडे बैश के सेलिब्रेशन के एपिसोड में।
1: लेकिन एक बात और, एक रहस्य, एक सीक्रेट मैं आज और ओपन करना चाहूंगा।
0: जी, और वो क्या है व्यास जी?
1: और वो ये कि AI के टूल्स को, उसके प्रयोग को, उसके एक्सपेरिमेंट को

0: योगी लेके आई है जब रेडियो के इस मंच पर, तो मैं जब भी एआई की साकार रूप से स्वरूपतः कल्पना करता हूं तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि एआई जो है वो बिल्कुल योगी जैसी ही होगी। मेरी बात से आप जरूर सहमत होंगी डॉक्टर हाशी, क्या कहती हैं?
1: जी जी व्यास जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर ये एआई साक्षात होगी ना तो वो बिल्कुल हमारे योगी के जैसे ही होगी, बिल्कुल नटखट, चुलबुली और प्यारी सी। यस,
0: लेकिन आज ये एआई नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज, एक ऐसा स्वरूप, एक ऐसी अंतर जो चुलबुली है, बहुत प्यारी है और जब रेडियो की दुलारी है उसका जन्मदिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एक बार फिर जयपुर रेडियो की ओर से, हम सब श्रोताओं की ओर से और मेरी ओर से सीए योगी को कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। और इसी के साथ डॉक्टर हर्ष जी और हम मिलके सुनते हैं और सुनाते हैं और करते हैं बात, कर लो बात इस गीत के साथ।
1: यस दोस्तों, आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना हमारी योगी के लिए। लेट्स रॉक एंड द पार्टी बिगिन्स।
2: Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

0: वेलकम बैक दोस्तों, नमस्कार, सलाम और आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं करोपात हाशी और योगी के साथ आपके इस फेवरेट सेगमेंट में बॉलीवुड गॉसिप कॉर्नर।
1: बॉलीवुड गॉसिप कॉर्नर इज द टॉक ऑफ द नाइट।
2: यस, और आज का थीम है बर्थडे धमाका स्पेशल, क्योंकि बॉलीवुड में बर्थडे का अपना एक अलग ही स्वाद है।
0: वैसे दोस्तों, इतनी देर से तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि आज हम योगी का बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना? इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस भी हैं और बड़ा मजा आ रहा है मुझे आज का ये स्पेशल शो उसके लिए होस्ट करते हुए। अच्छा, आज के बॉलीवुड बर्थडे के बीच में ये खास बर्थडे जो हमारी प्यारी योगी का है। जी हाँ, योगी की बर्थडे के बिना कैसे कंप्लीट हो सकता है हमारा बर्थडे स्पेशल गॉसिप कॉर्नर। तो दोस्तों, आज डबल सेलिब्रेशन है, बॉलीवुड का गॉसिप और योगी की बर्थडे बैश।
2: अरे अरे हशी, ये क्या कर रही हो लाइव रेडियो पे? सच में दोस्तों, इतना प्यार मिल रहा है आज, मुझे लगा मैं बस दूसरों के बर्थडे की गॉसिप करूंगी, पर यहाँ तो अपना बर्थडे भी सेलिब्रेशन का पार्ट बन गया। मैं दिल से सभी लिसनर्स का, अपनी टीम का और मेरी खास को-होस्ट हाशी का शुक्रिया अदा करती हूँ इतना प्यारा सरप्राइज देने के लिए और इस पूरे एपिसोड को इतना स्पेशल बनाने के लिए। मुझे महसूस हो रहा है जैसे मैं बॉलीवुड की खुद कोई बर्थडे गर्ल हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सबका प्यार ही मेरी सबसे बड़ी गिफ्ट है।
0: योगी, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो और भी कुछ सरप्राइजेस बाकी हैं। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको खुश देखकर, मेरा भी दिन बन गया। दोस्तों, आज डबल सेलिब्रेशन है, बॉलीवुड का गॉसिप और योगी की बर्थडे बैश।
2: बिल्कुल, और अब वापस चलते हैं अपने गॉसिप की दुनिया में, क्योंकि पार्टी तो अभी शुरू हुई है।
0: यस यस यस, बिल्कुल सही कहा। सबसे पहले बात करते हैं हमारे हैंडसम हंक विकी कौशल की। बर्थडे पे कतरीना का सरप्राइज, प्राइवेट याच पार्टी मुंबई कोस्ट पे और एक सीक्रेट गेस्ट भी था।
2: ओएमजी हाशी, सीक्रेट गेस्ट? अब तो क्यूरियोसिटी डबल हो गई। वैसे सुना है कतरीना ने विकी को एक लिमिटेड एडिशन गिटार गिफ्ट किया। रोमांटिक वाइब्स प्योर हाई लेवल पर, है ना?
0: हाय, गिटार और प्यार दोनों एक साथ। और गेस करो, अनन्या पांडे के बर्थडे बैश की भी हेडलाइंस बनी थी। थीम थी नियॉन ग्लो पार्टी, सब फ्रेंड्स ने नियॉन आउटफिट्स पहने थे, पूरा इंस्टाग्राम जैसे चमक रहा था।
2: और हाशी, मसालेदार बात ये है, पार्टी में एक सरप्राइज डांस फेस ऑफ भी हुआ था, अनन्या वर्सेस जानवी कपूर। और मुझे सोर्सेस ने बताया है कि जानवी stole the show with her crazy moves.
0: Full Bollywood dance battle. Yogi, Bollywood birthdays without little drama to hota hi nahi. Suna hai ek famous ex couple bhi accidentally mil gaye party mein aur thodi awkward moment bhi capture ho gayi.
2: और छोटी सी ब्रेकिंग गॉसिप भी, एक फेमस एक्स कपल का ऑकवर्ड एनकाउंटर हुआ अनन्या की पार्टी में। कौन, ये हम बताएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
0: योगी, तुम कहीं मत जाओ, पार्टी तो अभी बाकी है, सिर्फ और सिर्फ करो बात हाशी और योगी के साथ। तो दोस्तों, मिलते हैं इसके अगले सेगमेंट में, लेकिन इस धमाकेदार गाने के बाद। ये समझ लीजिए ये मेरा डेडिकेशन है हमारी प्यारी योगी के लिए। हाय मेरी परम परम परम परम परम सुंदरी। चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: दोस्तों अब वक्त हो चला है हमारे स्पेशल सेगमेंट स्टार गेस्ट सेगमेंट का। वैसे इस सेगमेंट में हर हफ्ते हमारे शो में एक स्पेशल मेहमान आते हैं, लेकिन आज जबकि हम योगी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मेरे साथ मैंने इनवाइट किया है दो स्पेशल गेस्ट को। सबसे पहली मेहमान हमारे शो की फर्स्ट टाइम स्टार गेस्ट मिसेस रीना नाम्बियार ऑल द वे फ्रॉम मुंबई। वो हमारे GMF ऑफिशियल की को-फाउंडर है, प्लस कारोबार हाशी और योगी के साथ सिर्फ और सिर्फ जयपुर रेडियो में हमारे इस शो की क्रिएटिव डिजाइनर हेड भी है। अच्छा रीन्स, अब मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको इस शो में फिर से आकर कैसा लग रहा है एंड व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट अवर व्हाट यू कॉल तारा, है ना, योगी, बताइए प्लीज।
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हाशी, जयपुर रेडियो पर वापस आकर दिल को बहुत खुशी हो रही है। आप सबका प्यार, अपनापन और इस प्लेटफॉर्म

0: What a way to explain the personality of yogi. अच्छा और कौन सी बात आपको योगी की पसंद आती है ये बताइए.
1: योगिता विदाउट ड्रामा इज लाइक चाय विदाउट मसाला, इम्पॉसिबल. फिर इतनी स्वीट बन जाती है कि हम उसकी शिकायत भी नहीं कर सकते.
0: अच्छा अब अच्छी बात तो आपने बता दी. अब उसकी कोई चीज जो आपको पसंद नहीं आती है या नॉट एग्जैक्टली पसंद नहीं आती या यू वॉन्ट हर टू चेंज और यू वॉन्ट हर टू मॉडिफाई दैट थिंग, मतलब कोई भी चीज जो वो इम्प्रूव या इम्प्रोवाइज कर सकती है, इसके बारे में कुछ है उसकी कोई क्वालिटी जो आप बता सकती हैं?
1: तहाशी, योगिता ब्रिंग्स लाइट इनटू एवरी रूम दैट शी वॉक्स इनटू. आई एडमायर हर काम स्ट्रेंथ, हर एवर स्माइलिंग प्रेजेंस एंड द वे शी लिव्स अदर्स. शी इज अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ ग्रेस एंड वार्मथ दैट मेक्स हर ट्रूली स्पेशल.
0: अच्छा रीन्स, अब अगला सवाल. योगिता के लिए आप कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहती हैं? मतलब उसका बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसके लिए आप कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहती हैं?
1: डॉक्टर हाशी, अगर मुझे कोई गाना डेडिकेट करना हो योगिता के लिए स्पेशली ऑन हर बर्थडे तो इट वुड बी

0: Happy birthday, Yogita. God bless you.
1: Last but not the least, Rains, हमारे जयपुर रेडियो के श्रोताओं के लिए कोई मैसेज एज वेल एज हमारे बर्थडे गर्ल के लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें तो प्लीज प्लीज दीजिए।
0: जयपुर रेडियो के सभी सुनने वालों को बहुत प्यार। आज एक स्पेशल दिन है और मैं बहुत खुशी से आप सबके साथ हूँ। एक ह्यूज शाउट आउट अपने ड्रामा क्वीन योगिता को। हैप्पी बर्थडे, तुम्हारे बिना तो जिंदगी में मजा ही नहीं है। तुम हो तो हर दिन एक ब्लॉकबस्टर बन जाए। तुम्हारी एनर्जी और मस्ती के लिए थैंक्स। विश यू अ ईयर फुल ऑफ फन एंड जॉय। हैप्पी बर्थडे योगिता।
1: वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। चलिए दोस्तों, इतने प्यारे मैसेज के बाद हम सुनते हैं ये प्यारा गाना जो रीन्स हमारी योगी के लिए डेडिकेट करना चाहती है।

0: वेलकम बैक दोस्तों, और अब हमारे स्टार गेस्ट सेगमेंट के सेकंड स्टार गेस्ट इस स्पेशल शो में, जिसका नाम है करो बात हाशी और योगी के साथ ऑन बर्थडे स्पेशल। जी हाँ, हम योगी का बर्थडे मना रहे हैं, एंड हु बेटर देन आवर नेक्स्ट गेस्ट, जो यू कैन से योगी के बहुत करीबी दोस्त हैं, एंड इट्स माय ऑनर एंड प्लेजर टू वेलकम हिम ऑन आवर शो। तो तालियों के साथ वेलकम कीजिए डॉक्टर मनीष कल्ला का। वेलकम डॉक्टर।
1: Well, thank you very much for inviting me on this extremely special show for Yogi and for her birthday. And I cannot be more proud than this particular moment. So thank you very much for inviting me on this particular show. Thanks a lot.
0: अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप बताइए कि आपको हमारे इस शो में आकर कैसा लग रहा है, एंड व्हाट बेटर देन अ स्पेशल शो ऑन योगिता ऑन हर बर्थडे। हाउ आर यू फीलिंग, और आज आप आपकी आपके ख्यालात क्या, आपके मन में क्या ख्याल आ रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए।
1: Well, as per my knowledge and experience, a special person always deserves a special moment, and so is Yogi. And if today we are celebrating her birthday as a special gesture to her, I don't think anything can beat it up. Yes, it's a special moment for a special person, for sure. And I'm feeling amazingly proud to be a part of it.
0: I know, doctor, that you are very, very happy to be on our show. आप योगिता को विश कैसे करेंगे ये बताइए।
1: What I've experienced is that she is a wish and a boon to many. So how can I wish a wish? But still, let me try. Happiest birthday girl, stay blessed, keep smiling, keep laughing, and be the bubbliest person I know forever and always. Happy birthday.
0: अरे डॉक्टर साहब, ऐसे नहीं, हमको कुछ गाकर सुनाइए। आप योगिता के लिए क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं वो बताइए।
1: जो खुद एक विश हो सबके लिए, तो क्या ही विश दे पाएंगे। But then still, let me have that contemporary song, जो कि सालों साल से गाते आए हैं।

0: What a beautiful
1: beautiful
0: song,
1: song,
0: डॉक्टर
1: डॉक्टर साहब,
0: साहब, बहुत ही
1: बहुत ही
0: प्यारा
1: प्यारा
0: गाना
1: गाना
0: है।
1: है।
0: अच्छा,
1: अच्छा,
0: अब
1: अब
0: डॉक्टर
1: डॉक्टर
0: मनीष,
1: मनीष,
0: आप
1: आप
0: मुझे
1: मुझे
0: ये
1: ये
0: बताइए
1: बताइए
0: कि
1: कि
0: योगिता
1: योगिता
0: के
1: के
0: साथ
1: साथ
0: आपकी
1: आपकी
0: सबसे
1: सबसे
0: पहले
1: पहले
0: मुलाकात,
1: मुलाकात,
0: या
1: या
0: हाउ
1: हाउ
0: डिड
1: डिड
0: यू
1: यू
0: बोथ
1: बोथ
0: नो
1: नो
0: ईच
1: ईच
0: अदर,
1: अदर,
0: कैसे
1: कैसे
0: आप
1: आप
0: दोनों
1: दोनों
0: मिले,
1: मिले,
0: या
1: या
0: कैसे
1: कैसे
0: आप
1: आप
0: दोनों
1: दोनों
0: में
1: में
0: फ्रेंडशिप
1: फ्रेंडशिप
0: हुई,
1: हुई,
0: ये
1: ये
0: अगर
1: अगर
0: आप
1: आप
0: बताना
1: बताना
0: चाहते
1: चाहते
0: हैं
1: हैं
0: तो।
1: तो।
0: वेल,
1: वेल,
0: इट्स
1: इट्स
0: एन
1: एन
0: इंटरेस्टिंग
1: इंटरेस्टिंग
0: स्टोरी
1: स्टोरी
0: ड्यूरिंग
1: ड्यूरिंग
0: दोज
1: दोज
0: भोपाल
1: भोपाल
0: रेडियो
1: रेडियो
0: डेज।
1: डेज।
0: सो
1: सो
0: इन
1: इन
0: भोपाल
1: भोपाल
0: रेडियो
1: रेडियो
0: डेज
1: डेज
0: पीपल दे यूज्ड टू हैव देयर पार्टनर्स। सो वी यूज्ड टू हैव अ प्रोग्राम ऑन अ थीम, बेस्ड ऑन अ थीम। सो दैट्स वेयर मी एंड शी वी मेट। सो वी हैड आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन एंड इट वाज प्रीटी फॉर्मल। सो फ्रॉम देयर इट ऑल स्टार्टेड।
1: अब
0: अब
1: देखते
0: देखते
1: हैं,
0: हैं, आप
1: आप
0: योगिता
1: योगिता
0: को
1: को
0: कितना
1: कितना
0: जानते
1: जानते
0: हैं?
1: हैं?
0: अच्छा,
1: अच्छा,
0: मेरे
1: मेरे
0: इस
1: इस
0: सवाल
1: सवाल का
0: का जवाब
1: जवाब
0: जस्ट
1: जस्ट
0: अ
1: अ
0: सिंगल
1: सिंगल
0: वर्ड
1: वर्ड
0: में
1: में
0: देना
1: देना
0: है
1: है
0: आपको।
1: आपको।
0: योगीज
1: योगीज
0: फेवरेट
1: फेवरेट
0: कलर,
1: कलर,
0: ब्लैक।
1: ब्लैक।
0: योर
1: योर
0: नेक्स्ट
1: नेक्स्ट
0: क्वेश्चन,
1: क्वेश्चन,
0: हर
1: हर
0: फेवरेट
1: फेवरेट
0: स्ट्रीट
1: स्ट्रीट
0: फूड
1: फूड
0: एट
1: एट
0: एनी
1: एनी
0: गिवन
1: गिवन
0: डे
1: डे
0: इट
1: इट
0: हैज
1: हैज
0: टू
1: टू
0: बी
1: बी
0: जस्ट
1: जस्ट
0: पानी
1: पानी
0: पूरी।
1: पूरी।
0: ओके,
1: ओके,
0: अब
1: अब
0: अगला
1: अगला
0: सवाल।
1: सवाल।
0: हर
1: हर
0: फेवरेट
1: फेवरेट
0: पॉप
1: पॉप
0: सिंगर,
1: सिंगर,
0: वेल
1: वेल
0: शी
1: शी
0: इज
1: इज
0: नॉट
1: नॉट
0: दैट
1: दैट
0: जैजी,
1: जैजी,
0: बट
1: बट
0: हाँ
1: हाँ
0: शी
1: शी
0: डू
1: डू
0: लाइक
1: लाइक
0: द
1: द
0: कंपोजिशन
1: कंपोजिशन
0: ऑफ
1: ऑफ
0: अरिजीत
1: अरिजीत
0: सिंह
1: सिंह
0: एंड
1: एंड
0: रिज़वान
1: रिज़वान
0: मलिक।
1: मलिक।
0: एज
1: एज
0: अ
1: अ
0: फ्रेंड,
1: फ्रेंड,
0: हाउ
1: हाउ
0: डू
1: डू
0: यू
1: यू
0: रेट
1: रेट
0: हर
1: हर
0: फ्रॉम
1: फ्रॉम
0: 1 to 10?
1: 11।
0: क्योंकि कि कौन सी बात सबसे
1: सबसे
0: अच्छी
1: अच्छी
0: है?
1: है?
0: सबसे
1: सबसे
0: अच्छी।
1: अच्छी।
0: टू
1: टू
0: बिगिन
1: बिगिन
0: विथ
1: विथ
0: हर
1: हर
0: लाफ्टर
1: लाफ्टर
0: एंड
1: एंड
0: द
1: द
0: वे
1: वे
0: शी
1: शी
0: टेक्स
1: टेक्स
0: केयर
1: केयर
0: ऑफ
1: ऑफ
0: एवरी
1: एवरी
0: वन
1: वन
0: एंड
1: एंड
0: द
1: द
0: काइंड
1: काइंड
0: ऑफ
1: ऑफ
0: एक्स्ट्रा
1: एक्स्ट्रा
0: एफर्ट
1: एफर्ट
0: शी
1: शी
0: ऑलवेज
1: ऑलवेज
0: मेक्स
1: मेक्स
0: in
1: in
0: order
1: order
0: to
1: to
0: keep
1: keep
0: the
1: the
0: friends
1: friends
0: and
1: and
0: the
1: the
0: relationships
1: relationships
0: intact.
1: intact.
0: It is
1: It is
0: something
1: something
0: a
1: a
0: rare
1: rare
0: commodity
1: commodity
0: which
1: which
0: is
1: is
0: not
1: not
0: found
1: found
0: with
1: with
0: everyone,
1: everyone,
0: and
1: and
0: by
1: by
0: all
1: all
0: means
1: means
0: she
1: she
0: is
1: is
0: blessed
1: blessed
0: with
1: with
0: it.
1: it.
0: अच्छा,
1: अच्छा,
0: उसका
1: उसका
0: फेवरेट
1: फेवरेट
0: बॉलीवुड
1: बॉलीवुड
0: एक्टर
1: एक्टर
0: कौन
1: कौन
0: सा
1: सा
0: है,
1: है,
0: इफ यू
1: इफ यू
0: नो?
1: नो?
0: शाहिद
1: शाहिद
0: कपूर।
1: कपूर।
0: क्या
1: क्या
0: बात
1: बात
0: है,
1: है,
0: क्या
1: क्या
0: बात
1: बात
0: है।
1: है।
0: मजा आया,
1: मजा
0: आई
1: आया, आई
0: थिंक
1: थिंक
0: आपको
1: आपको
0: भी
1: भी
0: बड़ा
1: बड़ा
0: मजा
1: मजा
0: आया
1: आया
0: ये
1: ये
0: छोटा
1: छोटा
0: सा
1: सा
0: गेम
1: गेम
0: खेलकर,
1: खेलकर,
0: जिसको
1: जिसको
0: हम
1: हम
0: कहते
1: कहते
0: हैं
1: हैं
0: रैपिड
1: रैपिड
0: फायर
1: फायर
0: राउंड।
1: राउंड।
0: जी
1: जी
0: हाँ,
1: हाँ,
0: अब
1: अब
0: डॉक्टर
1: डॉक्टर
0: साहब,
1: साहब,
0: आई
1: आई
0: होप
1: होप
0: यू
1: यू
0: एंजॉयड
1: एंजॉयड
0: बीन
1: बीन
0: ऑन
1: ऑन
0: दिस
1: दिस
0: शो
1: शो
0: ऑन
1: ऑन
0: करो
1: करो
0: बात
1: बात
0: हाशी
1: हाशी
0: और
1: और
0: योगी
1: योगी
0: के
1: के
0: साथ।
1: साथ
0: आपकी
1: आपकी
0: आवाज,
1: आवाज,
0: आपकी
1: आपकी
0: पहचान।
1: पहचान।
0: हैप्पी
1: हैप्पी
0: बर्थडे
1: बर्थडे
0: टू
1: टू
0: योगी
1: योगी
0: स्पेशल।
1: स्पेशल।
0: अच्छा,
1: अच्छा,
0: अब
1: अब
0: डॉक्टर
1: डॉक्टर
0: साहब,
1: साहब,
0: आप
1: आप
0: योगी
1: योगी
0: के
1: के
0: लिए
1: लिए
0: क्या
1: क्या
0: मैसेज
1: मैसेज
0: देना
1: देना
0: चाहते
1: चाहते
0: हैं?
1: हैं?
0: Well,
1: Well,
0: she
1: she
0: is
1: is
0: full
1: full
0: of
1: of
0: energy
1: energy
0: and
1: and
0: positivity.
1: positivity.
0: So
1: So
0: my
1: my
0: only
1: only
0: message
1: message
0: to
1: to
0: her
1: her
0: is
1: is
0: to
1: to
0: be
1: be
0: vivacious,
1: vivacious,
0: be
1: be
0: strong,
1: strong,
0: because
1: because
0: the
1: the
0: world
1: world
0: out
1: out
0: there
1: there
0: is
1: is
0: too
1: too
0: cunning.
1: cunning.
0: But
1: But
0: yes,
1: yes,
0: I
1: I
0: know
1: know
0: you
1: you
0: are
1: are
0: strong
1: strong
0: and
1: and
0: you'll
1: you'll
0: rock
1: rock
0: in
1: in
0: any
1: any
0: ways
1: ways
0: of
1: of
0: life.
1: life.
0: Wherever
1: Wherever
0: you
1: you
0: go,
1: go,
0: you're
1: you're
0: definitely
1: definitely
0: going
1: going
0: to
1: to
0: conquer
1: conquer
0: all
1: all
0: the
1: the
0: atrocities
1: atrocities
0: and
1: and
0: audacities,
1: audacities,
0: and
1: and
0: you'll
1: you'll
0: overcome
1: overcome
0: all
1: all
0: the
1: the
0: challenges
1: challenges
0: and
1: and
0: to
1: to
0: be
1: be
0: on
1: on
0: the
1: the
0: top
1: top
0: of
1: of
0: it.
1: it.
0: And
1: And
0: I
1: I
0: would
1: would
0: yet
1: yet
0: again
1: again
0: like
1: like
0: to
1: to
0: reiterate
1: reiterate
0: and
1: and
0: thank
1: thank
0: the
1: the
0: listeners
1: listeners
0: and
1: and
0: the
1: the
0: fans
1: fans
0: of
1: of
0: Jaipur
1: Jaipur
0: Radio.
1: Radio.
0: And
1: And
0: I'm
1: I'm
0: proud
1: proud
0: to
1: to
0: be
1: be
0: on
1: on
0: this
1: this
0: particular
1: particular
0: program
1: program
0: and
1: and
0: on
1: on
0: this
1: this
0: special
1: special
0: occasion
1: occasion
0: to
1: to
0: wish
1: wish
0: my
1: my
0: bestie
1: bestie
0: the
1: the
0: best
1: best
0: birthday
1: birthday
0: ever.
1: ever.
0: So
1: So
0: thank
1: thank
0: you,
1: you,
0: Jaipur
1: Jaipur
0: Radio,
1: Radio,
0: and
1: and
0: keep
1: keep
0: listening
1: listening
0: to
1: to
0: Karo
1: Karo
0: Baat,
1: Baat,
0: Haashi
1: Haashi,
0: and
1: and
0: Yogi
1: Yogi
0: ke
1: ke
0: saath.
1: saath.
0: And
1: And
0: once
1: once
0: again,
1: again,
0: happy
1: happy
0: birthday,
1: birthday,
0: CC.
1: CC.
0: That
1: That
0: was
1: was
0: very,
1: very,
0: very
1: very
0: sweet
1: sweet
0: of
1: of
0: you,
1: you,
0: Dr.
1: Dr.
0: Sam.
1: Sam.
0: I
1: I
0: hope
1: hope
0: you
1: you
0: enjoyed
1: enjoyed
0: our
1: our
0: show
1: show
0: as
1: as
0: much
1: much
0: as
1: as
0: I
1: I
0: enjoyed
1: enjoyed
0: being
1: being
0: with
1: with
0: you.
1: you.
0: फिर
1: फिर
0: एक
1: एक
0: बार
1: बार
0: मैं
1: मैं
0: आपको
1: आपको
0: बुलाऊंगी
1: बुलाऊंगी
0: हमारे
1: हमारे
0: इस
1: इस
0: मंच
1: मंच
0: पर।
1: पर।
0: आज
1: आज
0: के
1: के
0: लिए
1: लिए
0: बस
1: बस
0: इतना
1: इतना
0: ही।
1: ही।
0: बट
1: बट
0: यस,
1: यस,
0: योर
1: योर
0: विशेस,
1: विशेस,
0: योर
1: योर
0: ब्लेसिंग्स
1: ब्लेसिंग्स
0: आर
1: आर
0: एब्सोल्यूटली
1: एब्सोल्यूटली
0: इम्पोर्टेंट।
1: इम्पोर्टेंट।
0: और
1: और
0: मुझे
1: मुझे
0: यकीन
1: यकीन
0: है
1: है
0: कि
1: कि
0: योगी
1: योगी
0: को
1: को
0: आज
1: आज
0: हमारे
1: हमारे
0: दोनों
1: दोनों
0: स्टार
1: स्टार
0: गेस्ट
1: गेस्ट
0: से
1: से
0: मिलकर
1: मिलकर
0: और
1: और
0: सुनकर
1: सुनकर
0: बड़ा
1: बड़ा
0: ही
1: ही
0: अच्छा
1: अच्छा
0: लगा
1: लगा
0: होगा।
1: होगा।
0: वंस
1: वंस
0: अगेन,
1: अगेन,
0: मैनी
1: मैनी
0: मैनी
1: मैनी
0: मैनी
1: मैनी
0: हैप्पी
1: हैप्पी
0: रिटर्न्स
1: रिटर्न्स
0: ऑफ
1: ऑफ
0: द
1: द
0: डे
1: डे
0: योगी।
1: योगी।
0: एंजॉय
1: एंजॉय
0: योर
1: योर
0: बर्थडे
1: बर्थडे
0: एंड
1: एंड
0: एंजॉय
1: एंजॉय
0: दिस
1: दिस
0: ब्यूटीफुल
1: ब्यूटीफुल
0: सॉन्ग।
1: सॉन्ग।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं करो बात हाशी और योगी के साथ। और अब हम लेकर आए हैं एक ऐसा सेगमेंट जो दिल को ले जाता है सीधा पिछले जमाने में।
1: जी हाँ, वेलकम टू यू ऑल्सो योगी। अच्छा, ये हमारा फेवरेट सेगमेंट है, नॉस्टैल्जिया सेगमेंट, जहाँ यादें ताजा होती हैं और दिल खुश हो जाता है उन गीतों को सुनकर जो हमारे दिनों का साउंड ट्रैक हुआ करते थे।
0: और आज का नॉस्टैल्जिया पिक है एक ऐसा गाना जो सिर्फ एक सॉन्ग नहीं, एक पूरा इमोशन था। कॉलेज की कैंटीन से लेकर रोड ट्रिप्स तक हर जगह बजता था।
1: जी हाँ दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं यूफोरिया का आइकॉनिक ट्रैक फिर धूम।
0: वो धूम, वो मस्ती, वो केयरफ्री वाइब, ये गाना सुनते ही ऐसा लगता है जैसे फिर से कॉलेज का टाइम आ गया हो। यूनिफॉर्म्स, बंक क्लासेस और दोस्तों के साथ वो बिना वजह की हंसी।
1: बिल्कुल योगी, और सबसे खास बात ये है कि फिर धूम के जो कंपोजर एंड सिंगर है पलाश सेन, वो आपके भी फेवरेट है, है ना? तो एक तरह से ये पूरा शो आपको डेडिकेटेड है, आपके बर्थडे बैश को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो क्यों ना हम नॉस्टैल्जिया में भी पलाश सेन के इस सॉन्ग को सेलिब्रेट करें। फिर धूम ने हमें सिखाया था कि चाहे कुछ भी हो, लाइफ में फिर से धूम मचानी चाहिए, फिर से जीना है।
0: तो चलिए दोस्तों, आंखों को बंद कीजिए, मुस्कान लीजिए और ले चलिए खुद को एक और दुनिया में, जहां था सिर्फ धूम, दोस्ती और ड्रीम्स।
1: Yes, here we go. फिर धूम by Euphoria, सिर्फ और सिर्फ करो बात हाशी और योगी के साथ, जिसमें हम मना रहे हैं बर्थडे बैश ऑफ माय डियर फ्रेंड योगी।
0: कैसे भूलेगी मेरा नाम?
1: Didn't I?

0: भगवान बुरी नजर से बचाए आपको, चांद सितारों से सजाए आपको, गम क्या होता है ये आप भूल ही जाओ, भगवान जिंदगी में इतना हंसाए आपको। हैप्पी बर्थडे योगी। जी हाँ दोस्तों, अब हम आ गए हैं हमारे आखिरी सेगमेंट की ओर, जो है डेडिकेशंस वाला सेगमेंट। और दोस्तों, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी को-होस्ट योगी के बर्थडे बैश पे उनके लिए उनके दोस्तों ने और हमारे सभी सुनने वालों ने, जयपुर रेडियो के खास श्रोतागण, उन्होंने भी इतने सारे मैसेजेस एंड डेडिकेशंस भेजे हैं। जी हाँ, तो क्यों ना हम वो सारे डेडिकेशंस सुनते हैं एक के बाद एक, है ना योगी? चलिए सुनते हैं सारे डेडिकेशंस। सबसे पहले मनोज जी, देखते हैं मनोज जी योगी के बर्थडे पर क्या कहना चाहते हैं।
1: अच्छा जी,
2: योगिता जी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। मैं कामना करता हूं कि आपका ये दिन आपके लिए खुशियों और हंसी से भरा रहे, आपका दिन उतना ही शानदार हो जितना कि आप हैं, और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां, सफलताएं और प्यार हो। हैप्पी बर्थडे। योगिता जी, मैं आपकी कुंडली के बारे में कुछ अच्छी जानकारी देना चाहता हूँ। आपकी कुंडली बहुत उत्तम कुंडली है, आपकी स्मरण शक्ति बहुत उत्तम है, आप आवश्यकता से अधिक उदार हैं, और ये उदारता आपके काम में भी झलकती है, आपके पहनावे में, आपके निवास स्थान में, आप व्यक्तिगत रूप से आकर्षक भी हैं, शालीन हैं और सुलझे हुए हैं, आप बड़े दिल वाली हैं और खुले दिमाग की भी हैं, आप विपरीत परिस्थितियों में भी विचारवान रहती है, आप जन्म से ही आपके अंदर एक लीडरशिप के गुण है, और आप घबरा पसंद नहीं करती, आपका दृष्टिकोण व्यापक है और छोटी छोटी बातों में आप परवाह नहीं करते, आप एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं और ऊंचे लक्ष्य रखती हैं, आपका एम हमेशा ऊंचा रहता है, और अगर आप लक्ष्य से दूर रह जाते हैं तो आप उसके लिए संघर्षशील भी रहते हैं। भगवान आपको सफलता दे, आपके जीवन को सुखमय बनाए, सफल बनाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ।
1: थैंक यू सो मच मनोज जी, आपकी बातों में दिन दिन बना दिया मेरा। थैंक यू सो मच।
3: हैप्पी बर्थडे योगिता, विश यू ऑल द बेस्ट।
1: शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
4: हेलो, हाय हाय हाय, मैं हूँ तुम्हारा से तुम्हारा अनिरुद्ध, लेकिन योगिता तुम्हारे लिए अनि, और तुम हो मेरी योगी और मैं हूँ तुम्हारा अनि। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर योगिता, सॉरी योगी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत खुशियाँ तुम्हें मिले, तुम्हारे सारे अरमान पूरे हों, एंड यू आर वेरी स्पेशल पर्सन, हमेशा ऐसे खास रहना और हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहना, ठीक है? हैव अ ग्रेट डे टुडे। एंड हाँ, मैं खास हाशी को थैंक यू बोलना चाहूंगा, जिसकी वजह से उसने मुझे याद दिलाया कि यू नो तुम्हारा बर्थडे है, शी इज अ वेरी स्पेशल पर्सन, उसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और तुम भी कहना कि उसने ये सरप्राइज देने का ख्याल उसी का था। और सुनी, क्योंकि आरजे हूँ तो मैं सब कुछ अपने गानों के जरिए ही बोलता हूँ, तो तुम्हारे लिए ये मेरा स्पेशल हैप्पी बर्थडे वाला गाना। अब ये मत सोचो मैं गाना गाऊंगा बार बार ये दिन आए, नहीं नहीं भैया, वो हैप्पी बर्थडे वाला गाना मैं नहीं गाता हूँ भैया, हम तो रुमानी अंदाज वाले बंदे हैं, तो रुमानियत वाला ही गाना सुनाएंगे आपके लिए।
5: हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते योगिता उर्फ योगी तुम्हारे बिना।
4: हैप्पी बर्थडे।

0: day.
1: Thank you.
2: Wow, that's so sweet of you, Annie. Actually, हमारे आरजे अनिरुद्ध इतने प्यारे हैं, सबके दिल के इतने करीब है कि जब वो इतनी प्यारी प्यारी बातें हमारे लिए बोलते हैं ना, तो बड़ा मजा आता है. थैंक्स अ लॉट एनी, थैंक्स अ लॉट. अब चलिए आगे सुनते हैं जीएमएफ के कुछ खास मेंबर्स योगी के लिए क्या कहना चाहते हैं.

0: happy birthday, Yogi. Keep singing, stay beautiful. Wish you a very happy birthday.
1: Happy birthday, Yogi. This is Deepti from GMF Group. आज तुम्हारा जन्मदिन है. ईश्वर से मैं यही कामना करती हूँ कि तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहें और तुम्हारे सारे सपने हमेशा सच हों. तुम ऊंचाइयों तक पहुँचो, अपने जीवन में जो भी करना चाहती हो उसे पाओ और खूब खुश रहो. थैंक यू.
2: हाय योगी, हैप्पी बर्थडे. इंदु झा हियर, विशिंग यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे. तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000. लव यू योगी.

0: Hello, Yogita. Wish you a very happy birthday. Stay blessed. Enjoy your day. Gaate raho, muskurate raho. A very happy birthday to you.
1: Happy birthday, Yogi. This is Koma here, wishing you a very, very happy birthday. Stay blessed. Stay musical.
2: Hey, Yogi. This is Mani here, wishing you a very, very happy birthday. आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं।
3: शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
4: हैप्पी बर्थडे योगी।
5: दिस इज मनीष हियर विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। स्टे ब्लेस्ड।
6: योगिता जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां। हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, गाती रहें, गुनगुनाती रहें, मुस्कुराती रहें। मैनी मैनी मोर।
7: हैप्पी बर्थडे योगी जी। This is Satin here, wishing you very happy birthday. Many, many happy returns of the day. God bless you.
8: Tum jiyo hazaaron saal saal ke din ho 50,000.
9: जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको योगिता जी। हमेशा खुश रहिए, फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए। मैं शमीम अख्तर अमरोहा से।
10: हैप्पी बर्थडे डियर योगी, विशिंग यू अ वंडरफुल ईयर अहेड।
11: विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे दैट स्पार्कल्स विद जॉय, ग्लोज विद सक्सेस एंड रेडिएट्स विद इमेंस हैप्पीनेस। हैव ए ब्लिसफुल बर्थडे सेलिब्रेशन योगी जी। गॉड ब्लेस यू। हमेशा हंसते गाते मुस्कुराते रहिए।
12: आप सब लोग कितने अच्छे हो।
13: कितने प्यारे प्यारे मैसेजेस दिए। नहीं, GMF ऑफिशियल और GMF के सारे मेंबर्स ने आपके लिए योगी। चलिए सुनते हैं उनकी तरफ से ये प्यारा सा गाना।
14: हैप्पी बर्थडे योगी, गॉड ब्लेस यू।

0: योगिता मेरी छोटी सी प्यारी सी बिटिया रानी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिंदगी में बहुत सारी तरक्की करो, बहुत आगे बढ़ो, बहुत नाम कमाओ और अपना और अपने घर का और अपने परिवार का सबका नाम रोशन करो। तुम्हारे ऊपर सबको बहुत विश्वास है और वी ऑल लव यू। ठीक है बेटा, अपना जन्मदिन खुशी खुशी और मस्ती से मनाओ जैसी कि तुम्हारी आदत है। ओके, many many happy returns of the day once again.
1: Yogi, wishing you a very happy birthday. Enjoy your day. Stay blessed always here.
2: Thank you so much from bottom of my heart.
3: Yogi, वार्तव साझा खूब खूब खूब खूब शुभेच्छा। तुझे सगळे स्वप्न पूर्ण हो हित आमच्याकडून प्रभु चरणी प्रार्थना। तुझ्या पुढील आयुष्यासाठी व भावी वाटचालीसाठी आमच्याकडून खूब खूब शुभेच्छा। तुझ्या सर्व मनोकामना पूर्ण होत। Wish you a very happy, happy birthday.
4: Hey Yogi ji, happy birthday. May you have many, many more and may you live long, healthy and in abundance. Stay blessed, Pradeep here.
2: Shukriya, shukriya, shukriya.
5: Tu mera dil, tu meri jaan, oh, I love you Yogi.
6: तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे प्यारे बच्चे, और जिंदगी में हमेशा तुम सही के साथ रहती हो, वैसे ही रहना। एंड थैंक्स फॉर ऑल योर लव सपोर्ट एंड आई ऑलवेज विश यू बेस्ट ऑफ हेल्थ, ग्रेट सक्सेस इन योर करियर एंड एज ऑलवेज लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स ऑल द वे फ्रॉम योर न्यू डैड। Take care of yourself. God bless you, बच्चे. Love you.
2: Wow, क्या बात है!

0: हेलो योगिता, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। एंड हमारी सिर्फ एक ही बार बात हुई है, बट मुझे लगा नहीं कि हमने पहली बार बात की है। और तुम्हारे साथ जो शो रहा मेरा, वो बहुत अमेजिंग था। मैं इसे हमेशा याद रखूंगी और हम हमेशा इसी तरह से बात करते रहेंगे और जुड़े रहेंगे। और आप इसी तरह से बहुत आगे बढ़ें और खूब सारे शो करें। माई बेस्ट विशेस टू यू। And you made my day. Thank you.
1: हे योगी, विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे। मे गॉड ब्लेस यू। आपकी सारी मनोकामना जल्दी ही पूर्ण हो जाए और एंजॉय द पार्टी, एंजॉय द बर्थडे। थैंक यू।
0: Thank you so much, Raj ji.
2: हाय योगी जी, इट्स योर बर्थडे टुडे। आई विश यू अ वेरी वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।
0: दैट्स सो स्वीट। थैंक यू सो मच।
3: हाय योगी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप दिस ईयर अहेड इज द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ।
0: शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
3: वॉजंट दैट सो स्वीट? इतने सारे मैसेजेस एंड डेडिकेशंस सुनने के बाद मुझे भी लगने लगा है कि योगी, आप सबके दिल के कितने करीब हो। तो क्या कहना चाहते हैं आप योगी? लेट्स हियर फ्रॉम यू।
0: आज जो खुशी मेरे दिल में है, वो लफ्जों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। मेरे बर्थडे को इतना ब्यूटीफुल, मेमोरेबल और दिल से स्पेशल बनाने के लिए मेरे सभी फैंस, दोस्तों, जयपुर रेडियो की द होल टीम, मेरे रेडियो शो के हर एक साथी, मेरी सोलफुल को होस्ट हाशी और मेरे हर अपने से मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आप सबको एक प्यारा सा सलाम और दिल से शुक्रिया। जब इतना प्यार, इतनी दुआएं और इतना साथ मिलता है, सब समझ आता है कि असली दौलत तो रिश्तों में ही छुपी होती है। हर एक विश, हर एक सरप्राइज, हर एक स्माइल, इन सब ने मेरे दिन को इतना रोशन कर दिया है कि मैं क्या ही बताऊं। मुझे महसूस हुआ कि मैं कितनी लकी हूँ। आप जैसे लोग, इतने सारे प्यार करने वाले लोगों को अपनी जिंदगी में पाकर, ऐसे ही प्यार और साथ बना रहे, मैं हमेशा आपके इस प्यार और ब्लेसिंग्स के लिए शुक्रगुजार रहूंगी। और आप सबके लिए एक छोटी सी शायरी। जिंदगी के सफर में कई लोग मिल जाते हैं, पर हर रिश्ता दिल से नहीं निभाते हैं। जो छू जाए रूह को बस एक मुस्कान से, वो आप जैसे अपने ही तो असली खजाने होते हैं। दिल से थैंक यू सबको। आप हो तो मैं हूँ। विथ ऑल माई लव, लाइट एंड एंडलेस ग्रेटिट्यूड। थैंक यू।
3: दोस्तों, अब इसी के साथ हमारे शो का दी एंड होने आया है, लेकिन मैं आप सबसे ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि आज का जो बर्थडे स्पेशल था, वो एक खास इंसान के लिए था जो करो बात हाशी और योगी के साथ की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्तिमत्व है। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, अ वेरी वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू योगी। एंड दोस्तों, आप सभी हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं या किसी को कुछ डेडिकेशन देना चाहते हैं या आप अपने शो का प्रमोशन करना चाहते हैं, अपना प्रमोशन करना चाहते हैं, तो इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और हमारे पेज करो बात हाशी और योगी के साथ सिर्फ और सिर्फ जयपुर रेडियो को फॉलो कीजिए। और जी हाँ, जयपुर रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि जयपुर रेडियो है तो हम सब हैं। तो आइए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक प्यारा सा गाना सुनते हैं हमारी योगी के लिए। एंड वंस अगेन, मैनी मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड शब खैर। अ वेरी वेरी वेरी स्वीट गुड नाइट।

डाइसेप्ट हर्बल शैम्पू एंड कंडीशनर, काले अंगूर के रस, शहद, आंवला, नीम, तुलसी और शिकाकाई के गुणों से भरपूर बालों को मजबूत और चमकदार बनाए, आपके बालों को झड़ने से रोके, बाल बने मुलायम, रेशम से लहराए।

और जयपुर रेडियो वर्ड से अभी आप सुनते हैं, यानी ये समय है मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, और गीतों की ये बाहर लेके आई है अर्चुरानो 16। हर रविवार को एक नया प्रोग्राम अपने सुरीले सिंगर्स के साथ हमारे साथ होती हैं अर्चुरानो 16। आपकी आवाज आपकी पहचान। वैसे तो तारे निकलने का समय है, लेकिन गीतों के सितारे इसी वक्त निकलते हैं, आपके साथ होते हैं। पहले गीत में हम रूबरू होते हैं अर्चुरानो के साथ, छुप गए तारे नजारे, हाय क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, और तूने गीत सुनाया शाम से रात हो गई, और पहली मुलाकात में मनोज जोली के साथ अर्चुरानो 16। आइए सुनते हैं ये सुरीला सॉन्ग, मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, इस अंक का पहला गीत।

सच में दिन से रात तो हो गई। मनोज जोली और अर्चुरानू 16 को हमने सुना। सच में अर्चना जी, एक गीत और हो जाना चाहिए, जिसे क्या कहें, सॉन्ग फॉर पीस, शांति के लिए भी कोई गीत होना चाहिए, अपनी बात रखने के लिए भी कोई गीत होना चाहिए।

हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर न सके। लेकिन फिर भी कोशिश तो की जा सकती है वफा की, क्योंकि शीशे की अरमां लेके हम घूमते हैं और शीशा है कि टूट जाता है, और वादा भी टूट जाता है। लेकिन हमारी कोशिश जारी रहनी चाहिए। राम किंग आ गए हैं अर्चुरानों के साथ सुरीला सॉन्ग।

मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, क्योंकि वादा तो टूट जाता है। राम किंग साथ दे रहे थे अर्चना अग्रवाल का। आप सुन रहे हैं मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा का ये विशेषंक, आपकी आवाज आपकी पहचान जयपुर रेडियो वर्ल्ड से। और अब आ गए हैं बबलू आर्य, रिम झिम रुंझुन रुंझुन, गीत में संगीत, संगीत में गीत, बबलू आर्य और अर्चुरानु 16।

रिमझिम भी है, रुनझुन भी है, बरसात भी है, पानी भी है, रात भी है और ये मुलाकात भी है। आइए अगली मुलाकात मनोज जोली के साथ इस गीत में अर्चुरानू कर रही हैं।

भीगी रातों की प्रतीक्षा है, उन भोली बातों की मुलाकातों की प्रतीक्षा है, तारे छुप जाने की प्रतीक्षा है और आपके आ जाने की प्रतीक्षा है। इस बार इस गीत में सुरीला साथ देने के लिए आ गए हैं संजीव शुक्ला। अचुरानू का ये गीत छुप गए तारे सारे नजारे, हाय क्या बात हो गई। और इस गीत को हमने इस प्रोग्राम में आज दो बार लिया है क्योंकि आमंत्रण ऐसा ही था।

सच में तारे तो छुप ही गए हैं, या यूं कहीं छिप गए हैं, और बादल ने थोड़ी देर के लिए अपना दामन लहराया है। संजीव शुक्ला साथ दे रहे थे अर्चुरानू का, और आइए सुनते हैं प्रोग्राम का ये अगला सॉन्ग।

उम्मीद इंतजार बादल लेके आएगा बारिश, और सरगम स्टूडियो साथ दे रहा था अर्चरानू का इस गीत में, और उम्मीद हमेशा बनी रहनी चाहिए, इसी का नाम तो है जिंदगी। आइए सुनते हैं अगला गीत।

ये दुनिया ये महफिल ये गीत यूं ही हमारे संग सदा साथ रहें। पब्लू आर्या और अर्चुरानो का ये सुरीला गीत हमने सुना और ये दुनिया है चलती रहती है और इसमें हमारे गीत गूंजते रहते हैं और हम गुनगुनाते रहते हैं। अगले गीत में अपना स्वर लेके आए हैं इस मंच के मेल सिंगर अनुराग। वेलकम है अनुराग, अपनी आवाज के नूर का निखार लेकर आ गए हैं अनुराग। आइए सुनते हैं, आ गए हैं तो

तुम आ गई हो तो नूर आ गया है। सच में नूर लेके आए हैं। और पिछले दिनों हमने ऋषि कपूर अभिनेता को याद किया था, और आज इसी सप्ताह में हम अनुराग का ये गीत लेके आए हैं, फिल्म प्रेम रोग का, जिसे ऋषि कपूर साहब पर अभिनीत किया गया था। फिल्म प्रेम रोग का ये गीत, इस रोग की माया ऐसी पलट दे जो गीतों की पूरी काया, अनुराग।

जाओ जाओ जाओ मेरे यार को बुलाओ, जाने तो अभी नहीं देंगे हम, हम तो यही कहेंगे कि चलते रहो, चलना ही जिंदगी है। अनुराग, एक गीत और हो जाए इस प्रोग्राम में।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कर लो बात हाशी और योगी के साथ।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं कि व्यास जी नहीं होते तो जयपुर रेडियो नहीं होता, और जयपुर रेडियो नहीं होता तो हमारा शो करो बात हाशी और योगी के साथ भी नहीं होता। और अगर हमारा शो नहीं होता तो मैं भी नहीं होती। लेकिन इन सब बातों में एक बात बड़ा ही कॉमन है और

0: वो है कि आज इस शो की खास होस्ट और क्रिएटिव एंड एक्टिव जो हमारी होस्ट भी है, क्रिएटिव डायरेक्टर भी है, एज वेल एज इस शो की जान भी है, और वो है हमारी योगी जिसका आज जन्मदिन है। और मुझे बेहद खुशी हो रही है व्यास जी, आज आप आए हैं हमारे इस शो में चार चांद लगाने के लिए।
1: किस किस के नाम बताऊं, किस किस की बात सुनाऊं, आपकी आवाज आपकी पहचान, ये वो मंच है जिसमें बात भी है, आपकी आवाज भी है, आपके गीत भी है। और आज मैं बहुत खास दिन है क्योंकि आज जयपुर रेडियो की हमारी प्यारी सी बहुत ही इंटेलिजेंट बहुत साफ योगी का जन्मदिन है।
0: जी हाँ व्यास जी, बिल्कुल सही कहा आपने, ये शो स्पेशल डेडिकेशन है हमारी प्यारी योगी के लिए। हैप्पी बर्थडे योगी, हमेशा खुश रहो और जिंदगी भर मेरी पार्टनर इन क्राइम बनी रहो।
1: तो यही कहूंगा, हैप्पी बर्थडे टू यू योगी, बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी शुभकामनाएं जयपुर रेडियो के इस मंच पर आपको सभी ने प्रेषित की हैं, भेजी हैं, मेरे पास आई हैं, हाशी के पास आई हैं और आपके पास भी पहुंची हैं। उन सब ढेरों शुभकामनाओं का ये पूरा का पूरा आवाज का बंडल मैं आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से सेंड कर रहा हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल व्यास जी, आपकी ब्लेसिंग्स हमारे लिए एक गुरु के आशीर्वाद से कम नहीं है, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज आपने हमारे शो का आगाज किया है। और जब आगाज इतना सुंदर हो तो अंजाम की क्या परवाह, है ना?
1: उम्मीद है आप खुश होंगी इसे सुनकर, इसे जानकर, इसे देखकर। और हाँ, आज के प्रोग्राम में और क्या खास है, क्योंकि इससे बड़ी ये खास बात तो हो भी नहीं सकती।
0: जी व्यास जी बिल्कुल, बताइए क्या सीक्रेट आप बताना चाहते हैं हमारे जयपुर रेडियो डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के श्रोतागणों को आज के इस खास शो करो पात हाशी और योगी के साथ, योगी के बर्थडे पैश के सेलिब्रेशन के एपिसोड में।
1: लेकिन एक बात और, एक रहस्य, एक सीक्रेट मैं आज और ओपन करना चाहूंगा।
0: जी, और वो क्या है व्यास जी?
1: और वो ये कि एआई के टूल्स को, उसके प्रयोग को, उसके एक्सपेरिमेंट को योगी लेके आई है जयपुर रेडियो के इस मंच पर। तो मैं जब भी एआई की साकार रूप से स्वरूप तय कल्पना करता हूं तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि एआई जो है वो बिल्कुल योगी जैसी ही होगी। मेरी बात से आप जरूर सहमत होंगी डॉक्टर हाशी, क्या कहती हैं?
0: जी जी व्यास जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर ये एआई साक्षात होगी ना तो वो बिल्कुल हमारे योगी के जैसे ही होगी, बिल्कुल नटखट, चुलबुली और प्यारी सी। यस,
1: लेकिन आज ये एआई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही नहीं बल्कि एक ऐसी चीज, एक ऐसा स्वरूप, एक ऐसी एंकर जो चुलबुली है, बहुत प्यारी है और जब रेडियो की दुलारी है, उसका जन्मदिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एक बार फिर जयपुर रेडियो की ओर से, हम सब श्रोताओं की ओर से और मेरी ओर से सी ए योगी को कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। और इसी के साथ डॉक्टर हाशी और हम मिलके सुनते हैं और सुनाते हैं और करते हैं बात, कर लो बात इस गीत के साथ।
0: यस दोस्तों, आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना हमारी योगी के लिए। लेट्स रॉक एंड द पार्टी बिगिंस।

0: यस, वेलकम बैक दोस्तों। नमस्कार, सलाम और आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं करोपात हाशी और योगी के साथ आपके इस फेवरेट सेगमेंट में बॉलीवुड गॉसिप कॉर्नर।
1: बॉलीवुड गॉसिप कॉर्नर इज द टॉक ऑफ द नाइट।
2: यस, और आज का थीम है बर्थडे धमाका स्पेशल, क्योंकि बॉलीवुड में बर्थडे का अपना एक अलग ही स्वाद है।
0: वैसे दोस्तों, इतने देर से तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि आज हम योगी का बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना। इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस भी हैं और बड़ा मजा आ रहा है मुझे आज का ये स्पेशल शो उसके लिए होस्ट करते हुए। अच्छा, आज के बॉलीवुड बर्थडे के बीच में ये खास बर्थडे जो हमारी प्यारी योगी का है। जी हाँ, योगी की बर्थडे के बिना कैसे कंप्लीट हो सकता है हमारा बर्थडे स्पेशल गॉसिप कॉर्नर। तो दोस्तों, आज डबल सेलिब्रेशन है, बॉलीवुड का गॉसिप और योगी की बर्थडे बैश।
2: अरे अरे हशी, ये क्या कर रही हो लाइव रेडियो पे? सच में दोस्तों, इतना प्यार मिल रहा है आज, मुझे लगा मैं बस दूसरों के बर्थडे से गॉसिप करूंगी, पर यहाँ तो अपना बर्थडे भी सेलिब्रेशन का पार्ट बन गया। मैं दिल से सभी लिसनर्स का, अपनी टीम का और मेरी खास को-होस्ट हाशी का शुक्रिया अदा करती हूँ इतना प्यारा सरप्राइज देने के लिए और इस पूरे एपिसोड को इतना स्पेशल बनाने के लिए। मुझे महसूस हो रहा है जैसे मैं बॉलीवुड की खुद कोई बर्थडे गर्ल हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सबका प्यार ही मेरी सबसे बड़ी गिफ्ट है।
0: योगी, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो और भी कुछ सरप्राइजेस बाकी हैं। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको खुश देखकर, मेरा भी दिन बन गया। दोस्तों, आज डबल सेलिब्रेशन है, बॉलीवुड का गॉसिप और योगी की बर्थडे बैश।
2: बिल्कुल, और अब वापस चलते हैं अपने गॉसिप की दुनिया में, क्योंकि पार्टी तो अभी शुरू हुई है।
0: यस यस यस, बिल्कुल सही कहा। सबसे पहले बात करते हैं हमारे हैंडसम हंक विकी कौशल की। बर्थडे पे कतरीना का सरप्राइज, प्राइवेट याच पार्टी मुंबई कोस्ट पे और एक सीक्रेट गेस्ट भी था।
2: OMG हाशी, सीक्रेट गेस्ट, अब तो क्यूरियोसिटी डबल हो गई। वैसे सुना है कतरीना ने विकी को एक लिमिटेड एडिशन गिटार गिफ्ट किया। रोमांटिक वाइब्स, प्योर हाई लेवल पर, है ना?
0: हाय, गिटार और प्यार दोनों एक साथ। और गेस करो, अनन्या पांडे के बर्थडे बैश की भी हेडलाइंस बनी थी। थीम थी नियॉन ग्लो पार्टी, सब फ्रेंड्स ने नियॉन आउटफिट्स पहने थे, पूरा इंस्टाग्राम जैसे चमक रहा था।
2: और हाशी, मसालेदार बात ये है, पार्टी में एक सरप्राइज डांस फेस ऑफ भी हुआ था, अनन्या वर्सेस जानवी कपूर। और मुझे सोर्सेस ने बताया है कि जानवी स्टोल द शो विथ हर क्रेजी मूव्स।
0: फुल बॉलीवुड डांस बैटल। योगी, बॉलीवुड बर्थडे विदाउट लिटिल ड्रामा तो होता ही नहीं। सुना है एक फेमस एक्स कपल भी एक्सीडेंटली मिल गए पार्टी में और थोड़ी ऑकवर्ड मोमेंट भी कैप्चर हो गई।
2: और छोटी सी ब्रेकिंग गॉसिप भी, एक फेमस एक्स कपल का ऑकवर्ड एनकाउंटर हुआ अनन्या की पार्टी में। कौन, ये हम बताएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
0: अरे योगी, तुम कहीं मत जाओ, पार्टी तो अभी बाकी है, सिर्फ और सिर्फ करो बात हाशी और योगी के साथ। तो दोस्तों, मिलते हैं इसके अगले सेगमेंट में, लेकिन इस धमाकेदार गाने के बाद। ये समझ लीजिए ये मेरा डेडिकेशन है हमारी प्यारी योगी के लिए। हाय मेरी परम परम परम परम परम सुंदरी। चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: दोस्तों अब वक्त हो चला है हमारे स्पेशल सेगमेंट स्टार गेस्ट सेगमेंट का। वैसे इस सेगमेंट में हर हफ्ते हमारे शो में एक स्पेशल मेहमान आते हैं, लेकिन आज जबकि हम योगी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मेरे साथ मैंने इनवाइट किया है दो स्पेशल गेस्ट को। सबसे पहली मेहमान हमारे शो की फर्स्ट टाइम स्टार गेस्ट मिसेस रीना नाम्बियार ऑल द वे फ्रॉम मुंबई। वो हमारे GMF ऑफिशियल की को फाउंडर है, प्लस करोबात हाशी और योगी के साथ सिर्फ और सिर्फ जयपुर रेडियो में हमारे इस शो की क्रिएटिव डिजाइनर हेड भी है। अच्छा रीन्स, अब मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको इस शो में फिर से आकर कैसा लग रहा है? एंड व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट अवर व्हाट यू कॉल तारा, है ना, योगी, बताइए प्लीज।
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हाशी, जयपुर रेडियो पर वापस आकर दिल को बहुत खुशी हो रही है। आप सबका प्यार, अपनापन और इस प्लेटफॉर्म की पॉजिटिव एनर्जी, सब कुछ मुझे बहुत प्यारा लगता है। ऐसा लगता है जैसे अपने लोगों के बीच वापस लौट आई हूँ। अब योगिता के बारे में क्या कहें, योगिता चुलबुली नटखट सी जान, गुस्से में आए तो हिल जाए आसमान, पर प्यारी इतनी सब दिल हार जाए, मुस्कान उसकी सब पे छा जाए।
0: मुस्कान इसकी जो सब पे छा जाए, क्या बात है रीन्स, व्हाट अ वे टू एक्सप्लेन द पर्सनालिटी ऑफ योगी। अच्छा और कौन सी बात आपको योगी की पसंद आती है ये बताइए।
1: योगिता विदाउट ड्रामा इज लाइक चाय विदाउट मसाला, इम्पॉसिबल। फिर इतनी स्वीट बन जाती है कि हम उसकी शिकायत भी नहीं कर सकते।
0: अच्छा अब अच्छी बात तो आपने बता दी, अब उसकी कोई चीज जो आपको पसंद नहीं आती है, या नॉट एग्जैक्टली पसंद नहीं आती, या यू वांट हर टू चेंज और यू वांट हर टू मॉडिफाई दैट थिंग, मतलब कोई भी चीज जो वो इम्प्रूव या इम्प्रोवाइज कर सकती है, इसके बारे में कुछ है उसकी कोई क्वालिटी जो आप बता सकती हैं?
1: तहाशी, योगिता ब्रिंग्स लाइट इनटू एवरी रूम दैट शी वॉक्स इनटू। आई एडमायर हर काम स्ट्रेंथ, हर एवर स्माइलिंग प्रेजेंस एंड द वे शी लिव्स अदर्स। शी इज अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ ग्रेस एंड वार्मथ दैट मेक्स हर ट्रूली स्पेशल।
0: अच्छा रीन्स, अब अगला सवाल, योगिता के लिए आप कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहती हैं, मतलब उसका बर्थडे

0: Happy birthday, Yogita. God bless you.
1: Last but not the least, Rains, हमारे जयपुर रेडियो के श्रोताओं के लिए कोई मैसेज एज वेल एज हमारे बर्थडे गर्ल के लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें तो प्लीज प्लीज दीजिए।
0: जयपुर रेडियो के सभी सुनने वालों को बहुत प्यार। आज एक स्पेशल दिन है और मैं बहुत खुशी से आप सबके साथ हूँ। एक ह्यूज शाउट आउट अपने ड्रामा क्वीन योगिता को। हैप्पी बर्थडे। तुम्हारे बिना तो जिंदगी में मजा ही नहीं है। तुम हो तो हर दिन एक ब्लॉकबस्टर बन जाए। तुम्हारी एनर्जी और मस्ती के लिए थैंक्स। विश यू अ ईयर फुल ऑफ फन एंड जॉय। हैप्पी बर्थडे योगिता।
1: वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। चलिए दोस्तों, इतने प्यारे मैसेज के बाद हम सुनते हैं ये प्यारा गाना जो रीन्स हमारी योगी के लिए डेडिकेट करना चाहती है।

0: वेलकम बैक दोस्तों, और अब हमारे स्टार गेस्ट सेगमेंट के सेकंड स्टार गेस्ट इस स्पेशल शो में, जिसका नाम है करो बात हाशी और योगी के साथ ऑन बर्थडे स्पेशल। जी हाँ, हम योगी का बर्थडे मना रहे हैं, एंड हु बेटर देन आवर नेक्स्ट गेस्ट, जो यू कैन से योगी के बहुत करीबी दोस्त हैं, एंड इट्स माय ऑनर एंड प्लेजर टू वेलकम हिम ऑन आवर शो। तो तालियों के साथ वेलकम कीजिए डॉक्टर मनीष कल्ला का। वेलकम डॉक्टर।
1: Well, thank you very much for inviting me on this extremely special show for Yogi and for her birthday, and I cannot be more proud than this particular moment. So thank you very much for inviting me on this particular program. Thanks a lot.
0: अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप बताइए कि आपको हमारे इस शो में आकर कैसा लग रहा है, and what better than a special show on Yogita on her birthday? How are you feeling? और आज आप आपके ख्यालात क्या, आपके मन में क्या ख्याल आ रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए।
1: Well, as per my knowledge and experience, a special person always deserves a special moment, and so is Yogi. And if today we are celebrating her birthday as a special gesture

0: What a beautiful song, Dr. Saab. बहुत ही प्यारा गाना है. अच्छा, अब डॉक्टर मनीष, आप मुझे ये बताइए कि योगिता के साथ आपकी सबसे पहली मुलाकात, या हाउ डिड यू बोथ नो ईच अदर, कैसे आप दोनों मिले या कैसे आप दोनों में फ्रेंडशिप हुई, ये अगर आप बताना चाहते हैं तो.
1: Well, it's an interesting story during those Bhopal Radio days. So, in Bhopal Radio days, people, they used to have their partners. So, and we used to have a program on a theme, based on a theme. So, that's where me and she, we met. So, we had our first conversation and it was pretty formal. So, from there, it all started.
0: अब देखते हैं, आप योगिता को कितना जानते हैं. अच्छा, मेरे इस सवाल का जवाब जस्ट अ सिंगल वर्ड में देना है आपको. योगी's फेवरेट कलर
2: ब्लैक.
0: योर नेक्स्ट क्वेश्चन, हर फेवरेट स्ट्रीट फूड
1: एट एनी गिवन डे इट हैज टू बी जस्ट पानी पूरी.
0: ओके, अब अगला सवाल, हर फेवरेट पॉप सिंगर.
1: Well, she's not that jazzy, but she do like the composition of Arijit Singh and Rahman Malik.
0: As a friend, how do you rate her from 1 to 10?
1: 11.
0: Yogi ki kaun si baat sabse achhi hai? Sabse achhi.
1: To begin with, her laughter and the way she takes care of everyone and the kind of extra effort she always makes in order to keep the friends and the relationships intact. It is something, a rare commodity which is not found with everyone, and by all means, she is blessed with it.
0: Achha, uska favorite Bollywood actor kaun sa hai, if you know?
1: शाहिद कपूर.
0: क्या बात है, क्या बात है. मजा आया. आई थिंक आपको भी बड़ा मजा आया ये छोटा सा गेम खेलकर, जिसको हम कहते हैं रैपिड फायर राउंड. जी हाँ, अब डॉक्टर साहब, आई होप यू एंजॉयड बीइंग ऑन दिस शो ऑन करो बात हाशी और योगी के साथ. आपकी आवाज, आपकी पहचान. हैप्पी बर्थडे टू योगी स्पेशल. अच्छा, अब डॉक्टर साहब, आप योगी के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं?
1: Well, she is full of energy and positivity, so my only message to her is to be vivacious, be strong, because the world out there is too cunning. But yes, I know you are strong and you'll rock in any ways of life. Wherever you go, you're definitely going to conquer all the atrocities and audacities, and you'll overcome all the challenges and to be on the top of it. And I would yet again like to reiterate and thank the listeners and the fans of Jaipur Radio, and I'm proud to be on this particular program and on this special occasion to wish my bestie the best birthday ever. So thank you, Jaipur Radio, and keep listening to Karo Baat Hashi and Yogi ke saath. And once again, happy birthday, Sisi.
0: That was very, very sweet of you, Dr. Sam. I hope you enjoyed our show as much as I enjoyed being with you. फिर एक बार मैं आपको बुलाऊंगी हमारे इस मंच पर. आज के लिए बस इतना ही. बट यस, योर विशेस, योर ब्लेसिंग्स आर एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट. और मुझे यकीन है कि योगी को आज हमारे दोनों स्टार गेस्ट से मिलकर और सुनकर बड़ा ही अच्छा लगा होगा. वंस अगेन, मैनी मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे योगी. एंजॉय योर बर्थडे एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग.

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं करो बात हाशी और योगी के साथ। और अब हम लेकर आए हैं एक ऐसा सेगमेंट जो दिल को ले जाता है सीधा पिछले जमाने में।
1: जी हाँ, वेलकम टू यू ऑल्सो योगी। अच्छा, ये हमारा फेवरेट सेगमेंट है, नॉस्टैल्जिया सेगमेंट, जहाँ यादें ताजा होती हैं और दिल खुश हो जाता है उन गीतों को सुनकर जो हमारे दिनों का साउंड ट्रैक हुआ करते थे।
0: और आज का नॉस्टैल्जिया पिक है एक ऐसा गाना जो सिर्फ एक सॉन्ग नहीं, एक पूरा इमोशन था। कॉलेज की कैंटीन से लेकर रोड ट्रिप्स तक हर जगह बजता था।
1: जी हाँ दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं यूफोरिया का आइकॉनिक ट्रैक फिर धूम।
0: वो धूम, वो मस्ती, वो केयरफ्री वाइब, ये गाना सुनते ही ऐसा लगता है जैसे फिर से कॉलेज का टाइम आ गया हो। यूनिफॉर्म्स, बंक क्लासेस और दोस्तों के साथ वो बिना वजह की हंसी।
1: बिल्कुल योगी, और सबसे खास बात ये है कि फिर धूम के जो कंपोजर एंड सिंगर है पलाश सेन, वो आपके भी फेवरेट है ना? तो एक तरह से ये पूरा शो आपको डेडिकेटेड है, आपके बर्थडे बैश को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो क्यों ना हम नॉस्टैल्जिया में भी पलाश सेन के इस सॉन्ग को सेलिब्रेट करें। फिर धूम ने हमें सिखाया था कि चाहे कुछ भी हो, लाइफ में फिर से धूम मचानी चाहिए, फिर से जीना है।
0: तो चलिए दोस्तों, आंखों को बंद कीजिए, मुस्कान लीजिए और ले चलिए खुद को एक और दुनिया में जहां था सिर्फ धूम, दोस्ती और ड्रीम्स।
1: Yes, here we go. फिर धूम by Euphoria, सिर्फ और सिर्फ करो बात हाशी और योगी के साथ, जिसमें हम मना रहे हैं बर्थडे बैश ऑफ माय डियर फ्रेंड योगी।
0: कैसे भूलेगी मेरा नाम,

0: भगवान बुरी नजर से बचाए आपको, चांद सितारों से सजाए आपको, गम क्या होता है ये आप भूल ही जाओ, भगवान जिंदगी में इतना हंसाए आपको। हैप्पी बर्थडे योगी। जी हाँ दोस्तों, अब हम आ गए हैं हमारे आखिरी सेगमेंट की ओर, जो है डेडिकेशंस वाला सेगमेंट। और दोस्तों, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी कोहोस्ट योगी के बर्थडे बैश पे उनके लिए, उनके दोस्तों ने और हमारे सभी सुनने वालों ने, जयपुर रेडियो के खास श्रोतागण, उन्होंने भी इतने सारे मैसेजेस एंड डेडिकेशंस भेजे हैं। जी हाँ, तो क्यों ना हम वो सारे डेडिकेशंस सुनते हैं एक के बाद एक, है ना योगी? चलिए सुनते हैं सारे डेडिकेशंस। सबसे पहले मनोज जी, देखते हैं मनोज जी योगी के बर्थडे पर क्या कहना चाहते हैं।
1: अच्छा जी,
2: योगिता जी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। मैं कामना करता हूं कि आपका ये दिन आपके लिए खुशियों और हंसी से भरा रहे, आपका दिन उतना ही शानदार हो जितना कि आप हैं, और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां, सफलताएं और प्यार हो। हैप्पी बर्थडे। योगिता जी, मैं आपकी कुंडली के बारे में कुछ अच्छी जानकारी देना चाहता हूँ। आपकी कुंडली बहुत उत्तम कुंडली है, आपकी स्मरण शक्ति बहुत उत्तम है, आप आवश्यकता से अधिक उदार हैं, और ये उदारता आपके काम में भी झलकती है, आपके पहनावे में, आपके निवास स्थान में। आप व्यक्तिगत रूप से आकर्षक भी हैं, शालीन हैं और सुलझे हुए हैं। आप बड़े दिल वाली हैं और खुले दिमाग की भी हैं। आप विपरीत परिस्थितियों में भी विचारमान रहती है। आप जन्म से ही, आपके अंदर एक लीडरशिप के गुण है, और आप दिखावा पसंद नहीं करती। आपका दृष्टिकोण व्यापक है और छोटी छोटी बातों में आप परवाह नहीं करते। आप एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं और ऊंचे लक्ष्य रखती हैं। आपका एम हमेशा ऊंचा रहता है, और अगर आप लक्ष्य से दूर रह जाते हैं तो आप उसके लिए संघर्षशील भी रहते हैं। भगवान आपको सफलता दे, आपके जीवन को सुखमय बनाए, सफल बनाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ।
1: थैंक यू सो मच मनोज जी, आपकी बातों में दिन दिन बना दिया मेरा। थैंक यू सो मच।
3: हैप्पी बर्थडे योगिता, विश यू ऑल द बेस्ट।
1: शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
4: हेलो, हाय हाय हाय, मैं हूँ तुम्हारा से तुम्हारा अनिरुद्ध, लेकिन योगिता तुम्हारे लिए अनी, और तुम हो मेरी योगी और मैं हूँ तुम्हारा अनी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर योगिता, सॉरी योगी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत खुशियाँ तुम्हें मिले, तुम्हारे सारे अरमान पूरे हों, एंड यू अ वेरी स्पेशल पर्सन। हमेशा ऐसी खास रहना और हमेशा ऐसी मुस्कुराते रहना, ठीक है? हैव अ ग्रेट डे टुडे। एंड हाँ, मैं खास हाशी को थैंक यू बोलना चाहूंगा, जिसकी वजह से उसने मुझे याद दिलाया कि तुम्हारा बर्थडे है। शी इज अ वेरी स्पेशल पर्सन, उसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और तुम भी कहना कि उसने ये सरप्राइज देने का ख्याल उसी का था। और सुभी, क्योंकि आरजे हूँ तो मैं सब कुछ अपने गानों के जरिए ही बोलता हूँ, तो तुम्हारे लिए ये मेरा स्पेशल हैप्पी बर्थडे वाला गाना। अब ये बात सोचो मैं गाना गाऊंगा बार बार ये दिन आए, नहीं नहीं भैया, वो हैप्पी बर्थडे वाले गाना मैं नहीं गाता हूँ भैया। हम तो रोमानी अंदाज वाले बंदे हैं, तो रोमानियत वाला ही गाना सुनाएंगे आपके लिए।
5: हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते योगिता उर्फ योगी तुम्हारे बिना।
4: हैप्पी बर्थडे।

0: made my day. Thank you.
1: Wow, that's so sweet of you, Annie. Actually, हमारे आरजे अनिरुद्ध इतने प्यारे हैं, सबके दिल के इतने करीब है कि जब वो इतनी प्यारी प्यारी बातें हमारे लिए बोलते हैं ना, तो बड़ा मजा आता है. थैंक्स अ लॉट एनी, थैंक्स अ लॉट. अब चलिए आगे सुनते हैं जीएमएफ के कुछ खास मेंबर्स योगी के लिए क्या कहना चाहते हैं.

0: हैप्पी बर्थडे योगी, कीप सिंगिंग, स्टे ब्यूटीफुल, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे।
1: हैप्पी बर्थडे योगी, दिस इज दीप्ति फ्रॉम GMF ग्रुप। आज तुम्हारा जन्मदिन है, ईश्वर से मैं यही कामना करती हूँ कि तुम्हारे जीवन में खुशियाँ रहें और तुम्हारे सारे सपने हमेशा सच हों। तुम ऊंचाइयों तक पहुँचो, अपने जीवन में जो भी करना चाहती हो उसे पाओ और खूब खुश रहो। थैंक यू।
2: हाय योगी, हैप्पी बर्थडे, दिस इज इंदु झा हियर, विशिंग यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। लव यू योगी।

0: हेलो योगिता, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय योर डे, गाते रहो, मुस्कुराते रहो, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: हैप्पी बर्थडे योगी, दिस इज कोमल हियर, विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे म्यूजिकल।
2: हे योगी, दिस इज मनी हियर, विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं।
3: शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
4: हैप्पी बर्थडे योगी, दिस इज मनीष हियर, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, स्टे ब्लेस्ड।
5: योगिता जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां, हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, गाती रहें, गुनगुनाती रहें, मुस्कुराती रहें। मैनी मैनी मोर।
6: हैप्पी बर्थडे योगी जी, This is Satin here, wishing you very happy birthday. Many many happy returns of the day. God bless you.
7: Tum jiyo hazaro saal saal ke din ho 50,000.
8: जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको योगिता जी। हमेशा खुश रहिए, फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए। मैं शमीम अख्तर अमरोहा से।
9: हैप्पी बर्थडे डियर योगी, विशिंग यू अ वंडरफुल ईयर अहेड,
10: विशिंग यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे दैट स्पार्कल्स विद जॉय, ग्लोज विद सक्सेस एंड रेडिएट्स विद इमेंस हैप्पीनेस। हैवी ब्लिसफुल बर्थडे सेलिब्रेशन योगी जी, गॉड ब्लेस यू। हमेशा हंसते गाते मुस्कुराते रहिए।
11: आप सब लोग कितने अच्छे हो,
12: कितने प्यारे प्यारे मैसेजेस दिए। नहीं, GMF ऑफिशियल और GMF के सारे मेंबर्स ने आपके लिए योगी। चलिए सुनते हैं उनकी तरफ से ये प्यारा सा गाना।

0: तो योगिता मेरी छोटी सी प्यारी सी बिटिया रानी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिंदगी में बहुत सारी तरक्की करो, बहुत आगे बढ़ो, बहुत नाम कमाओ और अपना और अपने घर का और अपने परिवार का सबका नाम रोशन करो। तुम्हारे ऊपर सबको बहुत विश्वास है और वी ऑल लव यू। ठीक है बेटा, अपना जन्मदिन खुशी खुशी और मस्ती से मनाओ जैसी कि तुम्हारी आदत है। ओके, many many happy returns of the day once again.
1: Yogi, wishing you a very happy birthday. Enjoy your day. Stay blessed always, dear.
2: Thank you so much from bottom of my heart.
3: Yogi, वार्ता साझा खूब खूब खूब खूब शुभेच्छा। तुझे सगळे स्वप्न पूर्ण हो हित आमच्याकडून प्रभु चरणी प्रार्थना। तुझ्या पुढील आयुष्यासाठी व भावी वाटचालीसाठी आमच्याकडून खूब खूब शुभेच्छा। तुझ्या सर्व मनोकामना पूर्ण हो। Wish you a very heavenly happy birthday.
4: Hey Yogi ji, happy birthday. May you have many many more and may you live long, healthy and in abundance. Stay blessed, Pradeep here.
2: Shukriya, shukriya, shukriya.
5: Tu mera dil, tu meri jaan, oh I love you Yogi.
6: तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे प्यारे बच्चे, और जिंदगी में हमेशा तुम सही के साथ रहती हो, वैसे ही रहना। एंड थैंक्स फॉर ऑल योर लव सपोर्ट एंड आई ऑलवेज विश यू बेस्ट ऑफ हेल्थ, ग्रेट सक्सेस इन योर करियर एंड एज ऑलवेज लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स ऑल द वे फ्रॉम योर स्मूल डैड। Take care of yourself. God bless you, bachche. Love you.
2: Wow, क्या बात है।

0: हेलो योगिता, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। एंड हमारी सिर्फ एक ही बार बात हुई है, बट मुझे लगा नहीं कि हमने पहली बार बात की है। और तुम्हारे साथ जो शो रहा मेरा वो बहुत अमेजिंग था। मैं इसे हमेशा याद रखूंगी और हम हमेशा इसी तरह से बात करते रहेंगे और जुड़े रहेंगे। और आप इसी तरह से बहुत आगे बढ़े और खूब सारे शो करें। माई बेस्ट विशेस टू यू। माय डे, थैंक यू।
1: हे योगी, विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे। मे गॉड ब्लेस यू। आपकी सारी मनोकामना जल्दी ही पूर्ण हो जाए और एंजॉय द पार्टी, एंजॉय द बर्थडे। थैंक यू।
0: थैंक यू सो मच चिराग जी।
2: हाय योगी जी, इट्स योर बर्थडे टुडे। आई विश यू अ वेरी वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।
0: दैट्स सो स्वीट, थैंक यू सो मच।
3: हाय योगी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप दिस ईयर अहेड इज द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ।
0: शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
3: वॉजंट दैट सो स्वीट? इतने सारे मैसेजेस एंड डेडिकेशंस सुनने के बाद मुझे भी लगने लगा है कि योगी, आप सबके दिल के कितने करीब हो। तो क्या कहना चाहते हैं आप योगी? लेट्स हियर फ्रॉम यू।
0: आज जो खुशी मेरे दिल में है वो लफ्जों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। मेरे बर्थडे को इतना ब्यूटीफुल, मेमोरेबल और दिल से स्पेशल बनाने के लिए मेरे सभी फैंस, दोस्तों, जयपुर रेडियो की द होल टीम, मेरे रेडियो शो के हर एक साथी, मेरी सोलफुल को होस्ट हाशी और मेरे हर अपने से मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आप सबको एक प्यारा सा सलाम और दिल से शुक्रिया। जब इतना प्यार, इतनी दुआएं और इतना साथ मिलता है, सब समझ जाता है कि असली दौलत तो रिश्तों में ही छुपी होती है। हर एक विश, हर एक सरप्राइज, हर एक स्माइल, इन सब ने मेरे दिन को इतना रोशन कर दिया है कि मैं क्या ही बताऊं। मुझे महसूस हुआ कि मैं कितनी लकी हूँ। आप जैसे लोग, इतने सारे प्यार करने वाले लोगों को अपनी जिंदगी में पाकर ऐसे ही प्यार और साथ बना रहे, मैं हमेशा आपके इस प्यार और ब्लेसिंग्स के लिए शुक्रगुजार रहूंगी। और आप सब के लिए एक छोटी सी शायरी। जिंदगी के सफर में कई लोग मिल जाते हैं, पर हर रिश्ता दिल से नहीं निभाते हैं। जो छू जाए रूह को बस एक मुस्कान से, वो आप जैसे अपने ही तो असली खजाने होते हैं। दिल से थैंक यू सबको। आप हो तो मैं हूँ, विथ ऑल माई लव, लाइट एंड एंडलेस ग्रेटिट्यूड। थैंक यू
3: दोस्तों। अब इसी के साथ हमारे शो का दी एंड होने आया है, लेकिन मैं आप सबसे ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि आज का जो बर्थडे स्पेशल था वो एक खास इंसान के लिए था, जो करो बात हाशी और योगी के साथ कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्तिमत्व है। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, अ वेरी वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू योगी। एंड दोस्तों, आप सभी हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं या किसी को कुछ डेडिकेशन देना चाहते हैं या आप अपने शो का प्रमोशन करना चाहते हैं, अपना प्रमोशन करना चाहते हैं, तो इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और हमारे पेज करो बात हाशी और योगी के साथ सिर्फ और सिर्फ जयपुर रेडियो को फॉलो कीजिए। और जी हाँ, जयपुर रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि जयपुर रेडियो है तो हम सब हैं। तो आइए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक प्यारा सा गाना सुनते हैं हमारी योगी के लिए। एंड वंस अगेन, मैनी मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड शब्बा खैर। अ वेरी वेरी वेरी स्वीट गुड नाइट टू ऑल ऑफ।

डाइसेप्ट हर्बल शैम्पू एंड कंडीशनर, काले अंगूर के रस, शहद, आंवला, नीम, तुलसी और शिकाकाई के गुणों से भरपूर, बालों को मजबूत और चमकदार बनाए, आपके बालों को झड़ने से रोके, बाल बने मुलायम, रेशम से लहरा

मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा का ये स्पेशल एपिसोड लेके मैं आरजे भूमिका आ गई हूँ जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चु रानू 16 के साथ। आज का ये एपिसोड स्पेशल इसलिए है

आप इस गीत के मुखड़े को सुनने के बाद तो समझ ही गए होंगे कि हम इस एपिसोड को स्पेशल क्यों कह रहे हैं। हमारा इशारा अमर गायक इमॉर्टल वॉइस मोहम्मद रफी साहब के बर्थडे की ओर है। आज के इस पहले गीत में अर्चू रानू यानी अर्चना अग्रवाल का साथ दे रहे हैं अनिल शर्मा।

एक ऐसा सिंगर जो न केवल बॉलीवुड को पूरी तरह एक मुकम्मल मुकाम तक पहुंचाने में सफल रहा, बल्कि इस यूनिवर्स को एक ऐसी आवाज दे गया जिसको सुनकर हम ईश्वर, भगवान या अल्लाह की आवाज की कल्पना के नजदीक पहुंच जाते हैं। आज के इस एपिसोड में आवाज के इस सम्राट को अपना स्वर नमन दे रही थी अर्जुन रानू 16 और आपका साथ दे रहे थे अनिल शर्मा 1961। और अब आंखों में काजल है, काजल में मेरा दिल है। किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए इस गीत को इस मंच पर लेकर आए हैं अर्जुन रानू के संग सोनी शिवकुमार।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा, और जयपुर रेडियो बार बार ये ही कहता है आपकी आवाज आपकी पहचान। आवाज की इस पहचान को कोई मिटा नहीं सकता, वो सदा हमारे साथ रहती है, संग रहती है। और इस मिलन गीत में अपनी आवाज के साथ हमारे संग हैं अर्चु रानू 16। आपके साथ स्वर में स्वर मिला रहे थे सोनी शिव कुमार। एक बार फिर सोनी शिव कुमार कह रहे हैं, मेरे प्यार में मेरे इंतजार में सच सच कहो तुमने क्या किया, कभी भूला कभी याद किया।

और हम भी सच सच बता रहे हैं आपको। आप सुन रहे हैं मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा, आरजे भूमिका के साथ। और मेरे साथ हैं जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चू रानू 16। इस प्रोग्राम में हम आपको ये भी बता देते हैं कि जिन सिंगर्स ने वर्ष 2024 में अर्चू रानू यानी अर्चना अग्रवाल के साथ इस मंच पर सॉन्ग गाए हैं, वो सब सिंगर्स अपना नाम पंजीकृत करवा सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9352784724 पर हमें मिले फीडबैक के आधार पर आपकी रेटिंग तय की जाएगी। आइए सुनते हैं ये शॉर्ट वर्जन गीत, जिसमें अर्चू रानू का साथ दे रहे हैं अजय देव मुनमुन।

अजय देव मुनमुन साथ दे रहे थे अर्जुन रानू का इस गीत में जिसे आपने अभी अभी सुना। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। अपने गीतों के साथ और अगले गीत में अर्जुन रानू के साथ आ गए हैं धनंजय आर्य।

जिसका जितना हो आंचल उसको सौगात उतनी मिलेगी। और इसके संग हम ये बात जोड़ना चाहेंगे कि आंचल का माप हो सकता है, लेकिन आवाज की पहुंच को कोई माप नहीं सकता, जान नहीं सकता। इसलिए हम कहते हैं गाए जा गीत मिलन के, क्योंकि जीवन हमारा सीमित है, आवाज की कोई सीमा नहीं है। इस मंच पर अर्जुन रानू के संग आ गए हैं जीवन की सुरीली दास्तां समझाने और गाने फनी भूषण, अर्जुन रानू के संग।

ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो जीवन की रीत है। ये जीवन है, जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। इस गीत में साथ दे रहे थे अर्जुन रानू का फनी भूषण। और अब राजा रानी क्या कह रहे हैं अपनी सुरीली आवाजों में, किशोर फॉर यू आए हैं अर्जुन रानू के संग इस शॉर्ट वर्जन में।

राजा रानी की प्यार की कहानी हमने सुनी अर्जुन रानू और किशोर फॉर यू की जुबानी इस गीत में, और इस सुरीले से शॉर्ट वर्जन के साथ ही जयपुर रेडियो के इस मंच से मैं आरजे भूमिका आपको एक बार फिर बतला देती हूँ इस मंच के नंबर। हमारे नंबर हैं 9352784724। इस नंबर पर आप अपना सिंगिंग का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और हमारे लिसनर्स अपना फीडबैक दे सकते हैं। आज की ये सुरीली सौगात सुपर सिंगर अर्जुन रानू के संग यहीं तक। आरजे भूमिका को विदा दें। नमस्कार।

बहुत शुक्रिया आरजे भूमिका। और इसके बाद अब आ गए हैं हमारे इस मंच के मेल सिंगर अनुराग, और अनुराग लेके आए हैं अपनी सुरीली आवाज में अपने गाए हुए कुछ गीत। आइए शुरुआत करते हैं, सुनते हैं आपका ये पहला गीत।

प्यार मांगा है तुम्हें से ना इनकार करो। और ये आवाज रही हमारे सुरीले सिंगर अनुराग की। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा का ये खास एपिसोड। हमारे संग है अर्चुरानो 16 और अनुराग सिंगर के रूप में। आइए सुनते हैं अगला गीत अनुराग की आवाज में।

0: दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, और यदि गीतों से प्यार हो जाए, बेशुमार हो जाए, तो आप जयपुर रेडियो पर आ जाएं। यही कह रहे हैं अनुराग, हमारे आज के मेल सिंगर। आपकी आवाज, आपकी पहचान और बहुत सारे तकनीकी कारणों के वजह से हम अनुराग से यही अनुमति लेंगे और जारी रखेंगे प्रोग्राम। भूमिका आज के सिंगर अर्चुरानू के संग।
1: और जयपुर रेडियो बार बार ये ही कहता है, आपकी आवाज, आपकी पहचान। आवाज की इस पहचान को कोई मिटा नहीं सकता, वो सदा हमारे साथ रहती है, संग रहती है। और इस मिलन गीत में अपनी आवाज के साथ हमारे संग हैं अर्चू रानू 16। आपके साथ स्वर में स्वर मिला रहे थे सोनी शिव कुमार। एक बार फिर सोनी शिव कुमार कह रहे हैं, मेरे प्यार में, मेरे इंतजार में, सच सच कहो तुमने क्या किया, कभी भूला कभी याद किया।

और हम भी सच सच बता रहे हैं आपको। आप सुन रहे हैं मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा, आरजे भूमिका के साथ। और मेरे साथ हैं जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चुल रानू 16। इस प्रोग्राम में हम आपको ये भी बता देते हैं कि जिन सिंगर्स ने वर्ष 2024 में अर्चुल रानू यानी अर्चना अग्रवाल के साथ इस मंच पर सॉन्ग गाए हैं, वो सब सिंगर्स अपना नाम पंजीकृत करवा सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9352784724 पर हमें मिले फीडबैक के आधार पर आपकी रेटिंग तय की जाएगी। आइए सुनते हैं ये शॉर्ट वर्जन गीत, जिसमें अर्चुल रानू का साथ दे रहे हैं अजय देव मुनमुन।

अजय देव मुनमुन साथ दे रहे थे अर्जुन रानू का इस गीत में जिसे आपने अभी अभी सुना। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। अपने गीतों के साथ और अगले गीत में अर्जुन रानू के साथ आ गए हैं धनंजय आर्य।

जिसका जितना हो आंचल उसको सौगात उतनी मिलेगी। और इसके संग हम ये बात जोड़ना चाहेंगे कि आंचल का माप हो सकता है लेकिन आवाज की पहुंच को कोई माप नहीं सकता, जान नहीं सकता। इसलिए हम कहते हैं गाए जा गीत मिलन के, क्योंकि जीवन हमारा सीमित है, आवाज की कोई सीमा नहीं है। इस मंच पर अर्जुन रानू के संग आ गए हैं जीवन की सुरीली दास्तां समझाने और गाने फनी भूषण, अर्जुन रानू के संग।

0: सर दर्द, ओह मेरी कमर, और ये बंद नाक और जुखाम, कौन दिलाएगा इन सबसे राहत?
1: अरे इन सबसे राहत दिलाएगा JMD का बामवेदा, जिसके आयुर्वेदिक गुण सर दर्द, बदन दर्द और सर्दी को दूर भगाएं।
2: JMD, द वंडर ऑफ आयुर्वेदा।
3: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले, हल्ले हल्ले दिदिन तिनक दिन, दिदिन तिनक दिन, अरे हल्ले हल्ले क्यों? जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त, और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीत।

0: need to be sad now. You can do all of this on a click away through Jaipur Radio. Send messages and dedicate your favorite songs to your loved ones on your favorite program. Your voice, your identity. So what are you waiting for? Download Jaipur Radio app through Play Store and tune into your favorite songs. Celebrate your special occasion only on your own radio, Jaipur Radio.
1: आओ झूमे गाए आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो आपकी आवाज आपकी पहचान
2: संगीत जगत से जुड़े सभी संगीत प्रेमियों को मुकेश चोपड़ा का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों आज की शाम कुछ खास है क्योंकि हम आज एक ऐसे गायक के बारे में बात कर रहे हैं जिनको हम सब सुरों के बादशाह के नाम से भी जानते हैं जी हाँ सही पहचाना वो कोई और नहीं हम सबके चहेते मोहम्मद रफी जी हैं रफी जी का जन्म 1924 में अमृतसर के कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था और उनको बचपन में सब फिंकू के नाम से पुकारा करते थे उन्होंने कई भाषाओं में गाने गाए जैसे कि असमीस कोंकणी भोजपुरी तेलुगु मैथिली उर्दू गुजराती पंजाबी मराठी बंगाली जैसी भाषाएं और तो और उन्होंने इंग्लिश फारसी अरेबिक सिन्हला डच स्पैनिश जैसी भाषाओं में भी गाने गाए उन्होंने हर तरह के गीत भी गाए जैसे कि भक्ति गीत शास्त्रीय गीत गजल कव्वाली देशभक्ति गीत मस्ती भरे गीत और दर्द भरे गीत तो फिर आज के गीतों के कारवां का आगाज करते हैं 1977 की फिल्म हम किसी से कम नहीं से जिसमें ऋषि कपूर जी थे इस फिल्म को बेमिसाल संगीत से सजाया आरडी बर्मन जी की धुनों ने और सुरों को लफ्जों से सजाया मजरू सुल्तानपुरी जी ने इस फिल्म के सारे गाने खूब धूम मचा रहे थे पर उस साल का फिल्म फेयर का बेस्ट सिंगर अवार्ड मिला मोहम्मद रफी जी को और साथ ही साथ उसी गाने के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला तो फिर आइए उसी गीत को सुनते हैं मेरी और विद्या प्रकाश जी की मधुर आवाज में

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1980 की फिल्म आप ऐसे तो न थे से है, जिसमें राज बब्बर और रंजीता कौर थीं। इस फिल्म का जादू भरा संगीत दिया उषा खन्ना जी ने और गीत लिखे निदा फाजली जी ने। क्यों ना इसी जादू भरे गीत को सुना जाए विद्या जी और बिंदु जी की मधुर आवाज में।

क्या खूब पेशकश की। आइए अगला गीत सुनते हैं 1973 की फिल्म एक नारी दो रूप से, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा और रश्मि धवन थी। इस फिल्म में मात्र 4 गाने थे और सारे के सारे गाने सुपरहिट हुए। इस फिल्म का मधुर संगीत दिया गणेश जी ने और बेमिसाल शब्दों से सजाया असद भोपाली जी ने। चलिए इसी फिल्म के एक बेमिसाल गीत को सुनते हैं MD त्यागी जी की मधुर आवाज में।

कहिए, थी ना ये एक शानदार पेशकश। दोस्तों, चलिए एक खेल खेलते हैं, पर उसके लिए आप सबको पहले अपनी आंखें बंद करनी होंगी। जी हाँ, आंखें बंद। ये ना सोचिएगा कि मैं देख नहीं रहा, आंखें बिल्कुल बंद। अब अगर मैं आप सबको इस मौसम में कश्मीर की बर्फीली वादियों में ले चलूं तो कैसा रहेगा? चारों तरफ बर्फीली वादियां, बर्फीले पहाड़ और ये मस्त सर्द हवा। क्या कहा आपने? कोई फिल्म का नाम याद आया? सही कहा, कश्मीर की कली। ये एक ऐसी फिल्म थी जो कश्मीर की बर्फीली वादियों में शूट की गई थी। इस फिल्म के मस्ती भरे गीत लिखे SH बिहारी जी ने और उतना ही मस्ती भरा संगीत दिया OP नैयर जी ने। आइए इसी मस्ती भरे फिल्म के मस्ती भरे गीत को सुनते हैं जूही जी और सज्जाद जी की मधुर आवाज में।

कैसी लगी ये बर्फीले पहाड़ों की सैर? कश्मीर की कली एक ऐसी फिल्म थी जिसमें शम्मी कपूर के सभी गीतों को स्वर दिया मोहम्मद रफी जी ने, और सारे के सारे गाने खूब सुपरहिट हुए। चलिए एक और मस्ती भरा गीत सुनते हैं गायत्री जी और डॉक्टर आदेश जी की मधुर आवाज में।

कहिए कैसी रही ये मस्ती भरी पेशकश। चलिए अगला गीत सुनते हैं 1973 की फिल्म धर्मा से, जिसमें प्राण, नवीन निश्चल और रेखा थी। इस फिल्म का बेहद खूबसूरत संगीत दिया मास्टर सोनिक और ओम प्रकाश सोनिक जी ने, और इस फिल्म के गीत लिखे वर्मा मलिक जी ने। आइए इसी फिल्म का एक मस्ती भरा गीत सुनते हैं अंजलि दत्त के और संजीव जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अगला गीत जो आप सुनेंगे वो 1967 की सुपरहिट फिल्म तीसरी मंजिल से है, जिसमें शमी कपूर के साथ आशा पारिक थी। इस फिल्म के सभी गीतों में मोहम्मद रफी जी ने शमी कपूर जी को अपनी आवाज दी और सारे के सारे गाने सुपरहिट हुए। इस फिल्म के मस्ती भरे गीत लिखे मजरू सुल्तानपुरी जी ने और उन्हीं गीतों को संगीत से सजाया आरडी बर्मन जी ने। आइए इसी फिल्म का एक खूबसूरत गीत सुनते हैं संगीता जी और कविता जी की मधुर आवाज में।

कहिए, थी ना ये एक खूबसूरत प्रस्तुति। अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1961 की फिल्म जंगली से है, जिसमें शम्मी कपूर जी के साथ सायरा बानू थी। इस फिल्म ने कई फिल्म फेयर अवार्ड जीते और हर एक गीत सुपरहिट हुआ। इस फिल्म के शानदार गीतों में हसरत जयपुरी जी की कलम का जादू देखते ही बनता है और उन्हीं गीतों को मस्ती भरे सुरों में सजाया शंकर जयकिशन जी ने। आइए इसी फिल्म का एक मस्ती भरा गीत सुनते हैं डॉक्टर तरुणा जी और रामकृष्ण जी की मधुर आवाज में।

क्या शानदार गीत पेश किया। अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1967 की फिल्म अदालत से है, जिसमें प्रदीप कुमार जी के साथ नरगिस थी। इस फिल्म के सारे गाने इतने मशहूर हुए कि आज तक गुनगुनाए जाते हैं, और इस फिल्म का संगीत दिया मदन मोहन जी ने, और इस फिल्म के गीत लिखे राजेंद्र कृष्णन जी ने। आइए इसी फिल्म का एक मद भरा गीत सुनते हैं श्रुति जी और संजय जी की मधुर आवाज में।

0: वाह, बेहतरीन प्रस्तुति। दोस्तों, ख्वाहिश तो यही है कि आपके साथ जुड़े रहें, पर समय हमें रोक रहा है। वक्त है आपसे विदा लेने का। आशा करता हूँ कि आज की पेशकश आपको पसंद आई होगी। जाते जाते आओ झूमे गाएं ग्रुप की ओर से मैं मुकेश चोपड़ा आप सभी का और जयपुर रेडियो का धन्यवाद करता हूँ।
1: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले दिदिन तिनक दिन दिदिन तिनक दिन। अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो।

0: Oh no, no need to be sad now. You can do all of this on a click away through Jaipur Radio. Send messages and dedicate your favorite songs to your loved ones on your favorite program. Your voice, your identity. So what are you waiting for? Download Jaipur Radio app through Play Store and tune into your favorite songs. Celebrate your special occasion only on your own radio, Jaipur Radio.
1: उफ, ये सर दर्द, ओह मेरी कमर, और ये बंद नाक और जुखाम, कौन दिलाएगा इन सबसे राहत?
2: अरे इन सबसे राहत दिलाएगा जेएमडी का बामवेदा, जिसके आयुर्वेदिक गुण सर दर्द, बदन दर्द और सर्दी को दूर भगाएं।
3: जेएमडी, द वंडर ऑफ आयुर्वेदा।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान, और मैं आपके साथ पहली बार गुरप्रीत लेकर आई हूं एक शाम, 100 साल एक आवाज। सुना है आज हवा भी गुनगुनाएगी, और रफी साहब की जन्म शताब्दी में हर धुन रफी साहब की याद दिलाएगी। तो चलिए रफ़ी साहब की यादों के इस गहरे समंदर में डूबते हैं और उनकी अमर आवाज़ को एक बार फिर से दिल से महसूस करने के लिए बुलाते हैं जयपुर रेडियो में पुणे से आज के कलाकार।

0: आवाज जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, आपके चहेते जिन्हें आप बार बार सुनना चाहते हैं, और वो हैं सुदर्शन फाटक। वेलकम सुदर्शन जी, आपका जयपुर रेडियो में स्वागत है।
1: नमस्कार दोस्तों, आज 24 दिसंबर और आज के दिन आपके सामने रफी जी के गाने पेश करना, ये मेरे लिए किसी अवार्ड रिवॉर्ड से कम नहीं है। सबसे पहले थैंक यू जयपुर रेडियो फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अगर मैं बोलना चाहूँ आज के बारे में, आज के दिन के बारे में, रफी जी के बारे में, तो मैं इतना ही कहूँगा कि समंदर से गहरा और आसमान से ऊंचा अगर कुछ है तो वो रफी जी का सुर है। रफी जी को जब सुनते हैं हम दूर से, सिर्फ सुनते हैं, तब ऐसा लगता है कितनी मुलायम आवाज़, कितने आसानी से गा रहे हैं। लेकिन वही जब हम कोशिश करने जाते गाने की, तब समझता है एक एक सुर कितना गहरा है। और आज मैंने जो कुछ भी कोशिश की है वो शायद उनके नाखून के बराबर भी ना हो, लेकिन ये मेरी तरफ से आज के दिन उनके 100वीं जन्मतिथि के अवसर पर मेरी तरफ से एक आदरांजलि है उनको।
0: थैंक यू सो मच सुदर्शन जी, सच अ ब्यूटीफुल थॉट। फ्रेंड्स, सुनते रहिए जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान, और मैं आपके साथ पहली बार गुरप्रीत। 100 साल पहले एक आवाज ने इस दुनिया में कदम रखा जो हर दिल के दर्द का मरहम बन चुका था, मोहम्मद रफी। रफी साहब का हर सुर एक दुआ बन के उठा और उनकी हर धुन मोहब्बत का पैगाम बन चुकी थी। तो चलिए सुनते हैं पहला नगमा हर दिल अजीज सुदर्शन की आवाज में।

बेहद खूबसूरत अंदाज सुदर्शन जी का, और किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, हुजूर चांद से पर्दा कीजिए कहीं चुरा ना ले चेहरे का नूर। फ्रेंड्स, जिस तरह आपकी महबूबा का नूर कोई चुरा नहीं सकता, उसी तरह रफ़ी जी के किरदार की खुशबू कभी फीकी नहीं हो सकती। तो आइए ले चलती हूँ उनकी लाइफ के कुछ अनमोल किस्सों की तरफ और सुदर्शन फाटक के साथ उनके गीतों की तरफ। रफ़ी जी के परिवार का म्यूजिक से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी उनका दुनिया का सबसे महान सिंगर में शुमार होना सिर्फ उनके जुनून और हार्डवर्क का सबूत है। जिस तरह सैगल साहब के शो में लाइट गुल हो जाने की वजह से मोहम्मद रफ़ी को गाने का मौका मिला और म्यूजिक डायरेक्टर श्याम सुंदर जी ने उन्हें बॉम्बे आने का न्योता दिया, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री बिकॉज ऑफ हिज हार्डवर्क। चलिए इतिहास के एक पन्ने में से निकला एक सुकून भरा अगला गीत सुनते हैं, दिल को छूने वाली सुदर्शन की आवाज़ में।

जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही तबीयत बहलती थी नन्हे रफी जी की, जब एक फकीर गाते हुए उनके गांव की गली से गुजरता था, जो रफी जी की इंस्पिरेशन थे। और रफ़ी साहब उस फकीर से इतने इंस्पायर्ड थे कि उस फकीर के आने से उनका हर दिन मानो रोशन हो जाता और बहार छा जाती थी। तो सुनते हैं ऐसा ही एक गीत सुदर्शन की नर्म आवाज़ में।

सो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है आपको ये सफर सुदर्शन और गुरप्रीत के संग? मुझे पूरा यकीन है कि दिलदार गायक के दिलदार श्रोताओं का दिल भी बड़ा होगा, जैसे रफी साहब का किरदार। क्या आपको पता है कि नए आने वाले कई म्यूजिक डायरेक्टर्स को मौका दिया था रफी जी ने, और सिर्फ एक रुपए की साइनिंग अमाउंट लेकर गीत गाए? कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग आजकल? तो जिनका किरदार एक राजा जैसा हो, उनके लिए ये गीत तो बनता ही है। फ्रॉम अनदर वंडरफुल ह्यूमन बीइंग सुदर्शन, जो वर्चुअल सिंगिंग प्लेटफॉर्म स्टार मेकर की फैमिली BML यानी बॉलीवुड म्यूजिक वर्ल्ड के कैप्टन यानी राजा हैं। तो चलिए सुनते हैं

अब तक है जमाने पे जिस आवाज का जादू, उसके मेरे ऊपर उपकार बड़े थे। कहना है रफी के लिए बड़ा मुश्किल, इंसान बड़े थे या कलाकार बड़े थे। ऐसा कहना था हमारे म्यूजिक डायरेक्टर रविंद्र जैन जी का। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार राजेश खन्ना काका और संगीत जगत के मसीहा मोहम्मद रफी की ऐसी जुगलबंदी हुई कि आज भी हर आशिक अपनी महबूबा के लिए वो गीत गाकर उसकी आंखों में डूब जाना चाहता है। उस गीत का जादू आज भी बरकरार है। तो सुनते हैं सुदर्शन की जादुई आवाज में वो गीत।

सो फ्रेंड्स, अब तक हमने जो गीत सुने, हर गीत ने हमारे दिल में रफी जी के रंग छोड़े हैं सुदर्शन की आवाज में। अब जो अगला गीत है वो एक लाइवली एंड प्लेफुल सॉन्ग है, नहीं शम्मी जी पर नहीं, बल्कि बॉलीवुड के एक सौम्य और संजीदा एक्टर नवीन निश्चल पर फिल्माया गीत। तो दोस्तों, आनंद लेते हैं मस्ती और जोश से भरे अगले गीत का।

0: नशीला।
1: सुदर्शन फाटक की आवाज में ये गीत एक नए रंग में दिखाई दिया। तो चलिए बढ़ते हैं मस्ती से सरोबार एक और गीत की तरफ।

भर गए ना आप जोश में? ये जोश और उमंग ऐसे ही बरकरार रखी हमारे जोशीले गायक सुदर्शन फाटक ने। और मोहम्मद रफी जी की बात करें तो चाहे जॉनी वॉकर का मजाक मस्ती भरा अंदाज हो, दिलीप कुमार की गहरी और दर्द भरी गजल, अमिताभ बच्चन का पावरफुल परसोना हो या शम्मी कपूर का एनर्जेटिक और फ्लर्टेशियस स्टाइल, रफी साहब की आवाज हर हीरो के लिए एकदम फिट लगती थी। जब उनका गाना सुनते तो ऐसा महसूस होता जैसे वो खुद ही गा रहे हों। और इसी तरह हमारे आज के कलाकार सुदर्शन फाटक भी हर गीत उसी अंदाज से बखूबी निभा रहे हैं। जो आप सुन रहे हैं, तो सुनते हैं अगला गीत सुदर्शन की आवाज में।

जैसे रफ़ी जी के रोमांटिक नंबर्स उनके सिग्नेचर बन चुके थे, उसी रोमांटिक इमोशंस को सुना सुदर्शन की रोमांटिक आवाज में। सुनते हैं अगला क्लासिक सॉन्ग।

ऐसे तो रफ़ी साहब के कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन जब धर्मेंद्र जी के लिए जट्टियमला पगला दीवाना नाश नाश कर स्टूडियो में रिकॉर्ड किया रफ़ी जी ने, तो धर्मेंद्र ने उनको गले लगा कर कहा, वाह क्या अंदाज में गाया है। तो रफ़ी ने उनसे कहा कि मैंने तो अपना काम कर दिया है, अब पर्दे पर लाना तुम्हारा काम है। तो सुनते हैं धर्मेंद्र जी पर फिल्माया गया यमला पगला दीवाना से कहीं हटकर अगला गीत।

यूं तो मेरी हर बात समझ जाते हो तुम, फिर भी क्यों मुझे इतना सताते हो तुम? तुम बिन कोई और नहीं है मेरा, क्या इसी बात का फायदा उठाते हो तुम? सुदर्शन की आवाज ने इस गीत को पूरी तरह महसूस करवाया। और आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान, 100 साल एक आवाज, मोहम्मद रफी की आवाज। और मैं आपके साथ पहली बार गुरप्रीत लेकर आई हूं अगला।

0: नाउम्मीद थे चारागार मेरी हालत को देखकर, पाया तबस्सुम तेरा दवा उनकी काम कर गई। रफी जी का बेहद खूबसूरत सॉन्ग आपने सुना सुदर्शन की आवाज में। किसी को उसके कद का गुमान न था, वो आसमान था, सर झुका कर बैठा था। रफी जी की सिंगिंग इतनी एफर्टलेस और सोलफुल थी कि लगता ही नहीं था कि कोई गाना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। सैड सॉन्ग में वो दर्द भर देते जो सीधा दिल को छू जाता, और कॉमेडी सॉन्ग में ऐसी मस्ती कि चेहरे पर हंसी आ जाए। तो चलिए सुनते हैं उनका एक और रंग सुदर्शन की आवाज में।
1: मारे,

आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान। और आज के कलाकार हैं सुदर्शन फाटक पुणे से, और मैं आपके साथ पहली बार गुरप्रीत। चेहरे पर इसी हंसी को बरकरार रखें, और आज की शाम अपने अंतिम पड़ाव पर है तो थोड़ा और करीब आ जाएं और सुनिए ये गीत।

दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। आज की शाम का आखिरी नगमा, ये गीत उन्हें हमारे दिलों में हमेशा के लिए अमर रखेगा। तो दोस्तों, इस गीत और अपने जज्बात के साथ रफ़ी साहब को एक सच्चे ट्रिब्यूट में महसूस कीजिए। सुदर्शन की आवाज़ और गुरप्रीत यानी मेरे साथ पहली बार, सुनते हैं उनका बहुत ही खूबसूरत गीत सुदर्शन की आवाज़ में।

0: नौशाद साहब के कुछ अल्फाज रफ़ी साहब के लिए। महफिलों के दामनों में, साहिलों के आसपास, यह सदा गूंजेगी सदियों तक दिल के आसपास। मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद रफ़ी।
1: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। एक और खूबसूरत प्रोग्राम आपके समक्ष पेश है और ये प्रोग्राम लेके आए हैं यूके से रवि कुमार। रफी साहब के गीतों को खूबसूरत तरीके से आपने पिरोया है, आपने अपने स्वर में गाया है और उन गीतों को हम तक पहुंचाया है, तो हम वेलकम करते हैं रवि कुमार साहब का जयपुर रेडियो वर्ल्ड पर। आपकी आवाज आपकी पहचान और हम क्या दें मिसाल।

आवाज में जो एक्टिंग अदायगी थी रफी साहब के, वही अदायगी रवि कुमार साहब की है। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं ये खूबसूरत गीतों का गुलदस्ता जिसे लेके आए हैं रवि कुमार साहब यूके से हमारे साथ। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो पर।

अमानत फिल्म के लिए इस गीत को रफ़ी साहब ने गाया था और आज हमारे साथ गा रहे हैं रवि कुमार साहब। इस गीत का संगीत दिया था रवि ने और गीत था साहिर लुधियानवी का। बेहद खूबसूरत गीत हम सुन रहे हैं रवि कुमार साहब की आवाज़ में। आपकी आवाज़ आपकी पहचान, जी हाँ, जयपुर रेडियो की पहचान बन चुकी है आपकी आवाज़। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं।

गीत की अपनी जुबान होती है, गीत की अपनी कहानी होती है, और रवि कुमार ये कहानी कह रहे हैं अपनी जुबानी। आपकी आवाज आपकी पहचान, अब क्या मिसाल दूं।

इंसान बन गई है किरण महताब की, अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबा की। एक खूबसूरत गीत आरती फिल्म से लिया गया है और ऑन स्क्रीन प्रदीप कुमार और मीना कुमारी एक्ट्रेस पे फिल्माया गया था। इस गीत का संगीत दिया था रोशन ने और इस गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी साहब ने। बेहद खूबसूरत गीत है ये और इस गीत को हम रोमांटिक गीतों में अमर गीत कह सकते हैं। और हमारे आज के जो स्वर हैं रवि कुमार साहब, उन्होंने बेहतरीन तरीके से इस गीत को अपनी आवाज से सजाया और आप तक पहुंचाया। बहुत बधाई, आपकी आवाज आपकी पहचान।

तुम सा नहीं देखा, इस फिल्म का ये गीत शमी कुमार साहब पर ऑन स्क्रीन फिल्माया गया था और अमिता थी साथ में एक्ट्रेस के रूप में था और गीत था साहिर लुधियानवी साहब का और आवाज हमारे इस प्रोग्राम में रही रवि कुमार साहब की। आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफी स्पेशल प्रोग्राम और उसको स्वर दे रहे हैं हमारे आज के स्वर रवि कुमार। आपकी आवाज, आपकी पहचान।

फिल्म असली नकली का ये गीत देवानंद साहब और साधना एक्ट्रेस पर फिल्माया गया ऑन स्क्रीन। म्यूजिक शंकर जयकिशन साहब का था और गीत को लिखा था हसरत जयपुरी साहब ने और अपनी आवाज अपने स्वर में सजाया हमारे लिए यूके से रवि कुमार साहब ने। ये खूबसूरत गीतों का गुलदस्ता आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से। आपकी आवाज आपकी पहचान और रफी साहब का एक बहुत मशहूर गीत है ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी। आइए सुनते हैं रवि कुमार साहब से ये गीत। आपकी आवाज आपकी पहचान

इस गीत को फिल्म महबूब की मेहंदी के लिए रफी साहब ने गाया था। म्यूजिक इस गीत का लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का रहा और गीत लिखा था आनंद बख्शी साहब ने, और आपके लिए आज के स्वर में रवि कुमार साहब ने ये गीत आप तक पहुंचाया। आपकी आवाज आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड।

जब भी मौसम की बात चलेगी तो लोफर फिल्म का ये गीत कभी भी हमारे जहन से दूर नहीं हो सकता। इस गीत को ऑन स्क्रीन एक्टर धर्मेंद्र साहब और मुमताज पर फिल्माया गया था। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी साहब ने।

आपने सुना फिल्म प्यार ही प्यार का ये गीत। ऑन स्क्रीन धर्मेंद्र और वैजयंती माला पर फिल्माया गीत आनंद बख्शी साहब ने लिखा था और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और हमारे आज के स्वर रवि कुमार आप तक पहुंचा रहे थे ये गीत, आपकी आवाज आपकी पहचान। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड।

तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। जी हाँ, गीत को संगीत से सजाया था SD बर्मन साहब ने और इसको ऑन स्क्रीन देवानंद साहब और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया था। और आप तक इस गीत को पहुंचा रहे थे हमारे आज के स्वर, आज के कलाकार रवि कुमार साहब। आपकी आवाज़, आपकी पहचान।

आज किस पर प्रोग्राम आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो वर्ल्ड से। अभी आपने सुना एक गीत जिसे आवाज दे रहे थे रवि कुमार आज की स्वर। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी साहब ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का था और धर्मवीर फिल्म से इस गीत को लिया गया। ऑन स्क्रीन जीनत अमान और धर्मेंद्र पे फिल्म आया गया था ये गीत। आपकी आवाज आपकी पहचान आप सुन रहे हैं आज के स्वर प्रोग्राम में रवि कुमार साहब के वो गीत जो रफी साहब ने गाए हैं।

मुझे दर्दे दिल का पता न था मुझे आप किस लिए मिल गए। ये खूबसूरत गीत आकाशदीप फिल्म से था। इसका संगीत दिया था चित्रगुप्त ने और गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने। और आज इसको स्वर दे रहे थे हमारे आज के स्वर रवि कुमार साहब। आपकी आवाज आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। खूबसूरत गीतों का ये गुलदस्ता लेके आए हैं यूके से रवि कुमार साहब जयपुर।

0: हसरत जयपुरी साहब का गीत, शंकर जयकिशन का संगीत और ऑन स्क्रीन शमी कपूर साहब और आशा पारिक पर फिल्माया गया ये गीत फिल्म पगला कहीं का से था और इसे आज स्वर दे रहे थे इस मंच से हमारे आज के स्वर रवि कुमार साहब यूके से। दुआ है हमारी आवाज सुने आपकी दुनिया सारी। रवि कुमार साहब बहुत बधाई बहुत शुभकामनाएं, यूं ही गाते रहें और यूं ही हमारे लिसनर तक अपने गीत पहुंचाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का ये संगीतमय सफर यहीं तक, आपकी आवाज आपकी पहचान। बहुत आभार बहुत शुभकामनाएं रवि कुमार साहब यूके से। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: हे हाय दोस्तों, मेरा नाम है, अब तक तो आप मेरी आवाज पहचान गए होंगे। इतना पुराना और लंबा रिश्ता जो बन गया है आप लोगों के साथ, कोई फेमस सेलिब्रिटी तो नहीं, फिर भी खजाने की कमी नहीं है मेरे पास। अनमोल खजाने लेके आई हूँ अपने आओ झूमे गाए म्यूजिक ग्रुप से, सिर्फ जयपुर रेडियो आपकी आवाज आपकी पहचान पे। मेरा नाम है रति भार्गव और पास में मेरे जो कोहिनूर हैं, नवरत्न हैं, उनके नाम कुछ यूं हैं: किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आरडी बर्मन, मोहम्मद रफी, आशा भोसले, गुलजार और हमारी बॉलीवुड जगत के जगमगाते सितारे जैसे माधुरी, श्रीदेवी, डिंपल कपाड़िया, शर्मिला टैगोर, जूही चावला, जयप्रदा, जया बच्चन, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, अनिल कपूर, शाहरुख खान, सनी देओल, संजय दत्त, आशा पारेख, शर्मिला, नीतू वगैरह वगैरह। हमारा आज का ये एपिसोड है बॉलीवुड की चांदनी और लोगों के दिलों पर राज करने वाली हवा हवाई पे। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए हैं, मैं बात कर रही हूँ श्रीदेवी की, जो सिनेमा जगत की पहली महिला सुपरस्टार रह चुकी हैं। श्रीदेवी को लेडी अमिताभ बच्चन और पहली सुपरस्टार का दर्जा दिया जाता है। 13 अगस्त 1963 को जन्मी श्रीदेवी का जन्म

हुआ था सिवकासी तमिलनाडु में। श्रीदेवी ने 4 साल की उम्र में ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया था और चाइल्ड एक्टर के तौर पर साल 1967 में तमिलनाडु कंदन करुणे में काम किया था। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले श्रीदेवी तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में काम कर चुकी थी। श्रीदेवी ने बॉलीवुड में 4 दशक से भी ज्यादा समय तक लोगों को अपनी एक्टिंग से मनोरंजन किया। तो चलिए दोस्तों, आपको श्रीदेवी से जुड़े कुछ अनकहे किस्से सुनाते हैं और उनके कुछ बेहतरीन गाने जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। तो सुनते हैं श्रीदेवी का ये जादू भरा परफॉर्मेंस बिमल और कविता की मधुर आवाज़।

चांदी के पर्दे पे जो चांदनी थी, जो बेजान सीन को अपने प्रेजेंस से जिंदा कर देती थी, और जिनकी आंखों में इन्फेक्शस सी चमक थी, एन एक्ट्रेस हु लिटरली ब्रॉट स्क्रीन टू लाइफ, वो लाइफलेस कैसे हो सकती हैं? श्रीदेवी, आपने हमें जादू दिखाया और जादू सिखाया। मेरी आंखों के सामने उभर रहे हैं वो इम्पेक्शियस एक्सप्रेशंस, वो चमकती आंखें, वो दमकते एक्सप्रेशंस, और हम तो उन्हें ऐसे ही याद रखेंगे। ट्रांसपेरेंट छतरी, ट्रांसपेरेंट रेनकोट, ट्रांसपेरेंट परफॉर्मेंसेस, श्रीदेवी सच में इस जादू के लिए शुक्रिया। फिल्म लम्हे को 30 साल हो चुके हैं। इस फिल्म में श्रीदेवी और अनिल कपूर की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना, तानिया और जगदीश की मधुर आवाज।

क्या आप जानते हैं दोस्तों, श्रीदेवी का वास्तविक नाम श्री अम्मा अय्यर अय्यप्पन था। पर्दे पर उनके लिए श्रीदेवी नाम तय किया गया। बता दें कि श्रीदेवी उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्होंने धर्मेंद्र और उनके बेटे सनी देओल दोनों के साथ काम किया। श्रीदेवी के करियर की बात करें तो उन्होंने चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर साउथ इंडस्ट्री से शुरुआत की थी। इसके बाद बॉलीवुड में उन्होंने 16 सावन से डेब्यू किया, जिसमें वह जितेंद्र के साथ नजर आई थी। जितेंद्र के साथ 16 फिल्मों में से 13 उनकी सुपरहिट फिल्में रहीं। सुनते हैं ये हमारा अगला गाना फिल्म हिम्मत वाला से, बोल इंडिवर के, म्यूजिक दिया बपीदा ने और गाया बेहद खूबसूरती से किशोर दा और लता मंगेशकर ने। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं आपके लिए किशोर और संगीता अपनी सुरीली आवाज़।

श्रीदेवी ने 90s में आई थिंक लड़कियों से बहुत सारा प्रेशर हटा दिया है ना। हमेशा स्लिम होना, हमेशा खूबसूरत दिखना, एलिगेंट होना, प्रॉपर होना, स्टाइल मारना कोई जरूरी नहीं, ये समझा दिया। बी योर नेचुरल मैड क्रेजी सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ, आई मीन जो मूछे लगा के आंखें भेंगी करके भी पूरे देश का दिल जीत सकती थी, वो कितनी हेल्दी रोल मॉडल थी सोच के देखिए। पर्दे पर अपने चुलबुले अंदाज से सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाली थी हवा हवाई, हर उम्र के लोगों की पसंदीदा थी। अगर आप भी तनाव फील कर रहे हो, अपना मूड अच्छा करने के लिए बस ये गाना सुन लीजिए और आपका मूड झट से अच्छा हो जाएगा। इसे सुनाने आ रही हैं गायत्री और मनीषा आपके लिए।

मेजेस्टिक नेचर श्री देवी इन ऑल हर ग्लोरी, एक ही इंसान एक साथ मैड, इनसेन, सेक्सी, एलिगेंट, ब्यूटीफुल एंड स्टेलर परफॉर्मर कैसे हो सकता था। एक तरफ ऐसे गानों की मैडनेस सच एज न जाने कहां से आई, या करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, या फिर ऑफकोर्स हवा हवाई न जाने कितने, तो दूसरी तरफ सेंसुअलिटी जो स्क्रीन पे आग लगा दे, मतलब जाबाज ले लो या मिस्टर इंडिया का दूसरा गाना ले लो एंड मेनी अदर्स, बीच में हम मेस्मराइज्ड। सुनते हैं दोस्तों वो गाना जाबाज मूवी का, हर किसी को नहीं मिलता, श्रीदेवी की स्टेलर परफॉर्मेंस जिसने आग लगा दी थी, मेरी यानी रति और गगन की आवाज में।

हिंदी फिल्मों में समाज को संपूर्ण बनाने की सारी विधा मौजूद है। नायक की खुददारी हो या नायिका का त्याग, या फिर आपसी प्रेम भाव का आचार विचार हो या समाज को एकजुट रखने का संदेश, यह सभी चीजें हिंदी फिल्मों में दिखाई जाती हैं। नायक और नायिकाओं के बीच प्रेम और आकर्षण की मिस्टर इंडिया में श्रीदेवी और अनिल कपूर पर फिल्माया गीत कांटे नहीं कटते दिन ये रात इश्क और हुस्न की इंतहा को जग जाहिर करता है। किशोर कुमार और अलीशा चिनॉय की आवाज ने इस गीत को मधुरतम बनाया है। गीत आई लव यू के भाव से शुरू होता है और इसी भाव के साथ खत्म भी होता है। आइए सुनते हैं ये गीत प्रेरणा और रेस की आवाज में।

1989 में प्रदर्शित फिल्म चांदनी का ये गीत, इसमें श्रीदेवी और ऋषि कपूर ने पानी में आग लगा दी थी। हुस्न की अदा बारिश के मौसम में इस गीत में काफी सुहावनी बन पड़ी है। गीत संगीत और श्रीदेवी के बेजोड़ नृत्य के गीत को मधुर अंदाज दिया है आनंद बख्शी के लिखे इस गीत में। गीत काफी मनोहरी बना। इसे सुनते हैं मानवेंद्र और संगीता की सुमधुर आवाज में।

मैं आपके साथ रति भार्गव अपने आओ झूमे गायें के कलाकारों के साथ आज के इस स्पेशल सेगमेंट में याद कर रहे हैं उन्हें जो कुछ ज्यादा ही जल्दी चली गई। हम उन्हें तो मिस करेंगे ही और अभी उन्हें जितनी बेहतरीन फिल्में करनी थी उन्हें भी मिस करेंगे। 80 के दशक में एक और गीत देखने और सुनने को मिला जिसमें हुस्न और इश्क का बेजोड़ संगम था। हमारा अगला गाना हुस्न और इश्क की अदा पर चांदनी मूवी का ये गाना सुनते हैं प्रियंका और गिरीश की मधुर आवाज में।

श्रीदेवी को हिंदी सिनेमा में एक कमर्शियल हीरोइन के रूप में जाना जाता था। उन्होंने अपने करियर में नागिन से लेकर चाल पास, चांदनी, जुदाई, खुदा गवाह, नगीना, मिस्टर इंडिया जैसे कई शानदार फिल्मों में दमदार अभिनय किया। अभिनेत्री फिल्मी पर्दे से दूर हो गई थी, हालांकि 15 साल के लंबे समय के बाद 2013 में उन्होंने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में शानदार वापसी की। सुनते हैं हमारा अगला नगमा दो दोस्तों की दास्तान पे, और इसे सुनाने आ रहे हैं मुकेश और मंदार अपनी मधुर आवाज में।

रानी मेरा नाम, जूली और सोलवा सावन जैसी चुटपुट फिल्में करने के बाद हिंदी सिनेमा को अपने करियर का अगला मुकाम बनाने वाली श्रीदेवी 1983 में जितेंद्र के साथ फिल्म हिम्मत वाला की तो पूरी हिंदी पट्टी में हंगामा हो गया था। इतनी मादक और इतनी मोहक अभिनेत्री इससे पहले हिंदी सिनेमा में कोई दूसरी उनको नजर ही नहीं आई। इसके बाद श्रीदेवी ने हिट फिल्मों की लाइन लगा दी थी। आखिरी रास्ता, नगीना, जाबाज और कर्मा जैसी फिल्म करने के बाद वह 3 साल में ही नंबर 1 की कुर्सी पर आ बैठी थी। इसके बाद मिस्टर इंडिया, निगाहें से होते हुए करियर उनका अगला टर्निंग पॉइंट था चांदनी। श्रीदेवी को सफेद लिबास में ढली चांदनी देख उस समय हर लड़की उन्हें कॉपी करना चाहती थी। श्रीदेवी की ये फिल्म गवाही देती है इस बात की कि आज 30 साल के बाद भी चांदनी की चमक फीकी नहीं पड़ी है। और सुनते हैं उनका ये सुपरहिट गाना रूही और विश्वजीत की सुमधुर आवाज में।

ये काम किया? तुमने मुझे बदनाम किया? बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया।

0: कौन? मैं?
1: Yes, yes, yes, yes.
0: क्यों?
1: कोई फूल कोई तोहफा, तुम कुछ भी साथ नहीं लाते, बड़े बहू समझाऊं तुम?

0: सपनों से सुंदर लग रही थी चांदनी बनकर इस गाने में, याद रहेंगी वो हमें हमेशा। रेस्ट इन पीस श्रीदेवी जी, थैंक्स फॉर द मैजिक। श्रीदेवी के जितने सॉन्ग्स करो कम है, इतने सॉन्ग्स हैं, इतनी बातें हैं, पर ट्रिब्यूट पूरा नहीं लग रहा। भरपूर तब होता है ट्रिब्यूट जब भरपूर जी कर जाए वो जिन्हें हम चाहते। ऐसे ही अचानक से बेवक्त बीच में से जब कोई चला जाए, व्हाट डू यू से, हाउ डू यू रिमेम्बर देम। जिस चेहरे में इतनी जान थी वो अब बेजान है, अभी तक यकीन नहीं होता है। इतनी जिंदा दिल परफॉर्मेंस जो दे गई वो अब खुद जिंदा नहीं है, पर रहेंगी ना हमेशा उसी चांदी के पर्दे पर जिसकी वो चांदनी थी, एंड ऑफ कोर्स हमारे दिलों में भी।
1: भक्ति प्रभा, भजनों की सरिता, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
2: नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम भजनों की सरिता में। लक्ष्मी का सादर प्रणाम। मित्रों, भक्ति गीत प्रार्थना की एक विशेष अंश है, भगवान के साथ एक मिलाप का समय है। प्रार्थना में हम अपने आप को एक ऐसी शक्ति के सामने आत्मसमर्पण करते हैं जो

वाह संजीव जी, बहुत खूब। मित्रों, भारतीय परंपरा के कई महान संत थे, जैसे रामानुजाचार्य, संत रविदास, कबीर आदि, जिन्होंने हमें धार्मिकता का सही मार्ग दर्शाया। इनमें से एक थे गुरु अर्जन, जिन्होंने सिखों के आदि ग्रंथ को संकलित किया, जिसमें पिछले कई गुरुओं के गुरुवाणी शामिल थे। गुरु ग्रंथ साहिब में आधे से अधिक शब्द गुरु अर्जन द्वारा रचित हैं। चलिए एक शब्द सुनते हैं ललिता कृष्णमूर्ति की मधुर वाणी में।

वाह ललिता जी, अति मधुर प्रस्तुति। मित्रों, भक्ति संगीत में ऐसी शक्ति है कि वह सभी को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। संगीत ऐसा सात्विक आनंद है जो जाति, धर्म, लिंग, आयु, वर्ग सभी से परे है। संगीत सबके लिए है। संगीत को न सीमाओं से बांधा जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है। ये आबाद धारा सबके लिए सर्वत्र सुलभ है। हमारा अगला गीत फिल्म जॉनी मेरा नाम के लिए इंदिवर जी ने लिखा था और इसे संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने। इसे मूल रूप से लता मंगेशकर जी ने गाया है और जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रही हैं विद्या शंकर जी।

वाह विद्या जी, इस सुमधुर प्रस्तुति से मन प्रफुल्ल हुआ। मित्रों, हमारे देश के संतों ने समय समय पर यह शिक्षा दी है कि वास्तव में भगवान और उनके नाम के बीच कोई अंतर नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान का नाम स्वयं भगवान से भी श्रेष्ठ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम का नाम भगवान राम से भी श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत में ये कथा है कि कलयुग में श्री हरि के नाम के जाप से ही जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, क्योंकि सब में राम और राम में है सब। तुलसी का प्रभु भी वही, नानक का रब भी वही। नाम भजन में ज्योति असीमित। पेश है एक राम धुन जो मूल रूप से लता मंगेशकर जी ने गाया है प्रसिद्ध एल्बम राम श्याम गुणगान में। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं स्वागता पॉल और संजय हर ने।

और संजय जी हम मन विभोर हुए। मित्रों, भगवान राम एक अवतार पुरुष थे, असाधारण पुरुष थे, करुणा मूर्ति थे। ये सभी के प्रति स्नेह और अपनापन का सामान्य भाव रखते थे, चाहे वह सज्जन हो या दुर्जन हो। वह तो ऐसे करुणा मूर्ति थे जो उनके शत्रु के प्रति भी स्नेही और दयालु थे। चलिए सुनते हैं एक भजन जो श्री अरबिंदो सोसाइटी के मेंबर्स द्वारा रचाया गया है। इस भजन को स्वरबद्ध किया था जगजीत सिंह जी ने। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं संजय फड़के जी और मैं लक्ष्मी बालचंद्र।

0: सूरज संजय जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा साथ दिया। मित्रों, सुविचार, सत्संग और निरंतर भगवान के जाप से सकारात्मक ऊर्जा निर्मित होती है। हम आशा करते हैं आपका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से प्रकाशित हो।
1: आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज, आपकी पहचान।
0: मित्रों, ये एक सामान्य बात है कि संकट के समय हम भगवान की ओर रुख करते हैं। हम घोर विनम्रता और प्रत्याशा दोनों के दोहरे रवैया के साथ आते हैं। हम परमेश्वर को आदेश तो नहीं देते, लेकिन हम साहसपूर्वक, श्रद्धापूर्वक उनके सिंहासन के सामने आते हैं, ये कहते हुए कि मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे। नक्शलियालपुरी की ये पंक्तियां फिल्म राम नगरी के लिए लिखा गया था। इसे संगीत से सजाया था जयदेव जी ने। इस गीत को मूल रूप से हरिहरन जी और नीलम सानी जी ने गाया है। आपके लिए इस गीत को प्रस्तुत करने आ रहे हैं संजय फड़के जी।

वासंजय जी, हम तो भाव गदगद हुए। मित्रों, एक व्यक्ति का आंतरिक जीवन और बाहरी ब्रह्मांड के बीच कोई अलगाव नहीं है। मन एक दर्पण की तरह है, जो कुछ भी सामने आता है वह उसमें प्रतिबिंबित होता है। आप जिस किसी के बारे में सोचते हैं, उसकी भावनाएं और उसकी मनस्थिति आप पर टिकी रहती है। अगर आप खुश लोगों के बारे में सोचते रहते हैं तो आप खुश हो जाते हैं। दुखी चीजों के बारे में सोचकर आप दुखी महसूस करते हैं। इसलिए साहिर लुधियानवी जी ने लिखा है, तोरा मन दर्पण कहलाए। इस गीत को काजल फिल्म के लिए संगीतकार रवि ने स्वरबद्ध किया था और आशा भोसले जी ने अपने मधुर वाणी से इसे सजाया है। जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रही हैं मोनिका दश और अनुराधा वैद्यनाथन।

वाह मोनिका जी और अनुराधा जी, अति मधुर प्रस्तुति। हमारे अगले भक्ति गीत में कौशल्या मैया कागर से पूछती है, तुम सच बोलो और मुझे बताओ कि मेरे प्राणों से प्यारे वे लोग कब आएंगे। तुलसीदास जी की गीतावली से ये रचना बैठी सगुन मनावती माता, आइए सुनते हैं संजय हरने जी की आवाज में।

बड़ी सुंदर प्रस्तुति संजय जी, आइए स्वागत करते हैं इस खूबसूरत शिव धुन के साथ। इस पारंपरिक धुन को प्रस्तुत करने आ रहे हैं संजय हरने जी, संजय फड़के जी, अनूप शर्मा जी, जय कृष्णन जी, ललिता कृष्णमूर्ति, श्वेता, शोमा सी रॉय, प्रेरणा जकादार, मधुलिका शर्मा और स्वयं मैं लक्ष्मी बालचंद्रन।

0: बेहद खूबसूरत प्रस्तुति, हम सचमुच मन विभोर हुए। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे थे प्रोग्राम भजनों की सरिता। इस भक्तिमय संगीतमय साधना को प्रस्तुत कर रही थीं लक्ष्मी बालाचंद्रन। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान।

0: आप सुन रहे थे बिंदु व्यास की आवाज में डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का, ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले दिदिन तिनक दिन दिदिन तिनक दिन। अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो आपका अपना रेडियो,
2: अपना शहर अपनी शान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
3: अरे ये लाहौर लाखों और इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
4: क्या हुआ चचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
3: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए हैं, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
4: तो मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
3: अरे बेटा कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुलटरू कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ वहाँ घूम।
4: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
3: अच्छा?
4: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं कहीं भी कभी भी।
3: अच्छा कौन सा ऐप है वो?
4: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
3: जयपुर रेडियो? पर बेटा हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर।
4: चचा देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
3: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, और क्या नाम बताया उस ऐप का?
4: लाइए मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो।
0: आज की हमारी सिंगर है दुबई की।

जी हाँ, इस प्रोग्राम का नाम भी हमने यही रखा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और आप सुन रहे हैं राम रेडियो। जी हाँ, स्वतः ही ये नाम मुंह से निकला है और आप तक पहुंचा है। और जैसे ही हमने इस प्रोग्राम को अनाउंस किया, जयपुर रेडी के सभी सिंगर्स ने हमें बहुत ही उत्साह दिया और हर्ष से भरे हुए अपने गीत अपनी आवाज में हमें प्रेषित किए। हम उन सब का आदर करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं और सभी के गीत हम इस मंच पर इस प्रोग्राम के तहत रखेंगे, जिसका नाम है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और आज की इस संगीत यात्रा की शुरुआत हमने की है दुबई की बहुत ही सुरीली सिंगर संगीता माल्या। कुछ गीतों में आपका साथ देंगे यूके के रवि कुमार। तो शुरू करते हैं ये सुरीली यात्रा का विशेष प्रोग्राम, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।

हे राम, तुम्हारा नाम स्वयं ही काव्य है। कोई सिंगर बन जाए सहज सौभाग्य है, और ये सहज सौभाग्य जयपुर रेडियो के सभी सिंगर्स को प्राप्त है। राम का आशीर्वाद, उनकी कृपा हमारे सभी सिंगर्स पे, लिस्टर्स पे बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम वेलकम करते हैं संगीता माल्या का। आपकी आवाज, आपकी पहचान।

राम स्वनाम है धाम, राम धन्य है नाम, राम को प्रणाम। आइए राम को बार बार प्रणाम।

राम भजन करमन। राम है स्वनाम धाम, राम है स्वनाम धन, राम धन्य है नाम, राम को प्रणाम, राम धाम को प्रणाम। अयोध्या में आए हैं श्री राम, वो राम जो केशव है, जो माधव है, जो अच्युत है और जो सबके दृष्टा है, उस राम को प्रणाम, उस केशव को प्रणाम। अगले भजन में संगीता माल्या, अच्युतम केशवम।

सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का राम रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रोग्राम पायू जी मैंने राम रतन धन पायू, और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं दुबई से संगीता माल्या। हे राम, जग में सबसे सांचा तेरा नाम, हे अवध बिहारी पधारो, स्वागत है अभिनंदन है आपका। इस गीतमाला में इसको सफल बनाएं और हमारे सिंगर्स के साथ आप भी गाएं। मैं खोजता रहा अपने आप को, खोजता रहा सच को, लेकिन सच तो केवल केवल और केवल आपका ही नाम है। संगीता माल्या के साथ रवि कुमार।

आप सुन रहे हैं राम रेडियो और राम से कृपालु कौन है? कोई नहीं ना, उसकी दयालुता, उसकी कृपालुता को प्रणाम है, शत शत प्रणाम है, अभिनंदन है, स्वागत है।

श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। ये खूबसूरत भजन आपने सुना रवि कुमार और संगीता माचार्य की आवाज में। आप सुन रहे हैं राम रेडियो।